0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुबह के 6 बज रहे हैं, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार सुमायरा अकबर अली से। सुमायरा, आपको सलाम।
1: नमस्कार रादाब। साल 2026 की पहली तिमाही में मॉरिशस का घाटा बेहतर हुआ, वो 1.1 बिलियन रुपए तक आ गया, यानी मूल घरेलू उत्पाद GDP का 0.6%। पिछले साल की इसी अवधि के दौरान घाटा 6.2 मिलियन रुपए था और ये घाटा GDP में 3.7% का प्रतिनिधित्व करता है। ये हालत पर्यटन और सेवाओं की बदौलत बेहतर हुई है, लेकिन मॉरिशस अपने निर्यात से ज़्यादा पैदावारों का आयात करता जा रहा है। राष्ट्रीय बजट में पेंशन सुधार के सिलसिले में बहसें जारी, श्रमिक संघ का दबाव है और वो सरकार के साथ बातचीत करने की मांग कर रहा है। कल सिकोम एम्प्लॉयज यूनियन प्रेस से मुखातिब हुआ प्रवक्ता दीपक बेनीडी ने बजट में ऐलान किए गए कदमों को लेकर अपनी नारजामंदी दोहराई है। स्वास्थ्य सेवाओं में उच्च शिक्षा की तरक्की में मॉरिशस ने एक नया चरण पार किया। स्वास्थ्य मंत्रालय और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड मैनेजमेंट स्टडीज IIMM मॉरिशस के बीच सहयोग हो रहा है ताकि मॉरिशस में भावी डॉक्टरों के प्रशिक्षण को और ठोस बनाया जा सके। इस समझौते के जरिए मंत्रालय की निगरानी के तहत संस्था के मेडिकल तलबा सर शिवसागर राम गुलाम अस्पताल, खास अस्पतालों में और स्वास्थ्य केंद्रों में अपना क्लिनिकल प्रशिक्षण ले सकते हैं। वाकवा में तकामका पुल अब फिर से कार्यरत होने लगा है। ये पुल 60 से ज़्यादा साल पुराना है, जिस पर दो बसें एक ही वक्त पर नहीं गुजर पाती थीं, लेकिन कार्यों के बाद अब ये पुल फिर से कार्यरत है। विदेश में कंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला महामारी से निपट

0: के लिए इलाज की कोशिश की जाने लगी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐलान किया कि पहले मरीज की जिम्मेदारी ली गई है। कोंगो में 1400 से ज्यादा मामले पाए जा चुके हैं और 438 लोग जान से गए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल, आम हालत हमारे इलाके में हल्की हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। पूर्व और ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश होगी, लेकिन दिन के दौरान मौसम साजगार रहेगा। आज रात आमतौर पर घने बादल होंगे, सेंट्रल प्लेटो पर हल्की वर्षा होगी। हवा पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण और पश्चिम वाले लगूनों में, इसी वजह से दूर समुद्र में ना जाने की दरखास्त है। तापमान सेंट्रल प्लेटू में न्यूनतम तापमान 14 से 17, अधिकतम 20 से 23, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 6:46 पर, सूर्यास्त 5:42 पर। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार, आदाब, शुभ दिन आप सभी को।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: प्रणाम सुप्रभात श्रोतागण, घड़ी मिलाते चलिए। इस समय सुबह के 6:04 हो चुके हैं। इस शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को साथ निभा रही हैं पूजा। श्रोताओं, कहा जाता है जो बीत गया वो कल था, अगर सुधार लानी है तो अपने आज में लाइए, तभी जीवन अच्छे से बीतेगी। आइए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं सुधा वृष्टि से। आइए इसे श्रवण करते हैं हिंदू महासभा की ओर से।
1: हिंदू महासभा द्वारा आइए सुनिए सुधा वृष्टि।
2: हरि ओम तत्सत् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः, श्रीरामदूताय नमः, श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरिनारायण। हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी मेरे श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज फ्राइडे 3 जुलाई 2026 के सुधा वृष्टि कार्यक्रम में, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे धर्म, सभ्यता एवं संस्कृति के विषय में। धर्म केवल पूजा पाठ का या कर्मकांड का नाम ही नहीं है, धर्म वहाँ जीवन पद्धति है जो हमें सत्य, करुणा, प्रेम, सेवा, संयम एवं कर्तव्य का मार्ग दिखाती है। धर्म मनुष्य को मनुष्य बनाता है तथा समाज में सद्भाव, शांति और नैतिकता की स्थापना करता है। धर्म का अर्थ है धारयति इति धर्मः, अर्थात मानव एक सामुदायिक प्राणी के रूप में अपने जीवन यापन के लिए जिन विधियां, मान्यताओं एवं नियम आचरणों को धारण करता है वही धर्म है। हमारे ऋषि मुनियों एवं पूर्वजों ने पुरुषार्थ चतुष्टाय यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के अंतर्गत धर्म को

सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए प्रथम स्थान पर रखा है। धर्म को परिभाषित करते हुए कहा गया है, ध्रियते लोकोनेन धरती लोकाम वाह। शास्त्र धर्मज्ञान के स्रोत्र है, परिणामतः शास्त्र विहित आचरण धर्म ही है। धर्म को कर्तव्य एवं अधिकार भी माना गया है। हमारे धर्म शास्त्र में न्याय नीति तथा निष्पक्षता के संदर्भ में धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक कालीन ग्रंथों में न्यायशील पुण्यात्मा परोपकारी सद्गुणी विवेकी निष्पक्ष उपदेशक सदाचारी नीतिज्ञ सत्यवादी कर्तव्यनिष्ठ आदि जनों के लिए धार्मिक शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारे पूर्वज जहां से आए हैं भारत स्वयं में धर्मनिष्ठ देश है। उसकी धर्म में आस्था वह धर्म प्राण है। उसकी दैनिक चर्या में धर्म की अवधारणा एवं धर्म का विज्ञान सम्मत रूप भी समाहित है। यह मात्र भूमिखंड का नाम नहीं है, वरन यह स्वयं में एक विशिष्ट आध्यात्मिक संस्कृति का द्योतक है। यहीं से असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, अर्थात असत्य से सत्य की ओर, अंधकार यानी अज्ञान से प्रकाश ज्ञान की ओर एवं मृत्यु से अमर तत्व की ओर परायण करने का संदेश बहुत पहले से दिया गया है। ये उपयुक्त तीनों तत्व धर्म के प्राण है। धर्म शब्द हमारे ऋषि मुनियों की चेतना से प्रस्तुत मौलिक अभिव्यक्त है। इसका विश्व की किसी भाषा में कोई पर्याय नहीं है। धर्म ही व्यक्ति की पहचान का साधन है। धर्म के कारण ही हम हैं, हमारा अस्तित्व है और हमारी सत्ता भी है। हमारी सृष्टि का जर चेतन सब कुछ धर्म पर आश्रित है। प्रकृति के पंच महाभूत अपने अपने धर्म का चिरकाल से पालन करते आ रहे हैं। फलतः हमारी सृष्टि प्रवहमान है। धर्म का क्रम अनादि है, अनंत है। यह एक सर्वभौम सत्ता है, हमारी अस्तित्व का प्राण है और परमात्मा का उपनाम है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहता है, मन वाणी एवं शरीर से किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट ना देना, मधुर प्रिय संवाद करना, अभिमान क्रोध तथा निंदा का परित्याग करना, दया एवं उपकार करना धर्म है। शरीर में आत्मा मेरा ही सनातन अंश है, श्री कृष्ण कहता है, जो मन सहित सभी इंद्रियों को आकर्षित करता है। इस प्रकार परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण में विश्वास कर प्रत्येक प्राणी को दूसरे प्राणी के प्रति आत्मभाव रखना धर्म है। वास्तव में धर्म एक अमूर्त तत्व है जो मानव और परब्रह्म परमात्मा के मध्य एक संपर्क सूत्र का उत्कृष्ट माध्यम है। प्राणी धर्म से जुड़कर ही परम साध्य अव्यक्त स्वप्रकाश स्वचेतन एवं स्वयं ब्रह्म से साक्षात्कार करता है। धर्म व्यापक स्थायी एवं शाश्वत संस्कृति का तत्व है। धर्माचरण करना ही प्राणी मात्र के कल्याण मार्ग है। धर्म ही संस्कृति का आदर्श एवं हमारा अतीत वर्तमान तथा भविष्य है। अब बात करें सभ्यता की। सभ्यता सामान्य रूप से मानव के रहन सहन खान पान
वेशभूषा, व्यवहार, सामूहिक आचरण आदि के प्रस्तुतिकरण को सभ्यता कहा जाता है। सभ्यता मानव के भौतिक व्यवहार का सूचक है। सभ्यता का संबंध हमारे बाह्य व्यवहार से है। सभ्यता संस्कृति की नित्य नूतन शारीरिक संरचना है। सभ्यता शब्द का प्रयोग मानव के सकारात्मक, प्रगतिशील एवं समाज के समावेशी विकास के लिए किया जाता है। सभ्य समाज की उन्नतिशील कृषि, प्रगतिशील व्यापार, व्यावसायिक विशेषज्ञता, नगरीकरण, विकसित यातायात, श्रेष्ठ लेखन, न्यायोचित विधि व्यवस्था के स्थापन, कला एवं संस्कृति के संरक्षण, वस्तु निर्माण की उत्कृष्ट व्यवस्था एवं मानव द्वारा सदाचार के श्रेष्ठ प्रदर्शन का द्योतक होता है। सभ्यता का अर्थ है वह मानव समाज जो किसी भी दशा में मानवीय बर्बरता के विरुद्ध जीवन की कला को विकसित कर लेता है। सभ्यता संस्कृति का साक्षात्य है, इसलिए संस्कृति क्रिया कलापों से सभ्यता का विकास होता है। सभ्यता का मूल आधार सामाजिक सुरक्षा और स्थिरता है। सभ्यता ही मानव जीवन के भौतिक स्वरूप का दर्शन कराती है। सभ्यता का विकास मानव द्वारा मानव समाज के लिए किया जाता है। जो समाज काल, परिस्थितियां एवं आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है। सभ्यता अपने विकसित स्वरूप में समाज के एकीकरण में सहायक होती है। संस्कृति, संस्कृति का संबंध मानव के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के जीवन का अपने आप में पूर्ण विकसित जीवन के प्रति प्रेरणादायिनी शक्ति से होती है। आचार विचार, जीवन यापन की शैली, कर्म क्षेत्रों से विवेक और चिंतन में राष्ट्र का मौलिक सर्जन, वही उस राष्ट्र की संस्कृति है। मानव जिस पुरा काल से शाश्वत महत्ता वाले एवं सर्वहितेशी विचारों और कर्मों को अपने परंपरा के रूप में अपनाता तथा आत्मसात करता है, वही संस्कृति है। संस्कृति व्यक्तिनिष्ठ एवं क्षणिक न होकर अनेक वर्गों के लोगों द्वारा लंबी अवधि से किए गए आध्यात्मिक प्रयासों का प्रतिफल है। संस्कृति आध्यात्मिक आदर्शों एवं परंपराओं, अहिंसा एवं विश्वास, प्रयोजनों एवं भावनाओं, आचरण एवं कार्यकलापों, विवेक और चेतना की अभिव्यक्त होती है। संस्कृति साध्य नहीं है, साधन है। समाज नहीं, सामाजिक व्यक्तित्व है, एक स्मृति चिन्ह है। संस्कृति सूक्ष्म एवं स्थूल मन क्रम आध्यात्मिक एवं प्रत्यक्ष जीवन का कल्याण करती है। संस्कृति ही शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों और प्रवृत्तियों को विकसित करती है। इसलिए संस्कृति हमारे पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और उसको आगे चलाना भी अत्यंत आवश्यक माना जाता है। हमारे सनातन वैदिक संस्कृति सदियों से नैतिकता, सकारात्मकता, चिंतन एवं सत्य से प्रेरित रहती है। यही संस्कृति संपूर्ण समाज में जन भावना के प्रति आदर की गंगा प्रभावित करती है। भौतिक, धार्मिक, भाषायी, वर्गीय एवं विविध प्रकार के अनेक स्रोत्र हमारे संस्कृति के द्वारा लंबे समय से चले आ रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने इन संस्कृति को आगे ले चलें और अपने आने वाली पीढ़ी को इसके प्रति प्रेरणा करें। धर्म, सभ्यता और संस्कृति हमारे मानव जीवन की एक ऐसे आधार है जो हमें वास्तविक रूप से हमें मानव बनाता है।
धार्मिक उदारता

0: हमारे जीवन का एक अंश होना चाहिए। श्रोताओं, इन विचारों पर आप ध्यान करें और इसे आधार बना करके अपने जीवन को आगे ले चलें। चले आज के कार्यक्रम को हम विराम की ओर लेके चलें। आपकी ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति ओम। श्री श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदू महासभा द्वारा सुधा वरिष्ठी।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले वाकवा के रहने वाले निवासियों को, खासतौर पर विलुकबी रोड और आसपास के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 4 जुलाई 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी।

0: और फिर है वाकवा के ही रहने वाले निवासियों को, खासतौर पर इन गलियों में सायद हुसैन रोड और फिनिक्स के रहने वाले निवासियों को, खासतौर पर सायद हुसैन रोड, मोसल मोगबहत गबदन, फ्लैट सनासी और आसपास के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 5 जुलाई 2024 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
0: पर आप सुन रही हैं कुछ प्यारे प्यारे गीत, आप सभी के नाम भाव गीत। जुड़ रही है हमारे साथ, 6:30 बजे आप पूरा समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार हम फिर से मिलेंगे सुबह का नजराना कार्यक्रम में। तब तक आप सभी को शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्कार राधा, अब 6:30 बजे हैं। पेश है समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। साल 2026 की पहली तिमाही में मॉरीशस का घाटा बेहतर हुआ, वो 1.1 बिलियन रुपए तक आ गया, यानी मूल घरेलू उत्पाद का 0.6%, जबकि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान घाटा 6.2 मिलियन रुपए था। राष्ट्रीय बजट में पेंशन सुधार के सिलसिले में बहसें जारी, श्रमिक संघ का दबाव है और वे सरकार के साथ बातचीत करने की मांग कर रहे हैं। कल सिकुम एम्प्लॉयज यूनियन प्रेस से मुखातिब हुआ। वाकुआ में तकामका पुल फिर से गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। कई महीनों के कार्यों के बाद इस पुल पर अब बड़े वाहन एक साथ दोनों तरफ गुजर सकते हैं। और कुंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला से निपटने के लिए इलाज की पहली कोशिश। नमस्कार राधा। बजट 2026-2027 के जरिए मॉरीशस अपने सार्वजनिक फाइनेंस को बेहतर कर सकेगा। मॉरीशस के लिए BAA फ्री का नोट बरकरार रखते हुए मूडीज के जायजे का ये नतीजा है। अगरचे इस एजेंसी ने घाटे को कम करने और कर्ज को स्थिर बनाने में सरकार की कोशिशों की सराहना की, उसका मानना है कि इस राह में कई खतरे पैदा हो सकते हैं, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ के मद्देनजर। अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर रजनी बेकर का विवरण।
2: बजट 2026-2027 सरकार की बजट स्ट्रेटेजी का एक अहम पड़ाव है। मूडीज की ओर से पिछले जून महीने के अंत में साकार किए गए मूल्यांकन में इस बात का उल्लेख। रैंकिंग एजेंसी ने पाया कि वित्तीय मजबूतीकरण

को लेकर ठोस प्रगति हुई है। इसके अतिरिक्त मूडीज ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश की आय को बढ़ाने के वास्ते कदम निर्धारित हैं। इनमें सबसे ज्यादा आय प्राप्त करने वालों के लिए 35% की नई कर लागू की बात शामिल, डिजिटल सेवाओं के विदेशी सप्लायरों के लिए टैक्सेशन भी शामिल। इसके अलावा मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी में ढांचागत सुधार भी सम्मिलित। अर्थशास्त्री डॉक्टर भविष जगन्नाथ ने कहा।

0: j'étais à 3,7% du PIB. Moody's relève dans son rapport que l'exécution budgétaire dépasse une prévision soutenue par une baisse de dépenses courantes plus marquée qu'anticipée. En conséquence, la ratio de la dette publique par rapport du PIB il commence à stabiliser et les pays inversent ainsi la tendance à la détérioration que Moody's s'y prévoit auparavant.
1: लेकिन एजेंसी सावधान है. उसका कहना है कि मॉरिशस के लिए एक नकारात्मक दृष्टिकोण Baa3 का नोट बरकरार है. उसका मानना है कि कई अनिश्चितताएं बनी हुई हैं. मूडीज के अनुसार घाटे की कमी का एक अहम भाग शागोस द्वीप समूह के समझौते की प्रतीक्षित आय पर भी निर्भर है. इस विशेष आय के बिना घाटा GDP के 5% से नजदीक पहुंच सकता है. इसके अलावा एजेंसी ने पेंशन सुधार से जुड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया, जिसे भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है, और साथ में हाईली क्वालिफाइड पेशेवरों के लिए नई वित्तीय क्षमताओं के प्रभाव भी हैं और योग्यताओं के पलायन के बढ़ते खतरे भी. इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के CEO पॉल बेकर ने कहा,
2: are relatively high. It's high time to reform the system. Maybe as an economist, how you view the pension reform in Mauritius?
3: Yes, I mean, so Mauritius, like most countries, is facing an aging population. A smaller tax base to pay towards and to contribute towards government revenue, and yet higher payouts. And so that is not unusual to be a burden on most countries. So some sort of reform may indeed be needed. Inevitably, maybe not this year or next year, but there will be need to reform the pension system in Mauritius because of this aging population.
2: The policy drift risk mentioned by Moody's. You want to add something else?
3: One of the issues is the changes in taxation in Mauritius. So there is a much higher rate for those that earn quite a lot, and that is likely to affect confidence and spending. And so we can expect, I think, much lower growth rates than was forecasted in the budget.
1: मुनीज ने यह भी कहा कि मॉरिशस में सार्वजनिक फाइनेंस में सुधार इस बात पर भी टिका हुआ है कि सरकार किस तरह आर्थिक एवं राजनीतिक खतरों का सामना करते हुए घोषित सुधारों को अमल में लाती है. अंत में मूडीज ने वैश्विक अर्थतंत्र की अनिश्चितताओं को लेकर सचेत किया, जैसे कि जियोपॉलिटिकल तनाव है, सप्लाई चेन में रुकावटें और रुपए के भाव का डिप्रिसिएशन, जिनका असर देश की वृद्धि की संभावनाओं पर पड़ सकती है.
4: साल 2026 की पहली तिमाही में मॉरिशस का घाटा बेहतर हुआ है. वो 1.1 बिलियन रुपए तक आ गया, यानी मूल घरेलू उत्पाद GDP का 0.6%. पिछले साल की इसी अवधि के दौरान घाटा 6.2 मिलियन रुपए था और ये घाटा GDP में 3.7% का प्रतिनिधित्व करता था. स्पष्ट रूप से देश में आने वाले पैसों के मुकाबले कम पैसे बाहर गए. ये हालत पर्यटन और सेवाओं की बदौलत बेहतर हुई है, लेकिन मॉरिशस अपने निर्यात से ज्यादा पैदावारों का आयात करता जा रहा है. आद्रियन वालिया, अभी उदय.
5: करंट डेफिसिट का मतलब है उन पैसे का अंतर जो देश के भीतर आता है और जो पैसा देश से बाहर यानी कि विदेश जाता है. पैसा देश में तब आता है जब उदाहरण के लिए विदेशी पर्यटक मॉरिशस में आकर खर्च करते हैं या जब हमारा देश अपनी चीजें विदेशों में बेचता है यानी कि निर्यात करता है. पैसा देश से बाहर तब जाता है जब मॉरिशस बाहर से सामान खरीदता है यानी कि आयात करता है, जैसे कि ईंधन, गाड़ियां, खाने पीने की चीजें या फिर मशीनें. साल 2026 की पहली तिमाही में ये चालू खाता घाटा घटकर 1.1 बिलियन रुपए रह गया है. पिछले साल इसी अवधि में ये घाटा 6.2 बिलियन रुपए का था. इसका मतलब ये है कि स्थिति में सुधार हुआ है, परंतु इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि मॉरिशस खरीदने से ज्यादा बेच रहा है. देश भी निर्यात से कहीं ज्यादा बाहर से सामान खरीद रहा है. जिस चीज ने मॉरिशस की सबसे ज्यादा मदद की है वह है सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र, जिसमें 35 बिलियन रुपए का मुनाफा हुआ है. इसमें पर्यटन ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि पर्यटन से होने वाली कमाई में 28% की वृद्धि दर्ज की गई है. मॉरिशस अब भी बाहर से सामान मंगाने पर बहुत पैसा खर्च कर रहा है, परंतु पर्यटन और सेवा क्षेत्र की

0: बदौलत साल 2026 की पहली तिमाही में चालू खाता घाटा काफी हद तक कम हो गया है।
1: राष्ट्रीय बजट में पेंशन सुधार के सिलसिले में बहसें जारी हैं। श्रमिक संघ का दबाव है और वे सरकार के साथ बातचीत करने की मांग कर रहे हैं। कल सीकम एम्प्लॉयज यूनियन प्रेस से मुखातिब हुआ प्रवक्ता दीपक बेनीदी ने बजट में ऐलान किए गए कदमों को लेकर अपनी नारजामंदी दोहराई है। उनका कहना है कि सुधार यूनिवर्सल पेंशन के आदर्श पर सवाल करता है और इससे भविष्य के रिटायर लोगों को नुकसान होगा। श्रमिक संघ बदलाव की मांग कर रहा है और सामाजिक साझेदारों के साथ सलाह मशवरा करने की दरखास्त कर रहा है। रजनी बेकर की जबानी दीपक बेनीदीन को सुनते हैं। अनिशा मदया ने उनसे बात की।
2: दीपक बेनीदीन ने कहा यही मांग कर रहे हैं कि सब पहले की तरह वापस किया जाए, पेंशन प्राप्त करने की उम्र 60 वर्ष तक किया जाए, कोई सुधार न लाया जाए, कुछ लोगों को कम पेंशन मिले, एक व्यक्ति को उसका 15,500 रुपए मिलना चाहिए। दूसरी बात, पेंशन फंड को न छुएं, एनपीपीएफ कायम न किया जाए। एनपीपीएफ से बिल्कुल सहमत नहीं है, परामर्श बातचीत नहीं की गई है। सिकम से फंड लेकर इस्तेमाल किया जाए या एनपीपीएफ में लगाया जाए, यही चाहते हैं कि फिर से शुरुआत करें। वित्त मंत्री के साथ बातचीत करने की मांग कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री भी हैं।
1: वाकवा में तकामका पुल अब फिर से कार्यरत होने लगा है। ये पुल 60 से ज्यादा साल पुराना है, जिस पर दो बसें एक ही वक्त दो लेन पर नहीं गुजर पाती थीं। कई महीनों के कार्यों के बाद कल पुल का फिर से उद्घाटन किया गया है।
3: वाकवा और लामारी को जोड़ने वाले इस मार्ग से हर दिन बड़ी संख्या में वाहन गुजरती हैं, लेकिन अब तक ताकामाका पुल से होकर गुजरना लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ था। पुराना पुल मौजूदा यातायात के लिए काफी तंग हो गया था, विशेषकर बसों के आमने सामने आने पर आवाजाही मुश्किल हो जाती थी। साथ ही पुल की संरचना भी जर्जर होने लगी थी, इसलिए पुल का पूरी तरह पुनर्निर्माण किया गया और इसे चौड़ा किया गया। इस पुल की चौड़ाई 5.420 मीटर हुआ करता था, अब निर्माण के बाद इसको 6.750 मीटर तक बढ़ाया गया है। ये पुल पहले से ही नीचे से ढहने लगा था, लोहे दम तोड़ने लगे थे, पर मरम्मत के दौरान इसे पूरी तरह मजबूत बनाया गया है। नई व्यवस्था से खासकर व्यस्त समय में यातायात प्रबंधन और आसान हो जाएगा। ये पुल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी वाहन जोल से निकलते हुए सावोई की ओर बढ़ती हैं, इसी मार्ग से जाती हैं। ये एक रणनीतिक जगह है जहां बहुत बाशिंदे और कारोबार मौजूद हैं। प्रतिदिन कई हजार वाहन यहां से गुजरती हैं। जब निर्माण कार्य जारी था तो एक डायवर्शन लाया गया था जिसके कारण यातायात में रुकावट हो रही थी, अब सब सुगम हो गया है। वाहन चालकों ने भी इस बदलाव का स्वागत किया। इस नए पुल के साथ अधिकारियों को उम्मीद है कि वाकवा क्षेत्र की प्रमुख यातायात समस्याओं में से एक का स्थायी समाधान होगा और लोगों को अधिक सुगम, सुरक्षित तथा आज की यातायात आवश्यकताओं के अनुरूप सफर मिल सकेगा।
1: स्वास्थ्य सेवाओं और उच्च शिक्षा की तरक्की में मुर्शसनिक नया चरण पार किया। स्वास्थ्य मंत्रालय और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड मैनेजमेंट स्टडीज IIMM मुर्शस के बीच सहयोग हो रहा है ताकि मुर्शस में भावी डॉक्टरों के प्रशिक्षण को और ठोस बनाया जा सके। इस समझौते के जरिए मंत्रालय की निगरानी के तहत संस्था के मेडिकल तलबा सर शिव सागर राम गुलाम अस्पताल और दूसरे खास अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केंद्रों में अपना क्लिनिकल प्रशिक्षण ले सकते हैं। अफ्रीका और हिंद महासागर इलाके में मुर्शस को एक इलाकाई मेडिकल प्रशिक्षण हब बनाने की कटिबद्धता में ये पहल ली गई है। गए सालों में ओजेम्पिक मुर्शस में काफ़ी आम बन गया है। नोवोनोडिस्क द्वारा औपचारिक तौर पर लॉन्च होने के बाद ये इंजेक्शन डायबिटीज टाइप 2 का इलाज करने में मदद देता है। मुर्शस में 5 मुर्शन पीछे एक व्यक्ति डायबिटीज का शिकार है। अनुलाजस फिर से आरटीओ कंपनी के सीईओ के पद पर फायज हुए हैं। बुध को IBL ग्रुप के सीईओ की औपचारिक नियुक्ति हुई। अनुलाजस को इस क्षेत्र में तजुर्बा है। अप्रैल 2018

2018 से 2022 तक वो ये जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ग्रुप की एक औपचारिक विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी है कि जेरोम दे शातोनफ ने अवकाश ले लिया है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला महामारी से निपटने के लिए इलाज की कोशिश की जाने लगी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐलान किया कि पहले मरीज की जिम्मेदारी ली गई। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 1400 से ज्यादा मामले पाए जा चुके हैं और 438 लोग जान से गए हैं। अभी तक वायरस के खिलाफ कोई टीका विकसित नहीं है। थाईलैंड के उत्तर पूर्व में एक सड़क हादसा हुआ। 9 मॉन्क्स की मौत हुई। एक 11 साल का लड़का गाड़ी चला रहा था। उसने अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर ट्रक लिया। जापान की प्रधानमंत्री सोलहवें जापान भारत शिखर वार्ता में हिस्सा लेने के लिए भारत के औपचारिक दौरे पर हैं। कल 16 समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची के बीच एक उच्च स्तरीय मुलाकात हुई। रणनीतिक, टेक्नोलॉजिकल और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करते हुए सप्लाई चेन, नवीनीकरण और अनुसंधान पर जोर दिया गया।

और अब मौसम की बात। आम हालत हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। पूर्व और ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश होगी और दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। रात को आमतौर पर घने बादल होंगे। सेंट्रल प्लेटों पर हल्की वर्षा होगी। हवा पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दक्षिण और पश्चिम वाले लगूनों में दूर समंदर में ना जाने की दरखास्त है। तापमान सेंट्रल प्लेटों में न्यूनतम तापमान 14 से 17, अधिकतम 20 से 23, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज शाम 5:42 पर सूरज ढल जाएगा।

फुटबॉल की ये खबर सुनिए, पुर्तगाल ने कल क्रोएशिया को 2-1 से हराया है। स्पेन और ऑस्ट्रिया के मैच में स्पेन की 3-0 से जीत हुई और अभी सुबह 7 बजे स्विट्जरलैंड अल्जीरिया के खिलाफ खेलने वाला है। आज की सुर्खियां एक बार फिर से सुनिए। साल 2026 की पहली तिमाही में मॉरिशस का घाटा बेहतर हुआ, वो 1.1 बिलियन रुपए तक आ गया है, यानी मूल घरेलू उत्पाद GDP का 0.6%, जबकि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान घाटा 6.2 मिलियन रुपए था। राष्ट्रीय बजट में पेंशन सुधार के सिलसिले में बहसें जारी, श्रमिक संघ का दबाव है और वो सरकार के साथ बातचीत करने की मांग कर रहे हैं। कल सिकोम एम्प्लॉयज यूनियन प्रेस से मुखातिब हुआ। वाकवा में तकामाका पुल फिर से गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। कई महीनों के कार्यों के बाद इस पुल पर अब बड़े वाहन एक साथ दोनों तरफ गुजर सकते हैं। और कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एबोला से निपटने के लिए इलाज की पहली कोशिश। तो ये थी अब तक की खबरें। आप तक ये बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभागों और हमारे तकनीकी साथी फैजान नूरदाली की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार और आदाब, इजाज़त दीजिए। अब शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड त्यागूज में 73 साल के 73 years old श्री प्रकाश गोबिन जो विनोद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थ ही आज एक बजे इनके घर रॉयल रोड त्यागूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमौशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 1 PM। शिवाला रोड बुआगूज पोम्पलेमूस में 60 साल के 60 years old श्री विश्वजीत बिकम जो गौसों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल डेढ़ बजे इनकी बहन पिमकी बिकम के घर शिवाला रोड बुआगूज पोम्पलेमूस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पोम्पलेमूस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमोरो एट 1:30 PM। सिमेट्री रोड प्लानमान्यो में 36 साल के 36 years old श्री विकीश

बुदन श्री विकीश बुदन, जो इशले के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है अर्थात कल सुबह दस बजे इनकी माँ संध्या रापूजी के घर सिमिट्री रोड प्लेनमायों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमायों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। टेम्पल रोड आमोगी में 82 साल के 82 years old श्री मोदे मुदले वायापुरी, जो राजू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं अर्थे आज एक बजे इनकी पत्नी माया वायापुरी के घर टेम्पल रोड आमोगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आमोगी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। ऋषि दयानंद लेन मौलाशो में 76 साल के 76 years old श्री सुलेश गुकुलक, जो सुलेश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और SSR अस्पताल के पूर्व अटेंडेंट थे, की मृत्यु हो गई हैं अर्थे आज 11 बजे इनकी पत्नी माला गोकुलक के घर ऋषि दयानंद लेन मौलाशो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए क्रिमेशन ग्राउंड इजी दो कोज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। नंबर 13A नंबर 13A एवेन्यू कॉर्डिनल सुदना 4 बोन में 89 साल के 89 years old श्री चंद्रदत्त रामबारन, जो पानंद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज 11 बजे एलियन सन रॉयल रोड बुबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुरफेनो वाकवा की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। रामलगन स्ट्रीट बिजुकाप में 54 साल के 54 years old श्री धीरा जीतू, जो अजय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज एक बजे के घर रामलगन स्ट्रीट बेजुकाप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सहमौते बेलोम्ब की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। कालीचरण लेन कागोलालियान वाकवा में 82 साल के 82 years old श्री अभिमग्नू सिबनाथ, जो पांडुमन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज 11 बजे के बेटे किरण सिबनाथ के घर कालीचरण लेन कागोलालियान वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आली भैयों की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। बुदन रोड पेलघा सेवास्तोपुर में 62 साल की 62 years old श्रीमती राजवंती सिम रिकिया, जो सुनीता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है अर्थी आज 11 बजे इनकी बेटी मीनाक्षी रघु के घर बुदन रोड पेलघा सेवास्तोपुर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंडे मास्क की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। SSR लेन पोला शेयर नथोदाम में 75 साल की 75 years old श्रीमती कृष्णावती तिलू, पैदाशी नाम जिलाल, जो रानी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज 10 बजे इनके बेटे नीलेश तिलू के घर SSR लेन पोला शेया नथोदाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमोशों की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 AM। नंबर 36 ओनरी ओंद्रे शापरों स्ट्रीट वाले दे प्रत्र में 85 साल के 85 years old श्री सदा सिवन गोविंदा स्वामी, जो तोम्बिला के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज एक बजे इनके घर नंबर 36 ओनरी ओंद्रे शापरों स्ट्रीट वाले दे प्रत्र से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैन जॉर्ज लिसालिन की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड पालमा 4 बोन में 82 साल की 82 years old श्रीमती लीलाबाई महादू, जो नीलाबाई के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज एक बजे इनके बेटे राज महादू के घर से उठाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। लुलजी लेन मोताबा में 77 साल के 77 years old श्री उदय सिंह ओबिल सिंह, जो उदय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज एक बजे इनकी पत्नी माला उदबेल सिंह के घर लुलजी लेन मोताबा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताबा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। इग्नर रोड रुजिल में 65 साल के 65 years old श्री अनोथ गोपुल, जो मनोज के नाम से ज़्यादा जाने जाते

0: बताते थे कि मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दो बजे के घर युग्ने रोड रिजहिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदुगौद की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। कोऑपरेटिव रोड मेलरोज में 79 साल की 79 years old श्रीमती धनवंती सिबोरत। श्रीमती धनवंती सिबोरत पैदाइशी नाम सरमन जो मांटी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दोपहर तीन बजे इनके बेटे सुभाष सिबोरत के घर कोऑपरेटिव रोड मेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदी मास की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
3: वार्षिक महोत्सवम के संदर्भ में मॉरिशस तेलुगु महासभा के तत्वावधान में पॉपलबस के श्री विष्णु आलयम मॉरिशस तेलुगु महासभा के सीट में शुक्रवार 3 जुलाई को विश्वक सेना पूजा होमम और मंत्र पुष्पम का आयोजन कर रहा है।

स्पोर्ट्स न्यूज। सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्पेन और पोर्टुगल वर्ल्ड कप के लास्ट 16 में जहां ऑस्ट्रिया को हराने में स्पेन को कोई पेन कठिनाई नहीं हुई, वहीं पर पोर्टुगल को बचाया एक विवादास्पद एक कंट्रोवर्शियल वार डिसीजन ने। स्पेन 3 ऑस्ट्रिया 0। 16 साल बाद स्पेन की टीम बेस्ट ऑफ 16 में आ पाई। मिकेल ओयोजाबाल का डबल, एक गोल पेड्रो पोरो का। इस वर्ल्ड कप में स्पेन पर अभी तक कोई गोल स्कोर नहीं कर पाया है, डिफेंस अटूट है। लामिन यमाल गोल नहीं स्कोर कर पाया, पर कमाल का परफॉर्मेंस रहा उसकी ओर से। लास्ट 16 में स्पेन का सामना पोर्टुगल से होगा। 2-1 से क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम ने क्रोएशिया को हराया। सब कुछ बहुत कुछ सेकंड हाफ में हुआ। क्रोएशिया ने पहला गोल स्कोर किया पेरिसिच के जरिए, फिर पेनाल्टी पर रोनाल्डो ने इक्वलाइज किया और इंजरी टाइम में रामोस का गोल। वार ड्रामा रहा इस मैच में। क्रोएशिया के लिए वाजोल का गोल नहीं दिया गया। लंबी वार चेक के बाद वार इनकार कर गया इस गोल को। कई फुटबॉल एक्सपर्ट इस फैसले से खुश नहीं है, इसका विरोध कर रहे हैं। वार का वार क्रोएशिया पर भारी पड़ा। पोर्टुगल क्वालिफाई, स्पेन इंतजार कर रहा है। और आज सुबह 7 बजे से मैच शुरू होगा स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया के बीच। फिर रात के 10 बजे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इजिप्ट और कल सुबह 2 बजे अर्जेंटीना वर्सेस केप वर्दे। 5:30 बजे 5:30 AM कोलंबिया वर्सेस गाना। और कल रात लास्ट 16 शुरू होंगे। 9 बजे कनाडा वर्सेस मोरक्को। रात्रि के 1 बजे पाराग्वे फ्रांस। ये लास्ट 16 कल से ही शुरू। ट्रांसफर न्यूज। रिलीगेशन से बचने के बाद इस सीजन टोटनहम हॉटस्पर फुल तैयारी के साथ आना चाहता है। एक के बाद एक नए खिलाड़ी साइन किए जा रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है ये। 237 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग खर्च किए जा चुके हैं, अभी और खरीदना है। लेटेस्ट 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर टोनाली के लिए डील लगभग डॉन है। मैनचेस्टर यूनाइटेड देखता रह गया। माचुस फर्नांडिस टोटनहम हॉटस्पर में चला गया।

0: गया। अब दरवर डेविस ब्राइटन के मिडफील्डर कार्लोस बालेबा के पीछे है। आर्सेनल न्यूकासल यूनाइटेड से ब्रूनो गुमारेस के लिए 60 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग देने के लिए तैयार है। टेनिस में विंबलडन ओपन में कल श्वातेक बेरेटिनी रिबाकिना कीज बेरेव डिमित्रो फ्रिट्स जोदार अनिमिसोवा चाफोई डेमिनो इन सभी खिलाड़ियों की जीत हुई। आज के मैचों में जोकोविच का मुकाबला रिंडिंग नर्च से है। साबालेंका ओस्टापेंको ओगा अलियासिमे खेलेगा जेंग के खिलाफ। सीना ब्रुक्सबी और ल्यू वर्सेस कोको गोफ। क्रिकेट में वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। कल इंग्लैंड की वुमेन टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल का टिकट बुक किया। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें। स्पेन और पोर्तुगल पहुंचे लास्ट 16 में। आज सुबह 7 बजे मैच शुरू हो गया है। इस पर आपको नतीजे देंगे 7:30 बजे RM2 पर और 8:30 बजे RN2 पर। भूलिएगा नहीं स्पेशल वर्ल्ड कप मैगजीन। नमस्कार, आप सभी लोगों का अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। घड़ी मिलाते चलिए, इस समय 7:05 हो चुके हैं। सुबह का नजराना कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। कहा जाता है हर सुबह एक नया जन्म है, हर दिन जीवन को बदलने का एक अवसर है। क्रोध को छोड़िए, करुणा को अपनाइए। आइए इसे शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। चिंतन से आइए इसे सुनते हैं श्रीमती डॉक्टर लक्ष्मी जमन जी की प्रस्तुति में।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: गुणहीन मनुष्य में बल, शौर्य आदि सभी गुणों का अभाव हो जाता है। बल, शौर्य से रहित मनुष्य सभी से अपमानित होता है।

0: झलकियां
1: झलकियां
0: रेडियो मॉरीशस
2: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरीशस। रेडियो मॉरीशस
1: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियाँ सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले क्यूपीप के रहने वाले निवासियों को, खासतौर पर ओकुले कास्टेल ऑंग्रे मौशाल के रहने वाले निवासियों को, खासतौर पर इन गलियों में लापेगूज कॉन्हुया स्टेरिलिंग और शिवानंदा आवेन्यू के कुछ हिस्सों में लोटस गुलाम हुसैन उमद मोदैन आरी रोवा रामजीन मिलभ्राव

0: Schumann, Garon, Appaya, Gautré, Bhagirathi, Azrari Singh, Edu, Igbar, Oj Ganacho, Tufani, Boundary, Impasse Carol, Oj Monselmar Quentin, Gobin, Oj Souchon, Ke Rehne Vale Nivation Ko Suchit Kia Jata Hai, Ki 5 July 2026 Ko Subha Ke Sare 8 Baje Se Lekar Sham Ke 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और फिर हैं गोजिल के रहने वाले निवासियों को, खासतौर पर इन गलियों में एवेन्यू बाउंडेरी, बो सेजू और अक्वारेल के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 4 जुलाई 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और फिर अंत में है पिचित वेरे और सैम्पिया के रहने वाले निवासियों को, खासतौर पर बॉशेरी रोड, लापुस रिविया बाचिस्ट और स्कूल लेन और इग्लीज सैम्पिया के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 4 जुलाई 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर सपहर के 3:30 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चल विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है,
1: 819 किलोहर्ट्ज़। ये है रेडियो मॉरिशस।

चलिए एक नज़र डालते हैं आज के रेडियो कार्यक्रमों पर। और अभी आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम, 7:30 बजे जन पॉपुलर गीत आप सभी के नाम, 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे, समाचारों के उस पार गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम, और 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम आप सुन पाएंगे किरण जानकी जी द्वारा। फिर आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत चलाएंगे, 9 बजे समाचार होंगे, समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम 9:10 पर, 10 बजे फिर से समाचार होंगे, समाचारों के उस पार भक्ति धारा लेकर आएगी रोशनी, और 11 बजे आप समाचार फिर से सुन पाएंगे, 11:03 पर शम्मे फरोजा सायदा की तरफ से उर्दू कार्यक्रम।

0: और 12 बजे आप तेलुगु भाषा में कृतिका द्वारा कार्यक्रम सुन पाएंगे। दिन के 1 बजे तमिल भाषा में आरसी द्वारा कार्यक्रम सुनेंगे। दिन के 1:45 पर गुजराती भाषा में रत्नाजी लेकर आएगी रंगारंग कार्यक्रम और 2 बजे आप चाइनीज कार्यक्रम सुन पाएंगे होंग होंग के साथ। 2:30 बजे आपकी पसंद कार्यक्रम 4028085 पर आप अपना रिक्वेस्ट फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं और दोपहर के 3 बजे आप समाचार फिर से सुन पाएंगे। समाचारों के उस पर दोपहर के 3:10 पर आपकी पसंद कार्यक्रम जारी रहेगा और दोपहर के 3:45 से लेकर शाम के 4:40 तक उर्दू कार्यक्रम अनवर की तरफ से। शाम के 5 बजे गीत और गजल कार्यक्रम परवेजा की तरफ से आप सुन पाएंगे और 6 बजे आप पूरा समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार चंद प्यारे फिल्मी गीत आप सभी के नाम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर 6:20 पर। 6:30 बजे आप चाइनीज कार्यक्रम सुन पाएंगे जैन के तरफ से और रात के सात बजे तमिल भाषा में आप कार्यक्रम सुन पाएंगे। 7:30 बजे तेलुगु भाषा में आप सुन पाएंगे विश्वा जी की ओर से कार्यक्रम और 7:50 पर गीत गंगा कार्यक्रम मराठी भाषा में बापू की तरफ से और भजले प्रभु का नाम भक्ति कार्यक्रम अलका जी द्वारा 8:10 पर महफिले शब इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगी परवेजा 8:40 पर। 9 बजे कुछ तड़केदार भोजपुरी गीत आप सभी के नाम सुरेखा जी प्रस्तुत करेगी और 11 बजे कुछ पुराने दौर के गीत सुनहरे पल गिनिशा प्रस्तुत करेगी। 12 बजे से लेकर 6 बजे तक चंद प्यारे फिल्मी गीत आप सभी के नाम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर।
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस
1: झलकियां
2: झलकियां।

एक परदेसी मेरा दिल ले गया, मोहम्मद रफी जी की आवाज में और साथ दे रही है आशा जी। कुछ पुराने दौर के गीत था, पुराने दौर की ओर ले चल रहे हैं आप सभी को। जुड़ गए हैं सूरज शर्मा, सजादा जी, इंदिरा लौटन जी हैं, शोभा जी हैं वाकवा से, सुनीता जी हैं घोंगुप से, धनी जी हैं बॉशेरी से,

भाई सुबह सुबह कहते हैं कि हम सभी जल्दबाजी में होते हैं, पर जीवन तो वही है जहाँ पर आप सभी का मुस्कान है, खुशी है। खुश रहने के लिए बहुत कुछ पाना जरूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ शुक्रगुजार होना ही काफी होता है। लक्ष्मी जी हैं बॉम्बू से, आपका स्वागत है लक्ष्मी जी। शकुन जी हैं गोजबेल से।

0: यूं ही हम नहीं कहते ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि इन गीतों में बहुत कुछ छुपा है। जब जब भी हमें जिंदगी गिराता है या फिर उठाता भी है, तब तब भी ये गीत ही हौसला देता है। कहते हैं कल की चिंता छोड़िए, आज की सुबह को गले लगाइए, यही पल सबसे खूबसूरत है, क्योंकि आपका जो आज है आपके ही हाथों में है। इसको संवारना या बिगाड़ना आपके ही हाथों में है। जिंदगी खेल है, इसे सीरियसली मत लीजिए। खेलिए, खिलाड़ी बनिए, अनाड़ी नहीं। जुड़ चुकी है हमारे साथ मीला जी न्यू ग्रोव से, और रुश्मा को हाय प्रीता, मकेश की खुशी, जेसिका और सभी परिवार साथ दे रहे हैं। गीता जी हैं पोंफिया से, साधना जी हैं तेजल गौरव, और साथ में है ग्रियान जिया, उनका छोटा लड्डू गोपाल, तस्विक भी और जीवन परिवार।
1: हरी है

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: इंडियन सिनेमा के ये भी दौर बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि इसमें रोमांटिक गीत का ही सफर है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे संगीतकार भी आए, ऐसे ऐसे गायक भी आए, जिन्होंने हमें एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर गीत दिए हैं। आइए सुनते हैं अलका जी की आवाज में और साथ में है कुमार सानू जी। सोल्डियर फिल्म से कहते हैं, जीवन में अगर कुछ पाना है तो सोल्डियर बनकर ही जीना है। डर से मत डर, कुछ अलग कर। मला सुमारू जी हैं, साथ में हैं वीना रामफल जी और साथ में हैं श्यामा रघुनंदन जी।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: भाई खंडाला नहीं बल्कि मैं तो कहूंगी, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी का स्वागत है रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। आशा जी है, आशा जानू जी हैं कोटेज से, मामा जो हैं कुमारी, नेफ्यू हैं शुभम, ऋषभ, दीदी आरती, जीजू हैं राज और सभी जानू परिवार और हमारे इस प्लेलिस्ट को एंजॉय कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। शैला जी हैं गौंदिया सुदेश से और अभी के लिए साथ दे रही हैं शीला जी, बिमाना जी और पालमा से सुन रही हैं। और देवी जी हैं वो साथ निभा रही हैं, आपका स्वागत है। तो चलिए खंडाला तो हो गया, अब तो चलिए। एक ऐसा एक्टर आया था उस 90s के दौर में जिन्होंने हंसाया भी बहुत, रुलाया भी बहुत, और क्या डांस करते हैं जब भी स्क्रीन पर आते हैं ना, सबको नचा देते हैं।

मैं इसी उम्मीद के साथ हम चले आते हैं रेडियो मॉर्शस के लहरों पर, जहाँ पर इतने प्यारे प्यारे श्रोतागण जो है हमारे साथ दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा जाता है ना कि हर सुर एक कहानी है और हर कहानी एक नई उम्मीद, इसी उम्मीद के साथ चलिए आप सभी के नाम तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा ही अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब भी आप

साथ देते हो। सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए, ये है आपका कार्यक्रम सुबह का नजराना। मुंजी हैं ख्वाहियों से अपने पूरे परिवार के साथ, साथ नबारी हैं कमला जी मोताबा से प्यारी आरोही के लिए और उनके पूरे परिवार के नाम। विजय बंदन जी हैं क्लाविट से और चित्रा जी हैं मादालबिया से। साथ में हैं नवीन जी, उनकी प्यारी पत्नी

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: भाई जो भी है, मुझे भी बड़ा ही अच्छा लगता है जब भी आप हमारे साथ इतने प्यार से जुड़ जाते हैं। कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर हर खोया हुआ चीज यूं ही आप दुख मत मनाइए, क्योंकि कुछ बेहतर छुपा है। साथ देते रहिए, 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार फिर से मिलेंगे।

गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में कुछ गर्मा गर्म प्रश्नों के साथ तो तैयार रहें, बातें करेंगे, मस्ती करेंगे और कुछ दिमाग की कसरत भी। तब तक के लिए पूजा की ओर से आप सभी को शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्ते और सलाम फजर के 8 बजे।

0: आवाजा समाचार सुनजा। साल 2026 के पहला तिमाही में मुर्शस के घाटा बेहतर होल बाते ऊ 1.1 बिलियन रुपए ले आवत्ता, यानी मूल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 0.6%। गल बरीस के यही अवधि के दौरान घाटा 6.2 मिलियन रुपए था और ई घाटा जीडीपी में 3.7% के प्रतिनिधित्व करथवंजा। स्पष्ट रूप से देश में आए होला पैसा के मुकाबले कम पैसा बाहर गलबा। ई हालत पर्यटन और सेवा के बदौलत बेहतर होलबा, पर मुर्शस अपन निर्यात से जस्ती पैदावार के आयात करल जात बाती। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के तरक्की में मुर्शस ने एगो नवाचरण पार करल। स्वास्थ्य मंत्रालय और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड मैनेजमेंट स्टडीज IIMM मुर्शस के बीच सहयोग होल बा, ताकि मुर्शस में भावी डॉक्टर लोग के प्रशिक्षण के और ठोस बनाए सकेला। इस समझौता के जरिए मंत्रालय के निगरानी के तहत संस्था के मेडिकल तलबा सर शिव सागर राम गुलाम अस्पताल, दूसर खास अस्पताल में और स्वास्थ्य केंद्र में अपन क्लिनिकल प्रशिक्षण ले सकेबा। वाकवा के पोताकामाका पुल फेनो से कार्यरत होलबा। ई पुल 60 से जस्ती बरिस पुराना है, जे पर एगो वक्त 2 बस साथ नहीं गुजर पावेला। कई महीना के कार्य के बाद कल से पुल फिनो से कार्यरत बाती। विदेश में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एबोला महामारी से निपटने खातिर इलाज के कोशिश करल जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ऐलान करेला कि पहला मरीज के जिम्मेदारी लेवल गल। कोंगो में 1400 जस्ती मामला पावल गल और 438 जना के मौत हो गल बाती। तो ये रहल समाचार। नमस्ते और सलाम।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: मरने की खबर सुना जा। कोऑपरेटिव रोड मेलरोज में 3 कोरी 19 बरिस

0: इंकर माती आज एक बजे इंकर पत्नी माया वारापुरी के घरे टेम्पल रोड आमोगी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लामोगी के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टुडे एट 1 PM सिमेट्री रोड प्लेन मान्योमी एक कोरी 16 बरिस के 36 श्री विकीश बुदन जो निशले के नाम से जस्ती जाना चात्रलन गुजर गलहवन इंकर माती काल 10 बजे इंकर माँ संध्या रापूजी के घरे सिमेट्री रोड प्लेन मान्यों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर प्लेन मान्यों के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टुमोरो 10 AM शिवाला रोड बुआरूज पोम्पलेमूस में 3 कोरी 60 के श्री विश्वजीत बिकम जिन गौसों के नाम से जस्ती जाना जाता रलन गुजर गलहवन इंकर माती काल एक बज के आधा इंकर बहन पिमकी बिकन के घरे शिवाला रोड बुआरूज पोम्पलेमूस से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पोम्पलेमूस के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM रॉयल रोड त्यागूज में 3 कोरी 13 बरिस के 63 श्री प्रकाश गोबिन जिन विनोद के नाम से जस्ती जाना जात रलन गुजर गलहवन इंकर माती आज एक बजे इंकर घरे रॉयल रोड त्यागूज से उठा के अंतिम संस्कार खातिर वामोशा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 1 PM बस्टोम रोड लाफलोगा में 3 कोरी 15 बरिस के 75 श्री रामदत्त रागदू जिन कुमार के नाम से जिसकी जाना जाता रलन गुजर गलहवन इंकर माती आज दो बजे इंकर बेटा योविन रागदू के घरे बस्टोम रोड लाफलोगा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गाँव बुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 2 PM क्षेत्र रोड ग्रैंड रिट्रीट में 3 कोरी 19 बरिस के 79 श्रीमती पुष्पावती भोला जन पुष्पावती के नाम से जस्ती जाना जात्रा रन गुजर गलहवन इंकर माती आज 12 बजे इंकर पति अमीर चंद्र भोला के घरे क्षेत्र रोड ग्रैंड रिट्रीट से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लावोंचा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टुडे एट नून शुक में दुबे परिवारों से हम दर्दी बातें
1: एट 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस गर्मा गर्म नाश्ता।
1: हम भी बड़े हसरत के साथ आए हुए हैं आप लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि अभी शुरू होने वाली है गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम। साथ नभारी है पूजा, सभी को नमस्कार एक बार फिर से। आइए इस कार्यक्रम में भाग लीजिए, नंबर तो वही है 4028085 पर, 92.85 पर, या फिर 5251700 पर आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। आइए पहला सवाल, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुने। दो मेहमान हैं जो बारी बारी हमसे मिलने आते हैं और चले भी जाते हैं, कौन है वे? दो मेहमान हैं, बारी बारी हमसे मिलने आते हैं और चले भी जाते हैं, कौन है वह? चलिए बताइए। दो मेहमान आते हैं, बारी बारी हमसे मिलने आते हैं और चले भी जाते हैं, कौन है वे? 4028085 पर आप सभी का इंतजार है।

0: कभी हारने नहीं देना है।
1: मेरा दिल जला।
0: लाइन पर एक श्रोता है, आइए उनको सुनते हैं कि उनके पास क्या जवाब है। हेलो
2: हेलो प्यारे पूजा जी, नमस्कार।

0: अच्छा मैं बोल रही हूँ,
1: जी
0: तो कभी है पूजा जी, कपल में माशा, पल में तोला, कभी ठीक कभी नहीं ठीक, अप्स एंड डाउन होता रहता है, जानती है ना आप।
1: हाँ जी, ये तो है, वो तो
0: और
1: है।
0: जब हम इस उम्र में है तो हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं कि कब अच्छा है कब नहीं, लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छी हूँ अभी।
1: भगवान की कृपा से आप यूं ही ऐसे ही मुस्कुराते
0: है
1: रहिए।
0: बात भी कर पा रही हूँ ना
1: हाँ,
0: अभी।
1: वही तो।
0: हाँ तो जवाब तो दिलचस्प है सवाल, तो मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेहमान की तरह जो आता है आते हैं,
1: हाँ,
0: मैं समझती हूँ वो है दुख और सुख।
1: क्या बात, महीने सवाल ही ले गई आप।
0: तो जी तो यही तो आते हैं ना, कि ना ही सुख ज्यादा टिकता है ना ही दुख टिकता है। हाँ कि
1: हाँ,
0: नहीं?
1: और ये दो मेहमान हैं जो हमारे
0: जी,
1: साथी भी
0: एकदम,
1: होते
0: ये
1: हैं।
0: अतिथि है, बिन बुलाए आ जाते हैं, समझ
1: हाँ, ये तो है।
0: रहे हैं ना। और आते हैं तो बहुत ज्यादा वो देर तक रुकते नहीं है, ना ही सुख रुकता है ना ही दुख रुकता है, सभी बारी बारी से आते हैं और आकर चले जाते हैं, जीवन की सीख सिखा जाते हैं पूजा जी।
1: जी, ये तो
0: कभी
1: है।
0: दुख आता है तो जीवन में हमको बहुत कुछ सिखा जाता है, और सुख भी आता है तो यही होता है कि हम मनुष्य को सुख में डराना नहीं चाहिए, दुख में व्याकुल नहीं होना है, दोनों को मतलब संतुलन में
1: हाँ
0: देखना
1: हाँ
0: चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए, मतलब झेल चाहिए
1: जी,
0: उसको। ठीक है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से आपको बधाई मैं कहती हूँ भाग
0: जी
1: लेने के
0: पूजा,
1: लिए।
0: बहुत
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: धन्यवाद,
1: धन्यवाद,
0: जी बहुत
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद,
1: आपको भी,
0: नमस्कार, शुभ दिन।
1: शुभ दिन आपको भी। चलिए दूसरे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। किस दरवाजे को खटखटाने से, ध्यान से सुने, किस दरवाजे को खटखटाने से उन्नति का द्वार खुलता है? किस दरवाजे को खटखटाने से उन्नति का द्वार खुलता है? 4-0-2-8-0-8-5 पर है। किस दरवाजे को खटखटाने से उन्नति का द्वार खुलता है?
0: सबकी यारी मेरा दिल
1: अरे,
0: जला,
1: मेरा भी दिल मत जलाइए,
0: हरी
1: फोन तो कीजिए। 4-0-2-8-0-8-5 पर।
0: यारी।

0: इस दरवाजे को खटखटाने से उन्नति का द्वार खुलता है। हेलो जी, नमस्ते।
1: हेलो जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, इतनी प्यारी प्यारी आवाज, सुबह सुबह आपका स्वागत है जी। राधा जी है?
1: नहीं, नहीं,
0: नहीं, अभी तो गीत चलाई है मैंने। बोल राधा बोल, अभी कौन है लाइन पर?
1: अमृता।
0: अमृता जी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद आपको पूजा जी। मैं कोशिश कर रही हूँ, किस्मत दरवाजा, किस्मत
0: हाँ,
1: और भगवान के सामने मैं उसकी पूजा में ध्यान लगाकर।
0: चलिए, आपने कहा किस्मत, तो किस्मत को खोलने के लिए कौन सा दरवाजा जो है हमें खटखटाना?
1: भगवान के दरबार में, दरबार पर।
0: नहीं नहीं, ये भी गलत जवाब, गलत जवाब। एक और जवाब देना चाहती हैं? अच्छा, कोशिश तो कीजिए। वो जो मेहनत किया आपने कहा भी, मेहनत, और आपने कहा दरवाजा, भगवान, सब सब उसके साथ ही जुड़ा हुआ है।
1: कोई बात नहीं।
0: कोई बात नहीं, किसी और दिन। चलिए, कोई बात नहीं। शुभ दिन आपको भी, बाय
1: बाय।
0: ध्यान से सुने, किस दरवाजे को खटखटाने से उन्नति का द्वार खुलता है? इसको प्राप्त करने से ही आपको उन्नति मिलती है। वो क्या है? मेहनत तो नहीं।

0: है, उनको सुनते हैं कि वो क्या लेकर आई हैं। हेलो,
1: नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ।
0: और मौसम कैसा है हाईलैंड्स में, बताइए? हाँ, तो ठंड
1: सुहाना है,
0: सुहाना है,
1: हल्का हल्की धूप है
0: धूप है। और ठंड कैसा है वहाँ पर, बताइए? तो
1: ठंड बहुत है
0: इसीलिए गर्मा गर्म नाश्ता तो चलता है ना। चलिए बताइए, आपके पास क्या जवाब?
1: तो मेरा विचार है, करी कोशिश करने के बावजूद।
0: हाँ, करी कोशिश, ये जो कोशिश आप बोल रही है ना, यही तो उन्नति मिलती है उससे, कोशिश है ना। पर किस दरवाजे को खटखटाने से ये उन्नति मिलती है, द्वार खुलता है?
1: हिम्मत नहीं हारना चाहिए।
0: हिम्मत भी नहीं,
1: भरोसा करना चाहिए।
0: नहीं, एक और जवाब?
1: नहीं,
0: कोई बात नहीं, आपको कहेंगे शुभ दिन, बाय।
1: चलिए
0: बाय बाय। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। हेलो
2: हेलो जी,
0: नमस्ते जी, कैसी हैं आप? शुभ नाम?
2: हाँ जी।
0: आपका नाम?
2: मीला।
0: मीला जी, आपका स्वागत है। और नीला जी, आपके पास क्या जवाब?
2: जैसे बोली ना, लफवा न,
0: हाँ, विश्वास, हाँ,
2: यही, हाँ, और इंतजार करने की।
0: नहीं, ये भी गलत जवाब नीला जी। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आपको कहेंगे शुभ दिन।
2: शुभ दिन आपको भी।
0: आपको भी। चलिए एक और श्रोता को हम लेते हैं। हेलो
3: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप?
3: Fine, thank you very much.
0: And what is the answer?
3: Yeah, but I'm not so sure. Is heart?
0: Heart.
3: Heart?
0: नहीं, गलत जवाब। कोई बात नहीं, आपको कहेंगे शुभ दिन, bye
3: bye. Bye bye. Thank.
0: चलिए बताइए तो कि जवाब क्या है, किस दरवाजे को खटखटाने से उन्नति का द्वार खुलता है। लाइन पर एक और श्रोता है, आइए उनको सुनते हैं। हेलो
4: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार बसंती जी, कैसी हैं आप?
4: मैं ठीक हूँ पूजा जी।
0: आप ठीक होना ही चाहिए, और आप भाग ले रही हैं अभी गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में। बताइए बसंती जी, क्या लेकर आई है हमारे लिए
4: जी? मैं कहती हूँ हमारा दिमाग।
0: दिमाग, हाँ, दिमाग से जुड़ा हुआ एक और चीज है, बताइए तो।
4: दिमाग, दिल नहीं।
0: नहीं,
4: भगवान के द्वार
0: नहीं, नहीं जानती। कोई बात नहीं, आपने कोशिश की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए एक लाइन पर रिकॉर्ड श्रोता हैं, उनको सुनते हैं कि उनके पास क्या जवाब है। वैसे सही जवाब किसी ने दिया है हाल में व्हाट्सएप के जरिए, पर फिर भी फोन लेते हैं। हेलो
5: हेलो,
0: नमस्ते। नमस्ते जी, आपका शुभ नाम?
5: तारा है।
0: तारा जी कहाँ से बोल रही हैं?
5: हम रोजिल से बोल रही हैं।
0: रोजिल से तारा जी, आपका स्वागत है। आप तो पास में ही हैं मेरे।
5: हाँ।
0: चलिए बताइए, आपके पास क्या जवाब?
5: दिमाग तो गाते हैं, मालूम नहीं। अपनी मेहनत के जोर से।
0: नहीं, ये भी गलत जवाब। कोई बात नहीं, आपने भाग लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तारा जी, शुभ दिन आपको। एक और श्रोता को हम लेते हैं, फिर मैं ही जवाब दे देती हूँ। हेलो
6: हेलो,
0: नमस्ते जी, फोन लेते हंसते हंसते आप आ रही हैं। आपका स्वागत है धनी जी।
6: जी
0: बताइए।
6: मेरे विचार से हो सकता है, हाँ, माँ बाप की सेवा करने से उन्नति का द्वार खुलता है।
0: माँ बाप की सेवा, हाँ, तो ये कौन देता है, ये क्या है वो जो हम देते हैं?
6: वो आशीर्वाद मिलता है तो
0: नहीं, ये भी गलत जवाब धनी जी। कोई बात नहीं, आपको कहेंगे शुभ दिन। तो चलिए, किस दरवाजे को खटखटाने से उन्नति का

0: द्वार खुलता है और किसी ने सच्चा जो है अच्छा जवाब दे ही दिया है, और वो है राजू जी दुबई से, और उन्होंने कहा है ज्ञान, और आपने सही जवाब दिया है राजू जी। ज्ञान वो शिक्षा ही है, ऐसा दरवाज़ा जिसको खटखटाने से उन्नति मिलती है। आइए एक और जो है प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। उस औषधि का नाम बताइए जो बिस्तर पर पड़े व्यक्ति को जीने को उत्साहित करती है। उस औषधि का नाम बताइए जो बिस्तर पर पड़े हुए व्यक्ति को भी उत्साहित कर देती है, यानी खुश कर देती है। लाइन पर एक श्रोता है, आइए उनको सुनते हैं कि उनके पास क्या जवाब है। हेलो राधा जी, नमस्ते।
1: हेलो पूजा जी, नमस्कार।
0: नमस्कार आपको, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ पूजा जी, आप अच्छी हैं ना?
0: मैं ठीक हूँ। अच्छा बताइए, हाँ, आपके पास क्या जवाब?
1: मैं कोशिश कर रही हूँ, सबसे बड़ी औषधि हंसी है, किसी को हंसाना और खुश रखना।
0: हाँ अभी और तो, क्या जुड़ा हुआ है हंसी से? क्या क्या हम देखते हैं सुनते हैं जो हंसी?
1: संगीत, संगीत
0: क्या है?
1: संगीत।
0: सही जवाब दिया आपने राधा जी, आपको कहेंगे बधाई हो और शुभ दिन आपको।
1: धन्यवाद,
0: बाय बाय।
1: शुभ दिन आपको भी।
0: आपको भी जी, बाय बाय। चुप सी तन्हाई। कौन है वह जो गिरने से नहीं डरता? कौन है वह जो गिरने से नहीं डरता? प्रकृति से जुड़ा हुआ है, बताइए। तो मैंने टिप्स तो दे दी। कौन है वह जो गिरने से नहीं डरता? 4028085 पर।

0: नमस्ते आशा जी, कैसी हैं आप?
1: नमस्ते पूजा जी, कैसी हैं आप?
0: मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह आपकी मैसेज पढ़ के मैं और भी खुश होगी कि आप हमारी जिस प्लेलिस्ट है आपको एंजॉय कर रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत अच्छा लगता है पूजा जी, आपके जो गाने होते हैं वो सुबह को बहुत हसीन बना देती है और दिन बहुत अच्छा निकलता है।
0: धन्यवाद आशा जी। और अभी आप ले रही हैं भाग गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में, और हाल में अभी मैंने पूछा कि कौन है वह जो गिरने से नहीं डरता।
1: मेरे ख्याल से निडर व्यक्ति गिरने से कभी नहीं डरता।
0: निडर व्यक्ति नहीं, मैंने अभी हाल में कहा है कि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है।
1: प्रकृति से चीटी?
0: फिर से?
1: चीटी?
0: नहीं, ये भी गलत जवाब। एक और जवाब देना चाहती है आप?
1: प्रकृति से जुड़ा हुआ है निजर। फिलहाल के लिए तो यही याद आ रहा है।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, आपको कहेंगे शुभ दिन और भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए।
1: धन्यवाद पूजा जी,
0: नमस्ते, शुभ दिन
1: आपको भी।
0: मैं तो कहूंगी तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। बताइए तो 4028085 पर कौन है वो जो जिसने कौन है वो जो गिरने से नहीं डरता। चलिए एक आखिरी श्रोता को हम ले लेते हैं।
2: तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर।
0: हेलो,
3: हेलो,
0: नमस्ते जी।
3: नमस्ते,
0: कैसे हैं आप?
3: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी ठीक। और आपका शुभ नाम?
3: मेरा नाम डेविड है।
0: डेविड जी, आपके पास क्या जवाब है? आपका स्वागत है गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: चलिए बताइए, आपके पास

0: क्या जवाब?
1: मेरा जवाब फल।
0: फल। आप बहुत ही करीब है, बहुत करीब है, बहुत करीब। फल से जुड़ा एक
1: बहुत
0: और चीज
1: करीब।
0: है।
1: नहीं तो सीड जो लग रहे हैं।
0: नहीं, एक और।
1: नहीं, एक और।
0: बहुत
1: पत्ता।
0: करीब है आप, बहुत करीब।
1: ब्रावो।
0: क्या बात है भाई, पत्ता। ब्रावो, आपने सही जवाब दिया है, क्या दिमाग लगाया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी। और
1: धन्यवाद आपको भी। शुभ
0: भाग लेने के लिए धन्यवाद, और आपको कहेंगे शुभ दिन।
1: दिन आपको भी पूजा जी। बाय बाय।
0: बाय बाय। क्या बात है, सुबह सुबह जब भी आप लोगों की आवाज मैं सुनती हूँ, इतनी खुश मैं हो जाती हूँ कि आप इतने प्यार से जुड़ जाते हैं हमारे साथ गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में। जिन लोगों ने भी साथ दिए उन सभी को कहेंगे बहुत

0: दाव तो लगा दिया हमने। इसी के साथ गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
1: गर्मा गर्म नाश्ता,
0: चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी आप हम बढ़ेंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम की ओर, किरण जानकी जी द्वारा हम आप सुनेंगे और आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत चलाएंगे। 9 बजे समाचार होंगे, समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम। तब तक आप सभी को कहेंगे नमस्ते, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सभी को शुभ दिन।
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर,
3: हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने 3 जुलाई के पालन करल जाय होला प्लास्टिक रहित दिवस मनावब जा, और यही पर आज के हमने के प्रोग्राम रही। एगो अभियान चलावल गल रहल हर जुलाई महीना में, जेकर नाम है प्लास्टिक फ्री जुलाई। जुलाई के महीना प्लास्टिक रहित महीना माना जाला, और इस संदर्भ में पूरा जुलाई महीना दुनिया भर में प्लास्टिक के घटावे पर अभियान के तेज करेला। ये अभियान के जरिए करोड़ों जना प्लास्टिक से होत रहल प्रदूषण के घटावे के उपाय ढूंढे पर संगे कदम उठावे लंजा, ताकि हमनी के सड़क, हमनी के महासागर, हमनी के समुंदर और हमनी के इलाका साफ सुथरा रही। और ई विश्व अभियान में भाग ले खातिर चाहे ऐसन प्लास्टिक के बनल कोनो सामान के इस्तेमाल पर रोक लगावे के जोन खाली एक हला सकब इस्तेमाल करे, जैसे प्लास्टिक के थैली, प्लास्टिक के गुबले आगे रहल प्ला क्वे टेके हुए। अब देखते जा कि मॉरिशस में भी एके हटा के कागज के टेके हुए रखा गल बा, एकर पर पाबंदी बा। मॉरिशस ई दिशा में बहुत आगे बढ़ गल बा, बहुत ठोस कदम उठेले बा। कानूनी तौर पर भी देखत है जा कि ई जोन प्लास्टिक रहित दुनिया बा ओकर पर कदम उठावल जाता, कानून लागू करल जाता। फल सब्जी आदि सामान अब खरीद बा ता ई बात के ख्याल रखिया कि ओकर पैकेजिंग प्लास्टिक फिल्म से नहीं होल बा। बिना पैकेजिंग होला सामान चाहे जस्ती से जस्ती खरीदे के, कहे कि हमने के पृथ्वी, हमने के प्लैनेट के स्वास्थ्य खातिर ई बहुत जोखिम बा, और हमने के उचित बनेला कि हमने प्रदूषण से ई पृथ्वी के बचाव अब जा। जब हमने के ई पृथ्वी ही नहीं रही तो कहाँ कुछ बची, जीवन ही नहीं बची। ई पृथ्वी और एकर स्वास्थ्य पर्यावरण हमने के सबसे बड़ा धरोहर है, और जोन कोशिश अभी हम करब जा तो एकर असर लंबा समय तक चली, लेकिन साथ साथ तोहर जोन प्रयास चलता ओकर से आपके जोन पड़ोसी बा उ लोग प्रेरित हो जा, आपके सगे संबंधी, आपके लड़का लोग, आपके माता पिता, सब कोई इस दिशा में कदम उठाए के शुरू करियन जा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम के रिपोर्ट के अनुसार हर बरिस दुनिया भर में

5 trillion प्लास्टिक के जो सक बासक प्लास्टिक ओकर इस्तेमाल करल जाला। दुनिया भर में हर बरिस 300 मिलियन टन प्लास्टिक के कचरा पैदा होवेला, जेकर वजन दुनिया भर के आबादी के बराबर है। ये रिपोर्ट में ये भी आगाह करल गल बा कि साल 2050 तक हमनी के समुंदर, हमनी के लुसियों महासागर में मच्छी से जस्ती प्लास्टिक के कचरा पावल जाए। अब समय चला बा कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली मतलब कि जस्ती हरियाली के ओर बढ़ब जा और पर्यावरण के सुरक्षा करब जा। यही प्रकार से हमने सकब जा अगला पीढ़ी तक एगो स्वस्थ पर्यावरण और साथ में एगो स्वस्थ प्लैनेट पृथ्वी छोड़ के जाए। कार्यक्रम के ध्यान से सुनना, बहुत धन्यवाद। लेंदी के फिर मिलब जा। नमस्ते।

0: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: नमस्कार, घड़ी मिलाते चलिए सुबह के 9 बजे हैं। आए मिलते हैं सुमेरा से, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार आदाब सुमेरा।
2: नमस्कार आदाब वेदिता, सभी को मेरा नमस्कार और आदाब। साल 2026 की पहली तिमाही में मॉरिशस का घाटा बेहतर हुआ है, वो 1.1 बिलियन रुपए तक आ गया, यानी मूल घरेलू उत्पाद GDP का 0.6%। पिछले साल की इसी अवधि के दौरान घाटा 6.2 मिलियन रुपए था और ये घाटा GDP में 3.7% का प्रतिनिधित्व करता था। स्पष्ट रूप से देश में आने वाले पैसों के मुकाबले कम पैसे बाहर गए। ये हालत पर्यटन और सेवाओं की बदौलत बेहतर हुई है, लेकिन मॉरिशस अपने निर्यात से ज्यादा पैदावारों का आयात करता जा रहा है। राष्ट्रीय बजट में पेंशन सुधार के सिलसिले में बहसें जारी हैं। श्रमिक संघ का दबाव है और वो सरकार के साथ बातचीत करने की मांग कर रहा है। कल सिकुम एम्प्लॉयज यूनियन प्रेस से मुखातिब हुआ प्रवक्ता दीपक बेनीदीन ने बजट में ऐलान किए गए कदमों को लेकर अपनी नारजामंदी दोहराई है। उनका कहना है कि सुधार यूनिवर्सल पेंशन का आदर्श है और इस पर सवाल उठ रहा है और इससे भविष्य के रिटायर्ड लोगों को बहुत नुकसान होगा। श्रमिक संघ बदलाव की मांग कर रहा है और सामाजिक साझेदारों के साथ सलाह मशवरा करने की दरख्वास्त भी कर रहा है। दूसरी खबरों में वाकवा में टाकामा का पुल अब फिर से कार्यरत होने लगा है। ये पुल 60 से ज़्यादा साल पुराना है, जिस पर दो बसें एक ही वक्त पर नहीं गुजर पाती थीं। कई महीनों के कार्यों के बाद कल सुबह पुल का फिर से उद्घाटन किया गया। बजट 2026-2027 के जरिए मॉरिशस अपने सार्वजनिक फाइनेंस को बेहतर कर सकेगा। मॉरिशस के लिए BAA3 का नोट बरकरार रखते हुए मूडीज के जायजे का ये नतीजा है। अगरचे इस एजेंसी ने घाटे को कम करने और कर्ज को स्थिर बनाने में सरकार की कोशिशों की सराहना की है, उसका मानना है कि इस राह में कई खतरे पैदा हो सकते हैं, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ के मद्देनजर। विदेश में थाईलैंड के उत्तर पूर्व में एक सड़क हादसा हुआ, 9 बुद्धिस्ट मॉन्क्स की मौत हुई है। एक 11 साल का लड़का गाड़ी चला रहा था, उसने अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर ट्रक लिया। और जापान की प्रधानमंत्री 16वें जापान भारत शिखर वार्ता में हिस्सा लेने के लिए भारत के औपचारिक दौरे पर गई हुई हैं। कल 16 समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री सानाए ताकेची के बीच एक उच्च स्तरीय मुलाकात हुई और रणनीतिक, टेक्नोलॉजिकल और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करते हुए सप्लाई चेन, आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और अनुसंधान पर जोर दिया गया। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब।
3: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज के चर्चा कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। तो श्रोताओं, हर शुक्रवार को हम कोई भी लीगल मैटर्स के साथ यहाँ पर आते हैं उसके बारे में बात करने के लिए। तो आज भी हम जिस विषय के साथ आए हैं उसमें शायद आपको कहीं ना कहीं कोई आपके उन सवालों का जवाब मिल जाएगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हमारे बीच कपिल देव रघुनंदन जी हैं, हमारे वकील, जहाँ हम आज बात करने जा रहे हैं डेथ सर्टिफिकेट और अगर समय रहा तो चेंज ऑफ नेम, दोनों विषय पे बात करेंगे। तो चला मिलके स्वागत करी लाजा। नमस्ते,
1: नमस्ते जी, जी।
0: कार्यक्रम में तो हर स्वागत बा।
1: शुक्रिया।
0: तो आज के हमने जिसे विषय रख रहे जा डेथ सर्टिफिकेट ना, तो जिसे हमने जब जन्म ले ला जा तो हमने के बर्थ सर्टिफिकेट रहला, वैसे ही हमने के डेथ सर्टिफिकेट जब कोई दुनिया से गुजर जाला तो ऊपर ला निकाले के।
1: जरूर।
0: लेकिन जैसे बोली राजा कि हमने के जो बर्थ सर्टिफिकेट है ओकर खातिन भी दूसर कोई चाहला निकाले के, और जब हमने मर चला सा दोनों पर भी हमने के चाहला कोई दूसर कोई जो हमने के सर्टिफिकेट निकाले ला।
1: जरूर, बस तो मर गए सर।
0: हाँ
1: हाँ जी, बड़ी खूब सही है जोली से भाई बोला। हम आज से जैसे भाई बोला था हमने आग जो देशी बल्ब सा डेथ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट में जैसे बोला मज है बा, हमने के पहला चीज जाएला कभी को आदमी या को लड़का कुछ भी हो वो गुजर जला तो पहला के चाहेला एगो गाँव देवो करे के बीरो लेता सिविल जाए के डिस्ट्रिक्ट जो लंद्रवा में वो हुआ मजा गुजर गल बा। ये अभी देखा नहीं सब कब होए एगो आदमी गुजर जला तो का करे के चाहला, तेना छोटा छोटा कौनसे ही अच्छा है हमें कि भाई बहन लोग है जाने के चाहेला, ऐसा एगो काम है अभी एगो आदमी तुहर परिवार हुआ बा तुहर आगे बा वो गुजर गल बा घरवा में, अब आदमी पैनिक में नहीं जाने ला का करी कैसे कुमा जो के कुमा जे नॉर्मल हमने के कानून बुलाओ के चाहेला कुमा जे डिक्लारे करे के कि गुजर गल बा तो कहाँ जाए के चाहेला। आलो कैसे एगो आदमी गुजर जला तो ओके चाहेला लेता सिविल जाए के जो डिस्ट्रिक्ट में कुमा जे ऊ गुजर गल बा। हाँ। सुबोजों वाकवा में है गुजर गल बा या तो कुमा जे तो ऊ जाए के चाहे के वाकवा के लेता सिविल जाए के और ओके संगे चाहे ला ले जाए के एक बान डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट जोन जोन कुमा जा जैसे के जो नेसेसर बा एगो चीज पहला चीज ओके जाए के चाहे पहला डॉक्यूमेंट ओके संगे चाहे ला एगो डॉक्टर के पापिए दुखतिया के पापी दुखतिया फसी नॉर्मल में कभी गोदमी गुजर जला चाहे लगो दुखतिर के बुलाई के ऊ दुखतिर हुआ ओके एग्जामिने करी, जब दुखतिया एग्जामिने करी तो ओके दे एगो कुमा जे एगो है एगो कुंस्ता कैसे उमर गलबा और कौन चीज अभी देता में देखब सर कैसे मर गल बा तो ऊ दे पपी हुआ। अब ओके चाहना संगे दूसरा दुखी मान ले जाए के आग दे निशांस मयाज जे शादी कर ले हुई।
0: अच्छा।
1: हाँ चाहे ना कुमा जब उकमा जैसे बुझो शादी कर ली तो अगर पति या पत्नी हुई ओकर लाख मयाज हुआ ले जाए के चाहेला लेता सिविल हुए जहाँ देख राले करी ओकर मजा गुजर गल बा, और चाहेला ओकर खत ए दाँचीते है जो नदमिया गुजर गल बा ओकर खत ए दाँचीते ओके ले जाए के चाहेला सर देख ल हिया ओके चाहेला पहला ओकर खत ए दाँचीते जो नदमिया गुजर गल बा लाग देने सांस चाहेला ओकर पसीबू में देखे ना गुजर गल बा, और चाहेला जे शादी कर ले हुई तो ओकर लाख मयाज तो देख लो ये कब हुआ जाए तो अब लोग सेवा से कुमा जे एक्सप्लिके करी कैसे होलवा तो देख लाई तब हमने देखब सर अब देताई में हमने देखब सर एगो एक्ट ऑफ डेथ एगो डेथ सर्टिफिकेट जैसे हमने बोले सब फ्रांसी में आग दे से एकर वाले का है एकर कौन चाह जाने ला एक बान आदमी कब जीते हुए ला कब जियेला तो लाग देने सांस निकाली ला सर। अब देखे ला सर हर आदमी जो ने होले बा पैदा होल बा वो एक दिन गुजर जला, कब आल बा कुमा जे है इ दुनिया में कब कुमा जे ने होल बा तो देख लो जलसा तो बहुत करेला। एक बार आदमी के पहले एगो लड़का होल लड़का होल तो एगो छोकड़ा होल बाप रे बाप बहुत खुशी से झाल डोलो वो बचाई और कुमा जे खुशहाली के में कब गुजर जला तो एगो मोमा आवेला कब देखब आदमी कुमा जे सागर होएला अब रो यूई तो अबे करेला तो ये देखला सर जैसे बा सोसाइटी बा दुनिया बा सब कोई तो जानेला भगवान ने बोलेला ना जो आदमी आल बा वो तो गुजरबे करे।

0: पहले एक दिन आज नहीं खाना है तो हमने देख ला से जो एगो आदमी नहीं होल बा पैदा होल बा एक दिन गुजर जाला। हाली जब एगो आदमी गुजर जाला तो पहला जैसे देख ली सर ओके चाहेला एगो डॉक्टर एगो मेडिसिन के ओ एग्जामिने करी ओ आदमिया के नहीं सकी ऐसा दे पापी देखते सर एग्जामिने करी ओके कैसे ओ आदमिया गुजर गल बा ओकर जैसे रीजन जैसे नहीं बोले ला तब ओ कब एग्जामिने करी तो ओकर देश सेवा में लाख देश सेवा में बोली कौन कौन चीज कैसे कैसे मर गल बा ओ आदमिया। अभी दे देखो एगो आदमी तो मर गल हुई कजाक से तो मैं हुआ लिख दे अरे गो आदमी तो सिपोसू मर
1: बा लेकिन
0: हाँ पसी काहे भी बहुत है तोरा जब मर गल भाई को कजाक से तो कोज ऑफ डेथ जिसे हमने बोला हर
1: जितना कोई के देहांत हो जाला जितना कोई मर जाला जरूरी है कि ओकर एगो कोज बताए कि वो कैसे मरल होवन
0: हाँ पसी जाने ला काहे ऊ दुखते हुआ ऊ के बोले के चला ऊ पपीवा में ओकर रीजन कैसे मरल बा जे मरल हो एगो नेचुरल डेथ तो आया एगो बोली के एगो कजाक से मर गल बा तो कुमा जो मिली के दे अब एगो बोली के उही आदमिया जब मर गल बा तो सिपोजो ब्लेसी बा घाव लगल बा कुमा जो ओके सिपोजो या कोई काट देले हो या कुछ कर ले हो यो कर कुमा जा चेहरा कोई
1: ब्लेसी कर दे हो कोई मुआ देले हो कोई
0: मुआ देले हो तो ओके बोली या उपपीवा में ऐतिल ऐतिल से मरल बा और उस सस्पेक्ट करता एगो फाउल प्ले मजे ई एगो मजे मरल मजे है नियर नहीं मजे को कारण से नेचुरल डेथ नहीं उप मजे दूसर खातिन बस कैसे उमरल बा तो हिया दिखला कोज ऑफ डेथ ओकर रीजन आर कैसे जैसे बोली उमरल बा उ पपीवा बहुत बहुत इंपोर्टेंट है बस कि उही से अभी जेब ओके डिक्लारे करे कि उ गुजर गल बा तो पहला चीज हमने देखी ला सर चाहेला एगो डॉक्टर के पापिए और डॉक्टर के पपीवा में सब लिखल बा ओकर रीजन कैसे मरल बा।
1: हाँ एगो सवाल करे खोजा
0: बोला जी हाँ
1: जब एगो लड़का पैदा होएला तो कितना दिन में सकब जाओ के डिक्लारे करे
0: हो कि सुसंत जू में कुमा जे चाहेला ओके कुमा जे डिक्लारे कर दे के
1: तो जब कोई के मृत्यु हो जाला हाँ तो कैसे पापी बोला अभी ओकर जो लाख देने सांस बा निकाले के सांस जू बा
0: हाँ
1: ओकर अंदर अंदर सकबा निकाले
0: हाँ
1: तो जब कोई की मृत्यु हो जाला
0: हाँ
1: तो ओकर जो सेचविका हा
0: हाँ
1: आदेशी
0: जोली चीज बोला जाने ला नहीं नहीं एक बार नदबी नहीं अभी हम तो रहे चीज भी हाँ कौन ते करे ला अब एक आदमी गुजर गल बा तो ओकर लिकोवा जोन बान ओकर नहीं सकबा कुमा जे रखे बहुत दिन बोले लनसन चाहे ला कुमा जे कैसे तोहरा है लेता मिली चाहे ला ओके दिखलारे करे कि मैं कभी तक कुमा जे देखबा एगो आदमी के वक्त नहीं मिलेला ओके कुमा जे दिशुत जाके कुमा जे देखला मैं एगो कुमा जे वैन कातरे के आगे ओके चाहेला कुमा जो ओके दिखलारे करे के अरे एक बार आदमी बोलेला तरी तो मर गल बा शामदी के दिन सिपा दिमाश के दिन लेता सिविल ओ कुमा जे नहीं कुमा जे बाकी ओके दिखलारे करे नहीं बा एगो कुमा जे इमरजेंसी सेक्शन उले छाई जब एगो आदमिया गुजर जाला तो जाके ओ है जाए उल ऑफिसवा प्रेजेंट रहेला कभी तो टेलीफोनिक करे लनसन कि यहाँ तेल होल बा तो बोलेला आई के ओकर बिरोवा में तो सब कुमा जे फॉर्मालिटी करेला आली जब बोलत हुआ कब दिखलारे करल जाला जानेला कभी एगो आदमी के दिखलारे करे के बड़ी दिन लगेला कितना बरिस अभी बोलिला एगो आदमी आवियों में जाता सी बुझो दूसर देश अब अवियों में आग धर गल ओ आदमिया मर गल अब ओकर बॉडी ओकर है शरीर ओके लौगते नहीं बा एगो चीज है तो यहाँ तो नहीं जाना था आदमी वो मर गल बा कि जीता ही बा दूसरा बा लामेर में देख बा आदमी भा कुमा जे है गल बा हुआ जे नाशे करत हो या कोनो सिकलो नो नाल सिपा होल वो देख बा वो भी गुजर गल बा अब ओकर लिकोए जो नोकर है बा शरीर लगते नहीं बा तो कैसे कुमा जे एगो वैन कातरे में गड़ी एक मजे सकबा दिखलारे कर दे कि वो आदमी मर गल बा
1: जब लेकर लेको नहीं मिली तब ले नहीं सकबा
0: अरे यहाँ तो बोली कि एक से एक से ऑप्शन बा बस हमने आपसे गो प्रोग्राम में एक्सप्लिके करे कि कैसे गो आदमी कब कुमा जे है ऐसा कामे हो जाला अली तो सैप जाफे हो ऊ मांग करी एगो है कहीं पाँच बरिस छः बरिस लग जाला नहीं जाना था ऊ बा कहाँ कभी तो एक आदमी अपन घर छोड़ के चल गल बा तू सोचत हो कि वो गुजर गल बा यहाँ तक शायद दूसर देश में हो या कौन चीज तो आदमिया के नहीं सक बन कुमा जे दिखलारे करेगे तो बा एगो प्रोसीजर लाखों के मांग करल जाला कि ई आदमिया के होतना पाँच बरिस हो गल सिपा दस बरिस हो गल आज तक हमने नहीं कुमा जे ओके लौकल बा न घर में आल बा न कोनो कोरेस्पोंडेंट कर ले बा तो ये सोचत है सर उ मर गल हो कुमा जे आर जीते नहीं हो तब लाखों उदे सीधे करेला उस चीज दे सीधे करेला जी कुमा जे है कोवें के कर दिला उस चीज़।

0: के जिजवाक को मज आक्षेप्त गल तो सकेला वो देखलारे करे कि वो अदमिया हुआ गुजर गल बा।
1: अच्छा जी, एक साथ एक गीत सुनी ला जा और अगर बाद में वापस आ ला जा। अब ये कार्यक्रम आज की चर्चा के आगे ले जाए खाते
2: आज की

0: आज की चर्चा।
1: एक बार फिर से सबको ये स्वागत करती थी आज की चर्चा कार्यक्रम में। हम हैं वेदिता और हमारे संगे हवन। हमने के आज के मेहमान हमने के वकील कपिल देव रघुनंदन जी। आज विषय बा हमने के डेथ सर्टिफिकेट इस वजह लाख दी से। और अभी हमने बतिया था नहीं जाना कि कोई के अजय मृत्यु हो गल बात कितना दिन लगेला ओकर लाख दी से निकाले के।
2: हाँ जरूर। और जैसे बोतरी से ना हौ आदमिया औसन से कॉन्स्टांस में कब वो गुजर जला आदमिया तो हमने नहीं जानी ला सक कब गुजर गल बा नहीं उतर नहीं सब वैन कातरे में को मजे ओके एनरजिस्ट्री करके ओकर लाख दी से जब मिले के तो वो आदमी से चाले को केस लाकू में डाले के लाकू में डलब तो ओ केस जिस वक्त से कॉन्स्टांस वक्त कब देख

0: Lari to saki boli uadmia mergal baki nei mergal.
1: Se sa pare laku sab jai ki aaj koi ki mrityu ho galba jise kaise bolla ki bhi plane crash rahi ya to fir koi lamia mein dub galba to ikar khadin pare laku jai ki
0: ha jab u nei janba u jita ba ki mergal ba u avion
1: mein matlab ki matlab ki aaj kar le ko nei bilal ba
0: ha tab ha tab pata nei janba na u mariye galba ya ek ban admi ta dekh ba ki u ek crash mein usakela sans hoyo ke sape ho galba tab u tab jita ba kisi ke dekh o ke lak de se o ke mang ba ki declare kar ba ki u mergal ba nei sab nei misil ma ek khatin kanun bolela तो आदमी सैफ नहीं जन बा सब नहीं करेला ओकर घर वो से छोड़ के चल गल बा ओके लगते नहीं बा त पत्नी ते या तराकास होल
1: ता नहीं जन बा जीते बाकी कौन छ बा हां
0: त ऐसे नहीं सन कामे द है वेन कातरे तो में नहीं सब ओके डिक्लेयर करे ना त ये गो एक्सेप्शन है मैं अभी हमने देख ला सर जब एगो आदमी के मजह कब गुजर गल बा त चाहेला ऑन रजिस्टर करे के ओकर है कि गुजर गलबा को देसे देसे हमने बोले दासा त आर को जैसे गले के गईरो को रख देने सांस शादी कर ले होई त लाख मया सहला ले जाई के और एगो प्रेव लाड्रेस पास की बोली नहीं सब ये कर का ही सब इंपोर्टेंट ओकर प्रेव दे लाड्रेस कहां मरल सी बोसो एगो है रोजिल में मरल बा कोन कोन लागिया में त हुआ लिख देलेबा ओकर लाड्रेस ओकर कोट आइडेंटिटी और ओकर नाम ओकर मां और बाप के नाम तब सगब वो आदमिया के ब्यूरियल ओकर क्रीमेशन करे
1: अच्छा
0: न त नहीं सगब कमा अगर एगो दिन है मर गलबा नहीं सगब के कमा जाके है कैसे बोले जराई के है में शमशान में जाके के गाड़ देब या के कमा जाके कमा जे है जरईब नहीं तबले उ है नहीं मिले वो क्रीमेशन परमिट नहीं सगब वो आदमिया के कमा जे है है मजा करे ओकर क्रीमेशन करे तो ये बड़ी इंपोर्टेंट बा और तब ओकर बाद सब मजा वही फ्यूनेराई जैसे हम निकले सर एक आदमी मर गल पापी मिल गल तब सके को के कंधा में लेके जालन सन आर्क सिपा दिख ब जहाँ जाला जाल दे है कभी हम दिखिला कि मजा कोनो लाख आवाज में रहला तो कोई को सिस्टम करे लन सन या ले जाले आर दूसर जे को खुशियाँ हुई तो नहीं बहुत जाई हुआ जीरे आर धामनी एगो लेता सिविल देखब ऐसन काम है जो एगो आदमी कब गुजर गलबा तो ओके 8h45 9h15 से 16h तक ओके कुमा जो ला सेमेन में खुले ला मिसलमा बा एगो सामदी और दिमास या एगो है 12 बजे हुआ सकब कि एगो आदमी 12 बजे तक वो खुलल रहेला उ सकी एगो आदमी जाके हुआ ओकर कुमा जे जोन आदमिया गुजर गल बा ओके दिखलारे करे और जे कुमा जे हो गल बा शामदी हो या दिमाग हुई बारह के
1: कौन सी बिजली को रही कुछ हो रही था
0: हाँ तो बा एगो सिस्टम ऑन कॉल जिसे हमने बोलिया सर बा एगो सिस्टम कुमा तू है एगो कॉल करबा तो हुआ बोली तोरा कहाँ बा आतान करता ओके आए के और हुआ चाहेला आली अब हमने देखब सर कौन चीज है एगो डेथ सर्टिफिकेट एगो एक्ट से ही तो प्ली इम्पोर्टेंट पर मोह के विषय है बस इतना एक मान आदमी को मजे एगो कमा दे ले एगो लाख दे से या गो लाख देने सांस उठा के खाली ओकर चुवार में डाल ली पहले कि माता जी या पिताजी रहल का करे लमाल में एगो लाख देने सांस डाल देते रहल तो लाख दे से वो भी कोनो आदमी कब गुजर जला बस क्योंकि पिता रवि सेवी कर एक ही दिक्कत ओकर ले पोतांस तो लमाल में डाल ली अब तक घर में डाले सन आलबेमू में लिमन से है रख दे सन यार जी गुजर बिलयो गलो तो लेता सिविल से तो ओके एगो कॉपी मिलबे करी आली हमने देखे ला सा एगो आक दे से एगो लीगल डॉक्यूमेंट एगो डॉक्यूमेंट जो उनके कानून रिकोनेट करेला ये बड़ी इम्पोर्टेंट है और ये जैसे हम बोली ना रजिस्ट्रेशन ऑफिस ओके डिक्लेयर करेला है देवेला ये है पपी हुआ जब वो आदमिया सब डिक्लेयर कर दे लेवा अब कौन सी बा एगो लाख देसे में हाँ कल तो सगब घरे जाए अपन लाख देने सांस में सब चीज सब देख ले ला तो जो आदमिया तो गुजर गल बा तो अपन लाख देसे हुआ तो नहीं सके ना तो अब हमने देखे अब सर ये सब अभी देखो सब क्या ये इम्पोर्टेंट ये प्रोग्राम हुआ हमने रख ली सा आगे देसे हुआ में अब यहाँ देख बा एगो लाख देसे में ओके कब डिक्लेयर करेला वो लेता सिविल हुआ उस सब मत कब देख बा तो पहला देख बा एगो दत्त दत्त हुआ कब वो आदमिया गुजर गल बा अरे कब

0: याथो गलबा उकर प्लास इसे बोलत ली एगो लादरस ले जाई के चाहला बोले कि कहां गुजर गलबा तो ओ लाग दे सेवा में डाली उकर दात उकर लई प्लास कहां मिला ओ की पाशो कोन आदमीया उ का करे से बुजंगो क्लॉक रह त लिख दे हुआ एक क्लॉक बा अब हुआ डाल दे कर ओ की पाशो तो उकर लादरस डाल दे उकर रिलीजन भी डाले ला खेला ये वो चीज नहीं सुतले रहा तो ओकर रिलीजन के डाल दे जहां जन्म ले ले रहा बा अब जहां प्लस मर गल बा
1: हाँ दोनों चीज
0: दोनों ओके है डाले ला और कहां उ जाए एक मजे ब्यूरियल कहां जाए ओकर क्रिमेशन करे से बुझो ये
1: हाँ सब रहला
0: हाँ सब अभी अभी बोले से काहे ओकर अभी इतना इंपोर्टेंट है हैं आदमी सोचेला उ तो मर गल बा उ का वो तो नहीं देखेला उ तो गुजर गल बा कहां के लौकी मैं सेलमा अब यहां देखत हैं क्रिमेशन में बोली ये नहीं अब ओकर देताई ओकर आईडी बोली कौन चीज ओकर नाम रहल ओकर सेक्स कौन चीज रहल मेल या फीमेल ओकर लाज का रहल और कई बजे उ आदमिया गुजरलक कई बजे मर गल कुमार जी वो आदमिया आर ओकर दाँत देख रजिस्ट्रेशन तो वो सब कब हुए ला तो वो ऑफिसियवा सब चीज रिकॉर्ड करेला लिख देवेला पस कब दे वो लाग देने संसवा में सब चीज जो बोली सा वो बोली आर ओकर बोली वो बेस्ट आई में सर्टिफिकेट वा में डाली ओकर नाम ओकर सियनो ओकर बाप के नाम और ओकर माँ के नाम और कौन दिन ई सर्टिफिकेट हुआ दे सर्टिफिकेट हुआ दिले रहल आलो ते देखेला ई एगो बड़ी चीज इम्पोर्टेंट है अब एगो चीज देखेला सर एगो लाग दे से ओकर इम्पोर्टेंट सर कौन चीज है तो एक बार चीज देखेला सर जो चाहेला एगो लाग दे से ई एगो रिकॉर्ड है एगो आदमी के कि ई आदमिया गुजर गल बा अब जे गुजर गल बा तो एगो चीज इम्पोर्टेंट है बताए के हर आदमी कब इलेक्शन आवेला तो जाके एनरजिस्टर करेला उकुमा जैसे इलेक्टोरल रजिस्टर में उकर नाम तो हियाँ कबू आदमिया गुजर गल बा तो इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफिसर वो कैसे थी जानी बस कि कुमा जाए लेता सिविल में वो भेजी आंसर न हुआ ना कि ई आदमिया गुजर गल बा एगो लालिन डाल दे जहाँ ओकर नमुआ रहल तो एगो कि कुमा जे ऐतेल ऐतेल जू मर गल बा न तो सकत एगो फोड हो कब वोते हो तो आदमिया जो मर गल बा कोनो दूसरे आदमी से कि बोले कोई तो नहीं जानत कि मर गल बा जे नहीं रहत ऐसे हाँ तो ओकर ओ जाके वोते करत तो देखल हियाँ ओकर इम्पोर्टेंस कौन चीज है एगो आके दे दिशे के अब ई तो कोरेक बा कितना गवर्नमेंट बेनिफिट्स बा कि एगो आदमी के मिलेला कब गुजर गलबा तो देखिए कैसे
1: पेंशन मिलेला कोई
0: के पेंशन जे मिली था जे कटा गल होई पेंशन या कुमा जे पेंशन नहीं मिली तो ओकर नमुआ तो हुआ कटा जाई ना कि इ तो गुजर गलबा अब सिर्फ नहीं एक आदमिया जब गुजर गोली पति हो या पत्नी हुई तो एगो बेनिफिट मिलेला वैव पेंशन दे वैव तो अब सर्टिफिकेट हुआ तो आकब देश हुआ चलेला और वो पपेवा नहीं रही तो कैसे सकी वो आदमिया एगो है बेनिफिट मांगे है वैव के एगो पेंशन तो कि नहीं मिली मैं फोदे ई चाहे जब जाए के हुआ तो ओके मिली तो ओके सब हुई अले हमने तो जान ला सर एगो आदमी एगो पासपोर्ट निकाले खोजता
1: हाँ
0: तब एगो पासपोर्ट निकाले खोजता तो देखेलन सर ना कि ई आदमी यहाँ मर गल बा अब जो मर गल बा तो रिकॉर्ड हुआ हुआ का करेला जाके सब सांसे करेला ओकर दोने नहीं कि एगो आदमी फुस पासपोर्ट करके एगो फुस नाम में ओकरे नाम में से बोझो कोई मर गल बा उ जाता तो हियाँ कंप्यूटर बा जान ले रिपोर्ट जाइबा तो एगो बड़का कंप्यूटर पर ऑफिस हुआ जो वहाँ पुलिस हुआ बैठेला वो देखेला इन आदमिया के नाम पहला इन आदमिया कुछ कर ले बा कि नहीं कर ले बा पंगर एगो ऑब्जेक्शन तू दी पहुँचे बा तो वो सब सब दे सब चेके करेला तो हियाँ दे लाख दे सेवा नहीं बा तो सब जो आदमिया तो जीता बा तो वो सब चीज देखेल कौन चीज पोता कि वो आदमिया जीता बा कि जीता नहीं बा हमने बोली सन और देखल जाए कि ई आदमिया जो गुजर गल बा तो इम्पोर्टेंट बतावेला कि ई आदमिया कब मर गल बा सिपोजो कर पत्नी अब तो वेव हो गल अरे कालो के मन बा शादी करे के
1: हाँ
0: अरे हाँ कबो के मन बा शादी करे के तब सब कुछ तो बोली अरे फलाना तो कि मराम के नहीं जाने ले वो तो कुमार जब खोजा था छोकरी एगो छोकरा से जा कि शादी करे के तो पति मर गल बा तो कैसे करी आलो जाए कब शादी करे ओकर कुमा जे है देखलाशो दे के हुआ फुमुआ गांपड़ी करे तो के बोले के चाहला कि देख हम कुमा जे है शादी कर

0: एगो वे भाई मेहिका हमर एगो बा एगो पापिए कि हमर बूढ़ा मर गल बा तस्वीर अब हम कुमार जी सकब शादी करी बस कि जब तब एगो आदमी कुमार जी ओकर पति बा पत्नी बा दोनों जीता बा तो नहीं सकी ना एगो दूसरा शादी करे
1: हम तो हर से एगो और सवाल करे
0: हाँ।
1: माफ करिया देखला हाँ। जैसे बोला अभी एक जना के देहांत हो गल मान

0: भवन ओकर ओकर जोन शादी की ओकर जोन लाक मौयाज बा त कहीं ना कहीं जब मतलब मौ के ओके जहाँ लिखा रहला वीडियो
1: हाँ जी
0: तो ओकर कहती दौ छते ओकर कहती दौ ओकर जोन लाक देने सांस बा पर एला बदले के
1: नहीं नहीं ओ लाक देने सांस वार रही उही में लाक देने सांस में कहूं नहीं लिखल बा कि ई एगो वीडियो है समझ लो ना नहीं बा खाली लिखले हो कि शादी के मजा कर ले हो ये लाख देने संस्वा में तो नहीं बा लाख मजे मौयाजुआ में बोलते हो लाख दे मौयाजुआ में हुई तो ऐतिल से शादी कर ले बा वो मर गल बा तो ओकर लै पोता सके के गो चीज बताई कि देख जहाँ सर्कमस्टांस आई कि देख लो हम शादी कर ले रही मैं हमार पति मर गल बा है का यही सकल ओके बताई और उस फाइले करी वो लाख दे है दे सेवा कि बताई के कि सच्चे के मर गल बा
0: हाँ।
1: अब जाई हुआ लेता सिविल अब ओके मन हुई शादी करे के तो ही तो पहला चीज माने पूछे लन सन ऑफिस हुआ हुआ और लिखल बा फूमा में एस की वैब हुआ एस की शादी कर ले हुआ या नहीं शादी कर ले रहा ये सब सब तब ऑफिस हुआ कुमार जी कब शादी में आप सर तब नहीं देखब सर कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए एक आदमी के शादी करे के आले तब हियाँ ओके मिल गल तो चल ओके सांस हो गल शादी करे के एगो दूसरा आदमी के बेनिफिट मिलता उ पपीवा में अब बतावल जाए कि उ शादी नहीं कर लेबा अब सबसे बड़ा चीज एगो लाग दे से ओकर लैपोटेंस से कब एगो एविटेंस जब तोरा एगो कुछ मिली है के कुमा जे जमीन के तो उ जाने के लापोटेंस उ जाने इनहेरिटेंस एविटेंस में एविटेंस में बहुत बहुत इंपोर्टेंट है कि चाहे ला एगो लाग दे से अरे माँ बाप जमीन छोड़ के चल गल बा जमीन छोड़ के चल गल बा तरी तो लड़को भी छोड़ के चल गल हुई हाँ। जब ओके लड़का हमने देखो सर एगो दूसरे पोका मानव सर कभी गोदमी शादी करेला लड़का नहीं बा तो का हो ला ओके यहाँ तो लाख देश के बात करते हैं सर जहाँ यहाँ भी आवा था ओके अब ओके मिले कुछ ना कुछ ओकर माँ बगल से या बाप बगल से बस कि छोड़ के चल गल बा तो अब पहला चीज माँ बपुआ कब यहाँ रखल तो पताज नहीं कर ले बा नहीं दे ले बा अपन लड़का लोग के जीता में तो एक बार कोई बोले ए हम नहीं देब कब मर जाब तब लोग देखे अनसन सर अब का करे अनसन तो यहाँ कब वो लोग गुजर गल बा तो वो लाख दे से वह इम्पोर्टेंट बा पताज करे के बस की कब पताज करे के चाहे ला पहला चीज वकील या कोई जे करत है वो है मेम की नोतेर तब बोली अच्छे हई जमीनवा तोर भाई चाहे बा के तोर पिताजी के पिताजी बा कहाँ या माता जी कहाँ बा तो बोली मर गल बा तो बोली हाँ तो ऐतिल ऐतिल डॉक्यूमेंट अन्य अन्य तोहर लाख दे से जोन पिताजी के कुमार जी गुजर गल बा तो उ लाख दे से वा से जानल जाए के छोड़ के गल बा ओकर जीवी छे एगो पताज यहाँ भाई ए करता ओकर पतजुआ में छोड़ ले बा उ कौन कौन है ओकर लड़का है तब सकी लड़का कुमार जी जाके पताज करे जीता में तो माँ बाप हुई तो मन हुई पताज करे के दे के या कुछ करे के तो वो तो जमीन ओकर मैं जीता में वो करता या एगो तेस्तामा करी या कुछ करी मैं हियाँ देख ला पहला चीज चाहे ला ओके कुमार जी एगो लाग दे से लाग दे सेवा में मांगे पस के तब लिख एगो सचिफिका जैसे आगदे सिक्सेशन जगह कहानी बोली ऐसा करल जाला तो आगे दे सेवा नहीं रही तो नहीं सकबा वो आदमी आगे डिक्लारे करे कि मरल बा या कुछ होल बा तब जय मिल जाए ये एगो डॉक्यूमेंट बड़ी इंपोर्टेंट हुई जब एगो पताज हुएला जब एगो जमीन या वो बंटवारा या हुएला या लड़का लोग अपन नाम में जो माँ बाप छोड़ के गल बा मजे जमीन वो लोग के नाम में करत है वनसन तो यही देख ला बड़ी बड़ी ऐपोता बा एगो से आ दूसरा कभी को लाफी दावित करी
0: हाँ ये भी बोले रहला जब लाफी दावित हुए ला
1: हाँ।
0: तो एक में भी कहीं ना कहीं जितना दुखी मो बा में डेथ सर्टिफिकेट आज कोई मर गल बा था हाँ। भी काम चले ला
1: हई का तो देख ला वो लाफी दावित करी जाए काल तो बोली ना वो लाफी दावितवा में कि देख अरे कभी एगो आदमी है कब गुजर जाला तो एगो लाफी दावित सिक्सेशियों दूगो ते मुँह के ले जाए के चाहे ला बताए के चाहे ला कि आदमिया ओकर बाप हो या माँ हो माँ हो कि दोनों है गुजर गल बा तो हियाँ लाफी दावित चाहे ला हुआ है कि आगे दे सेवा पूज्य करे के तो देख ल बड़ी बड़ी इंपोर्टेंट है कहाँ कौन से कॉन्स्टेंस में देखब हियाँ एगो लागे दे से काम करेला अरे अब सोचत हैं सर कि बहुत बतिया दिली सर है आगे दे सेवा में अब हम चली सर हमने के प्रोग्राम बेसिक कब आई सर चेंज ऑफ नेम
0: हाँ।
1: कैसे एगो नाम बदलेला
0: हाँ।
1: जाने ला एक बार है प्रोग्राम कर ली सर फेनो सियनो कैसे एगो आदमी के मिलेला अब कुमार जे

0: उ कब हो जला, कैसे एगो माँ बाप अपन लैका के खुशी, या आदमीय कब हुआ भी जीते बा उही ओकर मन बा ओकर नाम साझे करे के।
1: हाँ।
0: कभी तो देख बस साझे करे लनसन दोनों, ओकर पैनों साझे कर दे या ओकर माँ बाप के कुमाजा फिलियासों जोन से रगल ओकर बाप के ओकर सरनेम उ साझे करी, क्योंकि नहीं मन बा कोनो रीजन के भी देखब सब। दूसरा देखेला सब बहुत गलत होवेला एगो आदमी कब लिखेला ओकर नाम। कैसे एक बार आदमी हमर नाम लेवत हैं रघुनंदन कब बोलेला तो हमर नाम ए आ है, तो एक बार पश्चिम बाप दादा पर ए आ बा तो हमारे नाम तो को एक बार सुनो के विश्व में एक बार कोई ए ई डालेला।
1: हाँ
0: ए ई तो रघुनंदन हमारे तो नाम नहीं है ना, रघुनंदन नाम तो यहाँ एगो गलत हौ युवा के अब ओके मान करी चेंज करे के, तो यहाँ देखत हैं सब पैनो साझे करता साझे करता ओकर सरनेम के माल लिखल होई तो उ भी देखब कुमाजो के मन बात साझे करे के। एगो एग्जाम्प दिला जाने ला पहले के ऑफिसिये जोन लेता सिविल में रहल तो उ लोग खोचियाँ रहल, तो उ लोग कब खोचियाँ रहल तो उसे जैसे जाने एगो आदमी के बोले एगो कब गलन सन दिखलारे करे एगो लड़का के तो बोलम सन कौन छे ओकर नाम है तो के बोली ना तो क्रियोल में तो उतर बतियाता, तो हमने के भाई बहन लोग मुश्किल हुए कुमा जे बतियाई के हई में क्रियोली में, तो हियाँ जाके बोले के जहाँ एगो आदमी के नाम है बोले हमारे बेटी तोर बेटी के नाम का है तो बोले ओकर नाम है मुंती।
1: हाँ
0: तो हियाँ माफ करिए नहीं बोल राजू में तो मुंती से का कर दिल एगो चीज कुमा जे गलत एगो दूसर नाम डाल दिलक एगो गाड़ी नियर नाम समझ न, तब उ हर आदमी कबो के खल्ला करिए छोकड़िया के मदमुआ के तो कि देखिए आभा से हुए तो बोले ई हमार नाम नहीं रहा हमार नाम तो है मुंती है।
1: हाँ।
0: तो हियाँ कैसे कुमा जे एगो ऐसन नाम डाल दिला कुमा जे ऊ आदमी है, तो हियाँ दिखब अब उ मांग करी एगो चेंज ऑफ नेम करी, तो ऐसे कॉन्स्टेंसवा में मांग करी कि ई नमुआ जो इसे जो लिखल बा उ है गोरेक नहीं बा। हमनी के शिक्षों कहाँची देखो सिविल मोहिशिया उ है बोलेला कौन कौन फॉर्मालिते या बोलेला कि सकल जाए एगो आदमी के ओकर प्रेनो ओकर नो है जैसे पैथोनिमिक मतलब ओकर सरनेम ओकर माँ बाप के जोन से अफिलिय होल बा जोन से जोड़ल बा उ आदमिया के कैसे ओकर नमुआ साझे करे के चाहला, और चाहेला बोले के कौन रीजन साझे करता नहीं सब आदमी के मजा अपन नमुआ साझे करे के चाहेला बताए के। और हमने के कुछ सिविल सैकान अचिक सैकान सैक आ सैकान नेफ बा कैसे एगो आदमी के सही मुजिफे हुए जा एगो लाख दिन सा हर सितुआएँ हर मुर्शियाँ एगो के धुआ बा साझे करे के या मुजिफे करे के कोनो दर कभी मुझे साझे तक कर दे नहीं कुमार जी
1: कहे कि ढेर कोई देखेला जगह से अभी बॉलीवुड में देखेला जा आगतेलो कुछ करेला पर नाम में दुगो ए डाल देवेला।
0: हाँ।
1: दुगो आ डाल देवेला कब कब ऐसे होवेला।
0: हाँ जी
1: तो मान लो हम अपन नाम साझे करत है।
0: हाँ।
1: तो जैसे कि हमार राम कलावन है।
0: हाँ।
1: तो हम बोलब नहीं हम राम खेलावन डालत है।
0: हाँ।
1: तो हम आवा निकाल के एगो आस और एगो ए डाले खोजत है।
0: हाँ जी
1: तो ओकर में वजह पूछन जा कि काहे साझे कर रखत है।
0: तो ही ऐसे बोलबा कि तुअर बाप मजे तुअर नाम लिखल बा सिपा ए सिपा आ अब तू साझे करे खोज तो ऐसा नमुआ में बस की बड़का राम खेलावन राम कलावन बड़का एगो साउंड करेला दिशन बस की तू नहीं खुशी हुआ कब कुमा जे है के हल्ला करल जाए तो या ई नमुआ तू साझे करे खोजत हुआ इस सकेला तुअर एगो पैसोनेल है तुअर एगो मन है एगो इच्छा है कि तू साझे करत हुआ या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस खातिर कि नहीं तू सा हाले सब कोई तो कुमा जे लिखल बा तुहर पिताजी के नाम जैसे राम खिलावन तो अब कुमा जे हियाँ तुहरा दिखलारे कर दिले बा उलेता सिविलवा के क्लकवा डाल दिल बा है राम नहीं सिपा एगो है एगो दूसरे में समझ लो ना तो ये तू तो नहीं खुशी हुआ बोत कैसे हमारे माँ बाप लोग
1: के जब जब जब नाम लिखल जाए एगो लड़का के जब जेब एगो लड़का के नाम कहते नहीं बल्कि जो बर्थ सर्टिफिकेट बा बनाए तो जाहिर सी बात बा वहाँ पर अभी हम जानत हैं कागज में बैलन से लिख के दे के जब कि एगे नहीं हुई।
0: हाँ,
1: लेकिन आगे के जमाने में ढेर प्रॉब्लम हुआ था।
0: नहीं बोली ना कब है तरेलवा एगो है खोचियाँ रखल उ लोग मजे सिविल क्लॉक रलन सन तो ओके कब एगो गैलक है एगो माताजी एगो है पिताजी गल ओके मजे

0: declare kare ki okar laikwa ki jaise upono se karlak okar laikwa ki namua bas kita nahi jantal di kal kaise likhe u ke chahela to udhal delak apan ji se u likhlak okar civil clerk office wa okar manier me te hiya anman jan se ba hua lag dene sanswa me okar ma bap ke namua ragal ta anman nahi ba hiya या एगो ऐसा एगो दूसर नया नाम में कब फोनों से करब तो देखब कुमार जय नहीं बा अब तू सब कोई जाने ला ऐसे हो तो अब चाहे ला सौसे करे के नमुआ बस कि पे सुन ले लो तू तो मन बा या जैसे नमुआ लिखोते दाँची ते निकल ला तोर खोते दाँची में ते पिताजी के जैसे पहले कुमार जय नमुआ लिख रहा तोर लाग देने सांस में अनुमान हुआ नहीं बा है यार कभी भी बोले नहीं तो यहाँ से बुझाता कि एगो दूसरा आदमी है
1: ऐसा होल बाकी किसे कॉलेज दाँची में एरिया कर ले नहीं कब गलती से कब कुछ हो जाला ना माना कि माना कैसे एगो नाम लिखत हो लक्ष्मण तो लक्ष्मण में कहीं हो गल बाकी वजह कैसे अगर में कैसे बोला कि एल यू से एल आ हो गल बा या तो फिर जब यू वाली खतल अंसद एगो आ करीते हो गल बा तो लक्ष्मण हो गल बा तो ई सब हम कहते निकाल दिला बाद में दिखला एक में तो दूसर कुछ लिखल बा हाँ। से प्रॉब्लम हो ला कबो
0: बहुत प्रॉब्लम हो ला बस एक बार आदमी बोला था देखना तो जैसे तू बोला तो तोहर नाम लिखल बा और जैसे बा हुआ पपीवा में हम तो नहीं लोग कहीं अब किसी हम जानब तू तू ही आदमी हुआ सब सब चीज खोजे लंसन कभी कुमार को प्रॉब्लम हो
1: भले भले माता पिता जो बा भले माता पिता जो बा लैकवा के बर्थ सर्टिफिकेट में माँ के नाम बा बाप के नाम बा लैकवा के निकल बा लेकिन जब कहते बनल बा तो वहाँ पर यू के बजाय आ डाल दे हम
0: रेक्टिफिकेशन करे के चाहेला कि ओके आदमी के बो के मन हो एक नाम हो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस में जब ओके अब सर्वी करे खोज था तो एगो डिफरेंस बताए
1: एक प्रॉब्लम हो एक अल्फाबेट
0: से बहुत ही भाई नमुआ कभी लिमन से नहीं लिखल बा तो वो प्रॉब्लम देबे करेला सब कोई के कभी देख लो एक बान है है कि जीविचे के एक बान है बा है लड़का एगो माँ बाप के पांच गो लड़का बा अरे तीन गोली के निमुआ कोरेक बा या चार गो के निमुआ नमुआ अनमनोकर माँ बापुआ नियर बा मैं वो करे या एगो भैया के तनि डिफरेंस होला तो कभी बोले लंसन नहीं सौजे कर ले हुई तो एगो नाम ऑल्सो नोन एज एगो लाफी दाफी कब करेला या गो के बोले ला हाँ और नाम दूसरा भी जानल जाना यही आदमी या तो जहाँ अब लिमन हुआ जैसे बोला था ओकर बाप मावा के नमो एक जाग डाली ऑल्सो नोन एज समझ ला ना हाँ। ये हर लाफिदाविद में देखब कि हम तो पाची गए से कितना बैसे दिखते जैसा कैसे हो रहा तो वो आदमिया वही आदमिया है जो उनके नमुआ हियाँ गलत से होल बा तो देखे ला ये एगो लाफिदाविद का मुझे करके है बताई के चाहेला कि वो बा तो हियाँ ये सब एगो प्रॉब्लम देवे ला एगो आदमी
1: हाँ बात करे थी जब चेंज ऑफ नेम के हम हाँ। गए जितना भी दर्शक लोग हमने देखा तो बन जा तो जब हमने चेंज ऑफ नेम बोला थी तभी तो हमने खाली बोला थी जा कि अल्फाबेट कब इधर उधर हो जा
0: हाँ जी
1: लेकिन मान रहे एगो छोकरी शादी करलक तब शादी करलक तो अपन पति के नाम लेलक तो जब जिवोसे हो गल तब ओके तो परेला पति के नाम छोड़े के
0: नहीं नेसेसर दिखले रिसर्म के प्रोग्राम में ना अब पति के छोड़ देले बा मिसिल मा उ जो नमुआ ले ले रहल पतिया के ओकरे रखे खो जाता उ नमुआ नहीं सर
1: पसी कर दुआ
0: है हाँ कर दुआ है कुछ सिविल मुगुशिया सब लिखल कानून ओके दुआ देवेला सांजे नहीं करे के या ओके मन हुई भी सांजे करे के या ओकर पति के नमुआ रखे के पस के बोले खो जाता अरे एगो आदमी बोली पे काहे तो रख दो जीवोस हो गए बोले नहीं हम जोड़ल नहीं अमर है ओकर नमुआ से बस ये सब आदमी हमके जाने ला एतिल नेम हमर क्वालिफिकेशन जैसे नहीं बोल सा दुखते रूप से के देख ले रही सर
1: तो से जीविका तो जितना कुछ बस सब तो हो ही नाम
0: हाँ ओकर वही नमुआ से है है चली एगो सचिविका तक कैसे अभी हमके मिल गल बा कब हम कभी सेपे कर तली हम हमें के लिए पोक नियर नहीं रह अभी सेपे रल तो उमे हमर नमुआ जैसे बा सुपेवा में अनमन भर अरे को बोली के काल नमुआ साँझे कर तो सुपेवा के मजे कब कितना बरिसन में है कब मिल रहा तो अनमन अभी तो नहीं है बराबर नहीं सब साँझे करे ना तो सिलमा वो आदमी बतावेला को नमुआ कब साँझे करेला तो ओके मिला अरे एगो देखे ना से चेंज ऑफ नेम दू गो आदमी पहला एगो आदमी जब एगो माजे ओके जिस वित से ऊपर हो गल बा सकी मांग करे ओकर पैनो ओकर नो फामी सौंजे करे के
1: अच्छा।
0: अपने अपने बस वो माजे
1: हो अच्छा
0: हाँ एगो आदमी माजे
1: तारे देखा काल सकब अपन नाम सौंजे कर दे
0: हाँ सकबक म काल है काम खिलावन तो मन बस सौंजे करे के या वेदिता भी मन हुई तो
1: दोनों मन करे
0: दोनों सकब सौंजे कर दे जैसे बताओ मजे भाई माधुरी दीक्षित तो नहीं दिलवा ना मेरे को बोली

0: que il dal de bosse bosse sans écarté il veut non moi mais
1: c'est comme d'aller
0: hein il veut un cas il veut l'exemple de watain mais il y a des clair ou admia que nam d'une sont qui sont ab mazer mais il civil status officiel John Juan ba ou ce qui sans écarté sif ego mazer que non mais ego mineur que puis ego mineur que cap sans écarté ta seulement Mazé apne mane saki sanze kare. Koi ke nahi chana consentement. Mego mineya ou apan ma bap ke maje hai nichi jese mune bolsa rehela. Okar lagad ha. Ma bap wa ke okar laika. Laika kabe go mineya ha apne se decision nahi saki lai. Ta kal sanze kare ki se saki. Ego mineya apne mane. Mineya matlab ego 18 ans se maje kam rehela. Ta oke chahe la consentement. Okar ma bap ke ya je ma bap nahi hoy okar chute ke ego program bhi aap se dekh sab kon chi chute koi ko maje jab ego laika ba okar ko maje na ma bap na hoy bap ba okar family log ego swasai kare le godmi odmi khada hoila okar ko maje hai okar dikbhal kare ke tahiya dekhla ego aadmi jun maje ba u bhi saki sanje kare aur kab ego mine hoy ta okar ma bap saki sanje kare अभी मॉरिशस में देख बा बहुत सा डिमांड बा इस संजमा दे है नाम के बहुत खाली लगाजित तू पढ़िया देखिए रोज प्रेस के अभी हम नहीं बोल सक कौन लगाजित में देख बा एगो नाम संजे हुआ था आदमी अपन सा है करता ए आर संजे करता जैसे देख बक मज है जूनाल में पिबलिए करल जला बिचारे को देख सा लेताप कैसे वेला देख बदमी को कर नाम माल लिखल बा एरिया बा देख बा दूसम ओकर नाम जोन रहल पहले से बुझो ओकर रघुनंदन ओकर नाम रहल अब ओके कुमा जे दूसर कोई आदुप्ति कर देले बा ओके नहीं समय होय बस
1: ई भी बा की जब लेका के आदुप्ति कर बता
0: हां जब ओके आदुप्ति कर बता उ ले नम जोन आदमीया ओके आदुप्ति कर लेवा से बुझो तू काले गो छोकड़ी के आदुप्ति कर ल ओकर नाम त कब डिक्लेयर हेल तब ओकर मां बाप के रहल ना तब कब आदुप्शन कब होल त सकी कुमा जे तू ना आदुप्ति कर बा ओके तोहर नाम में दल बना ओके सब अपिलता देखब सब कोनो सगी ओके मन हो दोनों के रखे के नमो में
1: आज मान ला एक एगो एगो जन एगो एगो एगो पति पत्नी हवन जालो के लड़का रे बा लोग एगो लड़का के अदुप्ति कर लन जा परिवार में को लड़का के अदुप्ति कर लन जा त ऊ लड़का के अपन घरे रख ले वन जा नाम नहीं समझे कर ले वन जा लड़का भी अपन माँ बाप के नाम पर मा तो खाली लड़का के पोसत वन जा लेकिन लड़का जन्म से लेके यानी कि बड़ा ले
0: मऊ बपा के नाम में
1: हाँ हाउ मावा के बात लेकिन रहा था ई आदुप्ति जिन कर लेवा ओलो के संगे ना जेला गोद ले लेवा ओलो के संगे हुआ अब लेकुआ 18 साल हो गल 20 साल हो गल अब बोलता नहीं था हम तो जब से आँख खोले हम तो इलुक की जानी ला उलुक की तो नहीं जानी ला तो अब हम चाहते हैं कि हम अपन बाप के नाम लेवा तो कैसे कुंज चहना करेगा
0: हाँ जे कुमा जे आई 18 ans से जैसे बोले से ना कम बा तो उते गोमिने है अब जोनों के आदमिया आदोप्ते कर ले बा जोन 18 ans से कम रहल लैकवा मौवा से बुझो या बपवा आदोप्ते कर ले बा ओके ओकर संगे बा तो ओ के रिस्पांसिबिलिटी है जाके ओ लैकवा के नमवा सांजे करे के ओकर नमवा में डाले के बस ये काल जे गुजर जाए तो के मिली ओकर धन दौलत एविताज ओ बगल से बान ओकर नमुआ उसने रही तो हो बिका दोनों बगल से मिले ला है मिसल मबी वो नहीं देखते सर तो नमुआ बहाउ जेकर जन्मुआ दे लेबा तो ओकरे नमुआ में मिली हिया मावा बाप का जो नौकर संगे रहता जो नोके आदोपते करेबा कुछ तो नहीं मिली मैं चाहे ला जो नदमिया आदोपते करेला पहला चीज एगो लेपुक में जाके ओकर नाम सौजे करे के सौजे करके ओकर नाम में डाले
1: के चाँद सौजे कर दे के
0: नहीं कोनो बखत कोनो बखत मिसलमा का होई ओके जे आगे जात अली को बोली कि अतान करता दे मिनट अब अपने गुजर गल तो यहाँ तो नमुआ रगल हवे में ना ओकर मजा नहीं रहल यहाँ चाह तो ओके पहला स्टेप करे के जब आदोपते करता तो जाके एगो मौसी होई नानी होई या कोई होई ओकर नाम में बुनेर डाल दे के ताकि ओकर एविताज में जो आदमिया आदोपते कर ले बा ओके मिली आले एगो चीज है तब तक हमने देख ली सर कि एगो आदमी सकी नाम साझे करे बहनों हो या सियनो हो ओके मांगता मिसलमा एगो जीज देखेला जब एगो नाम आई अभिशीव जैसे अब देख ली सर एगो मैडम के नाम मुंती तो मजा गारी नियम के ओकर जोड़ तो एगो नो अभिशीव या एगो कन्फ्यूजन एडमिनिस्ट्रेट

0: achieve ki purpose me ego number uzis wa sacrifice kare
1: acha
0: ha nahi de unamo kuma je hai e kare ki nahi sans kare possible inamo ego confusion karata ya kuma je ego no abisiva ego gari nam ki ego admi ki ha te ego gari nam ki admi ki chnai hami sakap sa sevi kare ale sahi ta dekh leli sa ab dekhab sa kon letap ho कौन स्टेप हो एगो आदमी कौन स्टेप मतलब कौन प्रोसीजर हो जब एगो सिटुआइए मूसिया एगो मूसिया ओके मन बा साझे करे के इसके ओके चला आवो या वो का देखे के नहीं जब एगो आदमी ओकर नाम साझे करे खोजता तो ओके जाए के चाहला मिनिस्ट्री ऑफ द जस्टिस में जिसे हमने बोली सा अतोनी जनरल के ब्यूरो में हुआ जाके एगो डिमांड करे के अभी तो जेब शहर में सेगो ले तजुआ में हुआ बा एगो है है चेंज ऑफ नेम जहाँ देखबा लिखल बा और हुआ जाके एगो एगो है भी बा एगो आवोका उ बीमा उ डील करेला इस सब के जाके हुआ एगो कुमा जी मांग करल जाला अब दूसरा चीज है हुआ कब गईला चेंज ऑफ नेम हुआ कब है मांग करे सेगोन फ्लोवा में पोलवी में है लौकेला हुआ तोरा दे एगो फॉर्मूले ऑफिशियल एगो कुमा जे हई फॉर्मूले ह उमे तू भरब सब चीज भरे के चला कैसे तोर नाम बा भी कौन ची ह के ह वो सब डिटाई कहते दे चीते उ सब बार एड्रेस उस बा उ फॉर्मवा में तो भरब जब भर गल बा कर फॉर्मालिटी हो गल बा त तोरा चाहेला उ भोजय करे के संगे तोहर आग दिन सांस तो जो रिसेंट बा तीन महीना के है कुमार जे चाहला कोई वैलिड रहे के ऊ में तोहर कते दाँ चीते और एगो लेट दे के चाहला ऊ में रीजन काहे तू मांग करत हो इस साझे करे के इन नमो और दूसरा ऐपे पे तब हम तो जानत ली तोरा चाहला ओ मोए मिल रूपी एगो कुमार जे प्रोसेस करे के दे के हुआ तो ऊ लोग है प्रोसेस करल जला एप्लीकेशन हुआ मतलब तोरा कुछ नहीं बता रखा करे के फॉर्म हुए ऑफिशियल फॉर्म बा हुआ तोरा जाके ले के बस वहाँ सब भर के मांग करब सब अहियाँ दुखी में वहाँ जो चाहे लेतुआ डाल के मांग करत हो कि कम को इन साझे करे के या पहनो हो या सियनेम हो तो वो ऑफिशियल हुआ जो हुआ बा कैसे जेब अभी देखब हुआ एगो ला पुलिस खड़ा बा दुआर हुआ हियाँ पूछी तुआरा से कहाँ जात हो और कहाँ जात हो या का करे के चाहेला तो हियाँ देखब तू बोलबा एतिल तो बोली तुहरा हुआ हुआ एगो फॉर्म बा ले जाए के कब दे सबमिट करब तुहर फॉर्म हुआ जो लिखल बा तो तुहरा चाहे गो मिल रूपी के कुमा जे दे के ओकर कुमा जे ओकर है दिपेन के या है के तब वो जे सैटिस्फे होल ऑफिशियल जो आंसर्स बा वो देखब वो का करी आर रीजन सब बा तब वो एनरजिस्ट्रेमेंट वो कुमा जे करी ला डिमांड है आदमिया के एनरजिस्ट्रेमेंट के डिमांड करता भी चेंज ऑफ नेम नहीं हो गल बा अब का करी जब सब लिख दे बा ओके बोली बो तोरा जानब जा एगो ले तोरा हमनी भेजब स तो हुआ से अटोर्नी जनरल ऑफिस से कुमार जे देखब मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस भेजेला एगो लेट हाँ. एगो लेट भेजेला उ आदमिया के कि हमने देखत है सब वेरीफाई कर ले है सब अब तोरा चाहेला एगो दूसरा स्टेप करे के तोरा चाहेला वही चीजवा पिबलिए करे के उ देमनवा है एगो है में लगाजित में जैसे हमने यही से देखब हर लगाजित का पढ़ब तो देखब चेंज ऑफ नेम बा हाँ. तो पिबलिए करे के उ हुआ डाले लंसन अब हुआ पिबलिए करी बोली कि तीन हला उ कुमा जे उ आदमिया ओके चाहेला कुमा जे पिबलिए करे के तीन है गवर्नमेंट गैजेट में और जोन जूनाल उ स्वाजिगे कर ले बा हाँ उकमा जो है गवर्नमेंट जो उकमा जो कोई फॉर्मालिटी बा उ स्वाजिगे कर बा सभी ये तीन हला तू क्या करब गवर्नमेंट गैजेट में ई पिबलिए हो जाला एगो जूनाल गवर्नमेंट के ई गवर्नमेंट गैजेट बोले ला उ में भी पिबलिए हो जाला और दू गो ला गैजेट जूनाल लोकल में एगो मिनिस्टर दे जस्टिस हुआ उ बोले ला कौन है में जूनाल में सिपोज बोली एक जूनाल में तो तोरा चाहेला वो पिबलिए करेगी और दूसरा तू सकब अपनो कोनो खुशी हुई है में
1: तो बस हम लोग जो कार्यक्रम बा आज एक साथ समाप्त हुआ था। वैसे तो हम लोग बात करे कि ढेर कुछ बा लेकिन 10 बजे था और 10 बजे के समाचार के बाद बाकी कार्यक्रम आप लोग सुन बस यहाँ हम लोग रेडियो पर। तो बस श्रोताओं, हमारा जो आज का कार्यक्रम है

यहाँ पे समाप्त होता है। हम हमारे वकील कपिल देव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कार्यक्रम को बहुत प्यार से सुना। अगले शुक्रवार को एक ऐसे कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्ते।

0: सभी को टाइम चेक फर्स्ट जुलाई 10 AM।
1: नमस्कार आदाब। बजट 2026-2027 के जरिए मुर्शिद अपने सार्वजनिक फाइनेंस को बेहतर कर सकेगा। मुर्शिद के लिए BAA फ्री का नोट बरकरार रखते हुए मूडीज के जायजे का ये नतीजा है। अगरचे इस एजेंसी ने घाटे को कम करने और कर्ज को स्थिर बनाने में सरकार की कोशिशों की सराहना की है, उसका मानना है कि इस राह में कई खतरे पैदा हो सकते हैं, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ के मद्देनजर। राष्ट्रीय बजट में पेंशन सुधार के सिलसिले में बहसें जारी हैं। श्रमिक संघ का दबाव है और वे सरकार के साथ बातचीत करने की मांग कर रहा है। कल सिकुम एम्प्लॉयज यूनियन प्रेस से मुखातिब हुआ प्रवक्ता दीपक बेनीडी ने बजट में ऐलान किए गए कदमों को लेकर अपनी नारजामंदी दोहराई। उनका कहना है कि सुधार यूनिवर्सल पेंशन के आदर्श पर सवाल करता है और इससे भविष्य के रिटायर्ड लोगों को नुकसान होगा। श्रमिक संघ बदलाव की मांग कर रहा है और सामाजिक साझेदारों के साथ सलाह मशवरा करने की दरखास्त कर रहा है। अनुराग जैस फिर से RTO कंपनी के CEO के पद पर फायल्स हुए हैं। बुध को IBL ग्रुप के CEO की औपचारिक नियुक्ति हुई। अनुराग जैस को इस क्षेत्र में तजुर्बा है। अप्रैल 2018 से 2022 तक वो ये जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ग्रुप की एक औपचारिक विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी है कि जेरोम दे शातुनफ ने अवकाश लिया है। विदेश में जापान की प्रधानमंत्री 16वें जापान भारत शिखर वार्ता में हिस्सा लेने के लिए भारत के औपचारिक दौरे पर हैं। कल 16 समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री सानाए ताकेची के बीच एक उच्च स्तरीय मुलाकात हुई। रणनीतिक, टेक्नोलॉजिकल और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करते हुए सप्लाई चेन, नवीनीकरण और अनुसंधान पर जोर दिया गया। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। शिवाला रोड बेलगीव में 63 साल के 63 years old श्री गिरिजानंद सिनंदन जो सुनील के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। आज ढाई बजे इनकी पत्नी बबीता सिनंदन के घर शिवाला रोड बेलगीव के वलनगर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बॉम्बू बेलगीव की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। क्षेत्र रोड ग्रांड रिट्रीट में 79 years old श्रीमती पुष्पावती भोला जो पुष्पावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं। आज दिन के 12 बजे इनके पति अमीर चंद्र भोला के घर क्षेत्र रोड ग्रांड रिट्रीट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावंचिया की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डी नून। बोस्टम रोड लाफलोहा में 75 साल के 75 years old श्री रामदत्त राघडू जो कुमार के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। आज दो बजे इनके बेटे योविन राघडू के घर बोस्टम रोड लाफलोहा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गौबा की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
3: ये है रेडियो मॉरिशस।

सभी सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम। श्रोताओं, इस समय हम प्रसारित करने जा रही है भक्ति धारा कार्यक्रम। स्टूडियो की घड़ी में 10:04 हुए हैं। इस समय से लेकर रेडिंग के 11 बजे तक एक घंटे के सफ़र में हम आपका साथ देने वाले हैं। तो हमेशा की तरह हम कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर। और आपको पता है कि भगवान गणेश जी जो है प्रथम पूजनीय है। जो भी कार्य हम करते हैं सबसे पहले उन्हीं के नाम हम लेते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

0: तो चलिए श्रोताओं, 10:11 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में, हम बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर। आइए सुनते हैं शास्त्र नवनीतम। ये कार्यक्रम डॉक्टर आचार्य सुनील जी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे।
1: वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीतम।

ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी श्रोताओं को सादर नमन। आज का विषय है धर्म का संचय एवं दुष्टाचरण का त्याग। तीसरे समुलास में महर्षि दयानंद ने धर्म का संचय और धर्म के चतुर्विध लक्षणों के बारे में चर्चा की है, अर्थात धर्म के चार प्रमुख लक्षण हैं। सत्यार प्रकाश के तृतीय समुलास में बताया गया, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। धर्म का पहला लक्षण है वेद। वेद ईश्वर का ज्ञान है और वेद परम प्रमाण है। वेद ईश्वर की अमर वाणी है। धर्म का दूसरा लक्षण बताया गया है स्मृति। स्मृति का अर्थ है ऋषियों द्वारा स्मरण किए हुए वेदानुकूल ज्ञान व ऋषियों द्वारा रचित मनुस्मृति आदि ग्रंथ। धर्म का तीसरा लक्षण है सदाचार, अर्थात अच्छा आचरण। अत्यंत श्रेष्ठ पक्षपात रहित धार्मिक महात्मा एवं उत्तम विद्वान पुरुषों व महापुरुषों का जो व्यवहार है वे सब सदाचार कहलाते हैं। वेदादि शास्त्र एवं महान पुरुषों के पद चिन्हों पर चलना भी सदाचार कहलाता है, उनके विपरीत चलना दुराचार कहलाता है। सदाचार पुण्य एवं श्रेष्ठ आचरण का परिचायक है और दुराचार पाप एवं दुष्टाचरण का पर्याय है। महर्षि दयानंद ने सदाचार को सुख का कारण बताया है। सत्यार प्रकाश के तृतीय समुलास में कहा गया है कि आचार परमो धर्मः श्रुतयुक्तः स्मार्त एव च।

वेद एवं शास्त्र के अनुकूल श्रेष्ठ आचरण ही परम धर्म कहलाता है। धर्म का चौथा लक्षण है स्वस्य च प्रियमात्मनः। स्वस्य प्रियमात्मनः का अर्थ है जो अंतरात्मा को प्रिय लगे, जो अपनी आत्मा की प्रसन्नता के अनुसार हो, जो अपनी आत्मा के अनुकूल हो। आत्मा व अंतरात्मा की वह आवाज़ जिसमें भी किसी झूठ या अन्याय के लिए कोई स्थान न हो, अंतरात्मा की आवाज़ धर्म का पर्याय माना गया है। पक्षपात रहित न्याय, सत्य को स्वीकारना और असत्य को छोड़ना ही धर्म है। इसके विपरीत पक्षपात करना, अन्याय करना और असत्य का आचरण करना, असत्य को अपनाना अधर्म है। धर्म जिज्ञा समानानां प्रमाणं परमं श्रुति। महर्षि दयानंद ने वेद को सर्वोपरि माना है। उनके विचार स्पष्ट हैं कि यदि किसी स्मृति, पुराण या अन्य ग्रंथों की बात वेदों से टकराती हैं, वेदों के विरोध में आती हैं, तो वेदों की बात को ही परम सत्य माना जाएगा। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुलास में धर्म संचय और दुष्टाचरण अर्थात दुराचार से दूर रहने का उल्लेख इस प्रकार किया है। धर्म शनै संचिनुयाद भल्मीकमिव पुत्तिकाः परलोक सहायार्थं सर्वभूतानि अपीडयन्। स्त्री पुरुष को चाहिए कि वे किसी भी जीव को पीड़ा दिए बिना धीरे धीरे धर्म का संचय करें। धर्म का संचय कैसे करें? तो उत्तर मिलता है कि दीमक के समान। जैसे दीमक मिट्टी के कणों से धीरे धीरे अपना घर बना लेती हैं, इसी प्रकार अगले जन्म के लिए धर्म इकट्ठा करना चाहिए। चौथे समुलास में ही महर्षि दयानंद ने धर्म को जीव का सच्चा साथी बताते हुए पाप कर्म से दूर रहने का उपदेश दिया। महर्षि जी ने महाभारत के उद्योग पर्व से एक श्लोक प्रस्तुत किया है, जिसमें बताया गया है कि पाप कर्म का मुख्य कर्ता ही दोष व पाप का भागी बनता है। एकाह पापानि कुरुते फलम भुंगते महाजनः भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषे न लिप्यते। एक व्यक्ति पाप करता है परंतु उसका फल पूरा परिवार या समूह भोगता है। भोगने वाले तो बाद में मुक्त हो जाते हैं, परंतु पाप करने वाला मुख्य कर्ता ही दोष का प्रमुख भागी बनता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति पाप करता है वही पाप का मुख्य भोगता होता है, परंतु जो पाप करने वाले के साथ होता है तो उस पाप का कठोर प्रभाव साथ रहने वाले को भी प्रभावित करता है, उन्हें भयभीत और दुखी करता है। चौथे समुलास में ही आगे महर्षि दयानंद बताते हैं, जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है। वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भी अकेला ही भोगता है। मृत्यु के पश्चात जीव के साथ क्या जाता है? मृत शरीर को मिट्टी के ढेले के समान माना गया है। मृत्यु उपरांत जीव का परम सहायक कौन है? इस पर महर्षि जी वर्णन करते हैं, मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठ लोष्ठ सममुक्षितौ विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तम अनुगच्छति नामुत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठतः न पुत्रदारम न ज्याति धर्मस्तिष्ठति केवलः। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके संग संबंधी उसके शरीर को मिट्टी के ढेले की तरह मृतशैया अर्थात चिता पर छोड़कर अंतिम संस्कार के बाद लौट जाते हैं। कोई भी उसके साथ नहीं जाता, केवल उसका संचित कर्म व किया हुआ धर्म ही उसका एकमात्र साथी होता है। इसलिए कहा गया है, जो जैसा बोता है वह वैसा ही फसल का

0: सकता है, परलोक में केवल धर्म ही मित्र और रक्षक के समान होता है। संसार में एक धर्म ही मित्र है जो मृत्यु के पश्चात भी साथ जाता है। महर्षि दयानंद ने स्पष्ट कहा है कि कभी अधर्म का आचरण न करें। किया हुआ अधर्म कभी निष्फल नहीं होता। अधर्म का परिणाम एक दिन भोगना ही पड़ता है। जैसे गाय की सेवा का फल दूध आदि सात्विक आहार तत्काल प्राप्त नहीं होता, वैसे ही किए हुए पाप व अधर्म का फल भी तुरंत प्राप्त नहीं होता, किंतु धीरे धीरे अधर्मी के सुखों को रोकता हुआ सुख की जड़ों को काट देता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महर्षि दयानंद ने मनुस्मृति का प्रमाण प्रस्तुत किया है। अधर्मेण एधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नान् जयति समूलस्तु विनश्यति। छल कपट और बेईमानी करने वाला अधर्मी मनुष्य शुरुआत में उन्नति करता हुआ दिखाई देता है। वह सुख सुविधा और ऐश्वर्य भी प्राप्त कर लेता है और अपने शत्रुओं पर भी विजय पा लेता है। अंत में वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान समूल नष्ट हो जाता है। धर्म के कार्यों में प्रवृत्त होने से घर, समाज और राष्ट्र में शांति बनी रहती है और अधर्म के कार्यों में प्रवृत्त होने से घर, समाज और राष्ट्र की शांति नष्ट हो जाती है, शांति भंग हो जाती है। अतः चौथे समुलास में स्पष्ट किया गया है कि अधर्मी मनुष्य जड़ समेत पूरी तरह उसी प्रकार उखड़ जाता है, नष्ट हो जाता है, जैसे जड़ कट जाने पर एक हरा भरा पेड़ नष्ट हो जाता है। सत्यार प्रकाश के चौथे समुलास में ही समझाया गया है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और हिंसक, क्रूर या दुराचारी लोगों की संगति से दूर रहता है, वह सच्चा धार्मिक कहलाता है। संसार के सभी व्यवहार वाणी पर ही निर्भर करते हैं। जो व्यक्ति छल कपट और मिथ्या भाषण द्वारा अपनी वाणी को दूषित करता है, वह सब पापों का भागी बनता है। चौथे समुलास में ही बुरे आचरण के दुष्परिणाम को रेखांकित किया गया है। पहला दुष्परिणाम है सामाजिक निंदा। दुराचारी व्यक्ति समाज और सज्जनों के बीच हमेशा निंदा व अपमान का पात्र बनता है। दूसरा दुष्परिणाम है दुख और रोग। दुराचारी व्यक्ति जीवन में निरंतर दुखों का भागी बनता है और सदैव कमजोरियों एवं बीमारियों से घिरा रहता है। तीसरा दुष्परिणाम है अल्पायु। कुसंस्कारों और गलत आदतों के कारण दुराचारी मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। वह अल्पायु अर्थात कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्यों को दुराचार से बचने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। सत्यार प्रकाश के चौथे समुलास में महर्षि दयानंद का स्पष्ट कथन है, सदा धर्मयुक्त कर्मों का सेवन करें, अधर्मयुक्त कर्मों का त्याग करते रहें। धर्मयुक्त कर्मों के सेवन से पुण्य की प्राप्ति होती है और अधर्मयुक्त कर्मों को करने से हम पाप के भागी बनते हैं। धर्मयुक्त कार्यों में पुण्य की वृद्धि होती है और अधर्मयुक्त कार्यों में पाप की वृद्धि होती है। आज के लिए इतना ही। आज की वार्ता यहाँ विराम लेती है। अब आचार्य सुनील को अनुमति दीजिए। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: अभी आप सुन रहे थे वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीतम, प्रस्तुत करता डॉक्टर आचार्य सुनील।

तो चलिए श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे शास्त्र नवनीतम कार्यक्रम। ये कार्यक्रम डॉक्टर सुनील जी की प्रस्तुति में आप सुन पा रहे थे। तो चलिए भक्ति धारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। श्रोताओ, कहते हैं जिस घर में श्रद्धा, सेवा और सद्भाव का दीप जलता है, वहाँ माँ दुर्गा की कृपा स्वयं अपना मार्ग जो है बना लेता है। तो चलिए इस शुभ विचार के साथ कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आज का दिन बहुत ही पावन दिन माना जाता है। आज का दिन हम माँ दुर्गा की महिमा का गुणगान करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

चलिए श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 10:30 बज रहे हैं। हम बात कर रहे हैं माँ दुर्गा के बारे में। आज का दिन जो है उनको समर्पित है, और आपको पता ही है कि माँ दुर्गा के जो स्वरूप हैं उनकी पूजा अर्चना बहुत ही श्रद्धा भाव से करते हैं। माँ दुर्गा का हर स्वरूप जो है जीवन का एक संदेश हमें दिलवाती है। सबसे पहले शैलपुत्र जो है हमें स्थिरता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। साथ में है ब्रह्मचारिणी जो कि तप का प्रतीक है। फिर है चंद्र घंटा से हमें निर्भयता प्राप्त होती है। कात्यायनी से हमें साहस जो है प्रदान होती है। कालरात्रि से बुराई पर विजय से हमें प्राप्त होता है। साथ में सिद्धिदात्री से कृपा एवं सफलता का आशीर्वाद हमें मिलता है। तो चलिए आपके लिए बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान जो है हिमलता और साथियों की आवाज़ों में सुन पाएंगे।

चलिए श्रोताओ, भक्ति धारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। वैसे माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करें कि वे हमें सही मार्ग पर चलने की बुद्धि, हर कठिनाई का सामना करने का साहस प्रदान करें और सभी के प्रति प्रेम व करुणा रखने का हृदय प्रदान करें। तो चलिए कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं।

चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम प्रसारित कर रहे हैं भक्ति धारा कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत चन्न भक्ति गीत आपकी सेवा में हम प्रसारित कर रहे हैं। और आज है शुक्रवार, और शुक्रवार का दिन जो है हम माँ दुर्गा को पूछते हैं, साथ ही साथ आज का दिन जो है हम माँ संतोषी को भी पूछते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम में हम चन्न भक्ति गान जो है माँ संतोषी पर आधारित इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। वैसे काफ़ी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम आपको कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ निभाने के लिए। तो चलिए कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं, और एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो है माँ संतोषी पर आधारित आपके नाम करेंगे।

चलिए श्रोताओ, शुक्रवार का दिन हम माँ संतोषी की पूजा अर्चना करते हैं और उनके नियमों का पालन भी करते हैं, और कहते हैं कि 16 शुक्रवार अगर हम उनकी पूजा अर्चना श्रद्धा भाव से करें, व्रत धारण करें विधि विधान के साथ, जो है जितने भी हमें जो है मनोकामनाएं हैं वो सब पूर्ण हो जाती है। तो चलिए एक बहुत ही प्यारा सा अंतिम भक्ति गान आप सभी सुनने वालों के नाम कर रही है। कुछ ही घर में 11 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार आप उर्दू कार्यक्रम सायरा की पेशकश में सुन पाएंगे। हमारी तरफ से आप सभी को शुभ दिवस।

श्रोताओं, जाने से पहले आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। साइड हुसैन रोड फिनिक्स के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है कॉन्डोस लेजर पार्क एवेन्यू, फिनिक्स हाइट अपार्टमेंट, हिलक्रेस्ट अपार्टमेंट, फिनिक्स रेजिडेंस अपार्टमेंट, मार्सेलमान सोसाइटी पार्कलैंड, JNJ ऑडिटोरियम, पेट कंसर्न, GBVS के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि 3 जुलाई 2026 को दिन के 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति

0: राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट्स के साथ संक्षिप्त समाचार के साथ स्टूडियो में आ गए सुमेरा, उनसे मिलते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार। रादाब एमरश्रस के चंद उच्चाधिकारियों को सस्पेंड किया गया, उनमें लोरों रुकुरा का नाम है जो कंपनी के चीफ कमर्शियल ऑफिसर है। अभी हमारी जानकारियों के मुताबिक उन्हें दूसरी बार के लिए सस्पेंड किया गया। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के महानिदेशक दाऊद आरी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि क्रोल रिपोर्ट से अंजाम होंगे। अनुलाजस फिर से आरटीओ कंपनी के सीईओ के पद पर फायर्स हुए हैं। बुध को आईबीएल ग्रुप के सीईओ की औपचारिक नियुक्ति हुई। अनुलाजस को इस क्षेत्र में तजुर्बा है। अप्रैल 2018 से 2022 तक वो ये जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ग्रुप की औपचारिक विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी है कि जेरोम दुशातोनफ ने अवकाश लिया है। आज से यानी कल से तकामाका पुल फिर से कार्यरत होने लगा है। गाड़ियों की आवाजाही सुचारू रूप से की जा रही है। ये पुल 60 से ज़्यादा साल पुराना है, जिस पर दो बसें एक ही वक्त पर नहीं गुजर पा रही थीं और इससे पुनर्निर्माण कार्यों की ज़रूरत थी। कई महीनों के कार्यों के बाद इस पुल का दोबारा उद्घाटन किया गया है। विदेश में कीव में रूसी ताकतों ने ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं और कम से कम 30 लोगों की मौत हुई है। शहर के मेयर ने कहा कि ये सबसे गंभीर हमला है और आपको ये भी बता दें कि 91 लोग जख्मी हुए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
2: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: शम्मे फरोज़ा।

आऊज़ु बिल्लाही मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़यामत तक सजदे में रहे सर मेरा ए खुदा, क़यामत तक सजदे में रहे सर मेरा ए खुदा, कि तेरी नेमतों के लिए ये ज़िंदगी काफ़ी नहीं, कि तेरी नेमतों के लिए ये ज़िंदगी काफ़ी नहीं।

0: जुम्मे का मुबारक दिन है आप तमाम सुनने वालों को। हमारी जानिब से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको ऐसे हज़ारों जुम्मे नसीब फरमाए। मौज़े सामीन, उम्मीद है आप बफ़ज़ल खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम फरोज़ान रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू मजलिस में आप समात फरमाएंगे तिलावते कुरान पाक हम्द नातो सलाम। 5251700 के ज़रिए आप व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए हमें अपने पैगामात भेज सकते हैं। ताखीर ना करते हुए आइए आगाज़ करते हैं सूरह अल कहफ़ की तिलावत से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु

सदक़ल्लाहु अज़ीम। अभी आप समात फरमा रहे थे सूरह कहफ़ की मुबारक तिलावत। सूरह कहफ़ की फ़ज़ीलत अहादीस मुबारक में बयान हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ़ की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसके लिए दो जुम्मों के दरमियान नूर अता फरमाता है। इसी तरह एक और हदीस में आया है कि सूरह कहफ़ की इब्तिदाई या आखिरी 10 आयात याद रखने वाला दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को समझकर पढ़ने, उस पर अमल करने और उसकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।

जुम्मे का दिन है। इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया बहवाला सही मुस्लिम शरीफ। जुम्मे के दिन गुसल करना और पाकीज़गी इख्तियार करना, अच्छे और साफ़ कपड़े पहनना और खुशबू लगाना, जल्दी मस्जिद जाना, खामोशी से खुतबा सुनना और कसरत से दुरूद पाक पढ़ना, इसके अलावा सूरह अल-कहफ़ की तिलावत करना अहम आमाल हैं।

मौजूद सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:44 हो चुके हैं। जुम्मे का मुबारक दिन है, जुलाई की 3 तारीख है और इस्लामी साल के पहले महीने माह मुहर्रमुल हराम की आज 17 तारीख है। जी हाँ, आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 5251-7005। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जा सकता है। जुम्मा सिर्फ इबादत का दिन नहीं है, बल्कि अपने आमाल का जायज़ा लेने, गुनाहों से तौबा करने, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करने, वालदैन की खिदमत करने और मोहताजों की मदद करने का भी दिन है।

0: फ़ातिमा भी हमेशा की तरह हमारा साथ दे रही हैं। और क्यूपिप से फ़गानाज़ जुम्मन ने अपने अब्बू अनवर हुसैन, दादा मजीद इमगिद, दादी हलीमा इमगिद, उनके बहनोई नौशाद सुभान और इमाम खान फैमिलीज़ के लिए एक कलाम की फरमाइश की है और तमाम मरीज़ों के लिए दुआए शिफा की गुजारिश कर रही हैं। इसके अलावा अजूबा बेगम पीर बख्स बिन बिनते मरहूम गशाद महमूद जिनकी, जी हाँ, अजूबा पी बेगम की आज 70वीं, जी हाँ, वो उनके लिए दुआओं की गुजारिश की गई है। अल्लाह पाक अजूबा को सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी और ढेरों खुशियां अता फरमाए। इसके अलावा बेटे हैदर अली के लिए, जी हाँ, बेटे हैदर अली के लिए वालदा शहताज, बहन सुमैया, बहनोई तंजील, भांजी इसरा, वालिद ने बहुत सारी दुआएं और प्यार भेजा है काप मालवे से।
1: दोस्तों, ये कलाम मैं अपनी वालदा की नज़र कर रहा हूँ।

शुक्रवार 3 जुलाई, घड़ी मिला लीजिए, दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और यहाँ पर हम भी आ गए हैं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पसंद लेकर। कैसे हैं आप सभी? ठीक तो है ना? तो चलिए, यहाँ पर उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि शुक्रवार का दिन अपने आप में बहुत अच्छा ही होता है, क्योंकि पता होता है कि सप्ताहांत आने वाला है, वीकेंड आने वाला है, और वीकेंड की खुशी अपने आप में अलग ही होती है। फिर चाहे वो बच्चे

या फिर काम करने वाले लोग क्यों ना हो। तो चलिए, आज का दिन बहुत अच्छे से बीत रहा होगा और अभी से लेकर जो है 4:15 तक आपका साथ देने के लिए हम आ चुके हैं। और जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तो पता ही है, आपके पसंद ये प्रोग्राम फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम है। फ़ोन कॉल्स आपके यहाँ पर जो है 4028085 पर हमें मिल ही रहे हैं। और साथ ही जो है आपके जो मैसेजेस है 5251700005 पर। तो चलिए, कोई खूबसूरत सा गाना सुनना चाहते हैं, किसी के नाम करना चाहते हैं, आप सभी का स्वागत हम करते हैं आपकी पसंद इस प्रोग्राम में। और किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी की सालगिरह है, उनके नाम कोई खूबसूरत सा तराना करना चाहते हैं, तो बेशक जुड़ जाइए इस प्रोग्राम से। और चलिए, इस खूबसूरत गाने के साथ आज के इस आपकी पसंद के सफ़र की शुरुआत हम करते हैं।

0: आपकी पसंद।
1: जी हाँ, मेरे साथिया मेरे साथ चल। चलिए, आप सबका साथ मिलता है तो हमारे लिए जो ये जो सफ़र है आपकी पसंद इस प्रोग्राम का और भी हसीन और भी खूबसूरत हो जाता है। और अपनों का साथ मिलने से सफ़र जो है आसानी से कट भी जाता है और जो है सफ़र यादगार भी हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पर आप लोगों का साथ मिलना यहाँ पर हमें अच्छा लग रहा है। और चलिए फरमाइशों को आगे ले जाते हैं। और यहाँ पर अगला जो तराना है, हेलो ब्रदर फिल्म का ये गाना है। मौदालबिया से अनीता जी ने इस गाने की रिक्वेस्ट की है, कह रही है गाना हो जाए कुमार सानू अलका याग्निक जी की आवाज़ों में। इनके नाम, इनकी ओर से करुणा के लिए, अमृता के लिए, सभी दोस्तों के लिए और मौदालबिया के इनके पूरे परिवार के लिए। और चलिए यहाँ पर रूम हमारे साथ जो है इस समय शिमला जी बेलरोज से हमारा साथ दे रही है, कह रही बस हमारा नाम जोड़ दीजिए, हमारे लिए यही काफ़ी होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शिमला जी, आप ऐसा सोचती हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि हर रोज़ बहुत सारे लोग लगभग रोज़ ही गानों की फरमाइश करते हैं। और ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बस कोई भी गाना चल जाए, हमें अपना नाम जो है सुनने से मतलब है। तो चलिए यहाँ पर अगला गाना आपके नाम डेडिकेट हम करते हैं। सिस्टर है रूमा, साथ में है आरती, इंदिरा, भाई है राकेश, धीरज बेटा है निमलेश, बेटी है कीर्तिना। और यही गाना खासकर शिमला जी आपके नाम और जितने भी सुनने वाले सलमान खान के फैंस हैं उनके लिए और साथ में रानी मुखर्जी के चाहने वालों के लिए भी।

0: की पसंद।
1: यकीनन दिल चुरा ही लेते हैं फिर, चाहे वो गाने पुराने हो, 90s के हो या नए क्यों ना हो, कुछ गाने अपने आप में इतने ही खूबसूरत होते हैं कि क्या कहे, है ना। तो चलिए, ऐसा ही कोई खूबसूरत सा गाना आप भी सुनना चाहते हैं या किसी के नाम करना चाहते हैं तो बेशक हमारा साथ दीजिए यहाँ पर आपकी पसंद इस प्रोग्राम में।

और चलिए यहाँ पर इस अगले गाने के साथ हम प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं, हम तुमसे मिले। ये जो गाना है संगीता जी कथकों से हमारा साथ दे रही है। गाना जाता है पति विजय के नाम, साथ में सभी बच्चों के लिए यशवीर है, काजल है, मिथुन है, इश्नेशा है, आरुही है, आरुषि है, रीगा है, सभी पता परिवारों के नाम ये गाना चल पड़ा आपके लिए भी, खासकर संगीता जी, लता जी और किशोरदा की आवाज़ों में।

0: की पसंद।
1: जी हाँ, हम तुमसे मिले फिर जुदा हो गए और देखो फिर मिल गए। ऐसा ही होता है, मिलना बिछड़ना तो लगा ही रहता है। तो बस अगर आपका कोई अपना, कोई प्यारा आपसे बिछड़ा हुआ है तो हम बस यही दुआ करेंगे कि आप लोगों का मिलन जल्दी हो जाए। किसी के बीच कोई जुदाई है तो जुदाई दूर हो जाए, क्योंकि जब अपने या कुछ ऐसे लोग जो हमारे दिल के बहुत ही करीब होते हैं, किसी कारणवश वो दूर हो जाते हैं, कोई गलत फहमी ली, कोई ना समझी की वजह से, कोई मनमुटाव की वजह से, तो माना ज़िंदगी में कुछ अधूरा सा है ना। और अपने साथ होते हैं तो ज़िंदगी की हर कमी पूरी हो जाती है। तो चलिए, ऐसे में अगला गाना शिवानी और यश्विन के नाम जाता है। इनकी शादी थी कुछ दिनों पहले, तो आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएँ उदय की ओर से। उदय जी जो रिविजी पोस्ट से आप दोनों को बधाई दे रहे हैं, खासकर सभी धनीराम परिवार की ओर से, सभी बिनिक परिवार की ओर से और सभी लोबिन परिवारों की ओर से। ये गाना आप दोनों के लिए, शिवानी और अश्विन।

चलिए इसी के साथ हम बढ़ने वाले हैं 3 बजे के समाचार की ओर, और समाचारों के उस पार आपकी पसंदीदा प्रोग्राम जारी रहेगा। तो यूं ही साथ देते रहिए हमारा रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं गीता जी, आपको नमस्कार।
2: नमस्कार परी, सभी को हमारा नमस्कार। 1000 से ज्यादा मोबाइल फोन्स, 284 सिम कार्ड्स, मेमोरी कार्ड्स, सिगरेट, अस्थायी रूप से बनाए गए हथियार तथा कई अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं को आज सुबह बुबासे जेल में नष्ट कर दिया गया। ये कार्रवाई जेल प्रशासन द्वारा कैद खानों में प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी, प्रवेश और उनके उपयोग पर रोक लगाने के लिए किए जा रहे लगातार प्रयासों का हिस्सा हैं। मॉरिशस के निदेशक ने कल अपने कमर्शियल डायरेक्टर, फ्रांसीसी नागरिक लोरां रुकुरा सहित 6 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया। ये फैसला के रोल रिपोर्ट के बेहद गंभीर निष्कर्षों के बाद लिया गया है। हालांकि इस प्रशासनिक कार्रवाई के सटीक कारणों की अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन जांच रिपोर्ट में विमान लीज के अनुबंधों से जुड़ी कई अनियमितताओं की ओर संकेत किया गया है। लोरां रुकुरा को पिछले 2 वर्षों के भीतर दूसरी बार निलंबित किया गया है। और अब विदेशी खबरें भारती बिहारी के साथ।
3: फ्रांस ने बताया है कि जून में यूरोप में पड़ी रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी की लहर के दौरान पिछले सप्ताह 2000 से अधिक अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई। वहीं मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में यूरोप में कई हिस्सों में फिर से अत्यधिक तापमान देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान इलाके में एक यात्री बस के खाई में गिरने से कम 40 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। बस 36 यात्रियों के साथ क्वेटा से निकली थी, लेकिन रास्ते में खराब हुई एक दूसरी बस के कुछ और यात्री भी इसमें सवार हो गए।
2: और इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
4: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: 819 kilohertz, ये है Radio Mauritius, Radio Mauritius.
5: 3:02 आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से 2 विज्ञप्तियां सुन लीजिए। प्लेनवेत के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है। प्लेनवेत के खासकर रुई मदाद अल इस्लाम, एदगोलियोरा, लापे, लेनिपेव, चाइना, यहाँ पर और साथ ही वाले पितों के इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक रुई बुलेवार्ड, विक्टोरिया, मैमलोन, वेयर, देपिने, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को

0: सूचित किया जाता है कि यहाँ पर आते रविवार 5 जुलाई को, आते रविवार 5 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से सुबह के 8:30 बजे से दोपहर के 1 बजे के बीच, सुबह के 8:30 से दोपहर के 1 बजे के बीच इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और साथ ही इन जगहों पर रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, बुशों के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, बुशों के खासकर रॉयल रोड, मौसलमो वीआरएस सीबी स्टेशन और कोविल के पास, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर शनिवार 4 जुलाई को, शनिवार 4 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से सुबह के 8:30 बजे से सपैर के 4 बजे के बीच, सुबह के 8:30 बजे से सपैर के 4 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी 2 विज्ञप्तियां सीबी की ओर से।
1: आपकी पसंद
0: और चले पसंदीदा गीतों के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं। जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी के प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया। और चलिए यहाँ पर 4028085 पर आपका साथ हमें मिल ही रहा है और साथ ही आपके मैसेजेस भी ढेर सारे यहाँ पर बरस रहे हैं 5251700005 पर। तो चलिए इस अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। 2 दिलों की दास्ता फिल्म का ये जो तराना है, लता जी सुरेश वाडकर जी की आवाज़ों में, जाता है सूरज शर्मा जी आपके नाम त्रियोले से हमारा साथ दे रहे हैं। खासकर ये गाना आपके बेटे निशाल के नाम और MBC रेडियो की पूरी टीम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए यही गाना जाता है आपके नाम भी ज्योति जी जो यूनियन पार्क से हमारा साथ दे रही है, कह रही है नेक्स्ट गाना हो जाए प्रीति के नाम, मयूर के नाम, आदर्श के नाम, वेदना, विमल, विवेक और अविशा के लिए। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और ये खूबसूरत सा तराना आप सभी के लिए। हमराही मेरे हमराही

तो चलिए खूबसूरत सा तराना और इसके बाद बढ़ते हैं इस अगले गाने की ओर। और सबसे पहले जितने भी आज सुनने वाले आपके परिवार के सदस्य जो भी अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आप सभी को हमारी पूरी टीम की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और यकीनन आप इस ज़िंदगी में तरक्की करें, सफलता को हासिल करें, सभी दुख सभी परेशानियों से हमेशा दूर रहे और हमेशा खुश रहे। और चलिए ऐसे में अगला गाना जो है जाता है सियाना के नाम, जो एक साल के हो रहे हैं। शुभकामनाएं मामा दीपशिका पापा अक्षय की ओर से, दादी है उषा, बेब नानी है अमृता, दादा है सच्चिदानंद और पूरे परिवार की ओर से। यहाँ पर चाचा है, चाची है, फूफू है, फूफा है, आकाश है चाचा, चाची है वृष्टि, फूफू है पूजा, फूफा है विशान, साथ में है अंश। सभी की ओर से शियाना आपको जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं, खासकर सभी कुंज बिहारी परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए यहाँ पर जितने भी सुनने वाले आज अपना जन्मदिन मना रहे

0: आपकी पसंद।
1: चलिए एक बार फिर से जन्मदिन के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं उन सभी को जो मना रहे हैं अपना जन्मदिन। 3:20 ऑलरेडी यहाँ पर होने को है और इस अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। इस समय बंधु परिवार जो है ट्रियोले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खून भरी मांग फिल्म का जो तराना है हंसते हंसते कट जाए रस्ते, इस गाने की फरमाइश उन्होंने की है। चलिए सभी बंधु परिवारों के नाम ये गाना जाता है और बड़े ही प्यार से हमें सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर माया जी मोताइब्लॉन्च से हमारा साथ दे रही है, कह रही है कि नेक्स्ट गाने में हमारा भी नाम जोड़ दीजिए। तो चलिए जो नेक्स्ट खूबसूरत सा गाना है मोताइब्लॉन्च की, माया जी खासकर आपके नाम हम करते हैं। और चलिए यहाँ पर बहुत सारी फरमाइशें हमें अभी भी मिल रही है और हमारी पूरी कोशिश है कि सभी फरमाइशों को हम समय रहते पूरा कर पाए। तो चलिए ये गाना चल पड़ा उन सभी के नाम जिस गाने को पसंद भी करते हैं सुनना।

0: की पसंद।
1: जी हाँ, हमेशा ही हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि यही तो है जो ज़िंदगी हमें जीने के लिए आगे इंस्पायर करती है, है ना। तो चलिए अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। जुदाई फिल्म का ये जो अगला तराना है, जुदाई यानी कि पुरानी फिल्म जुदाई जो 80s के सालों में आई थी 80s के सालों में। तो चलिए ये जो गाना है, मार गई मुझे तेरी जुदाई, किशोर दा और आशा जी की आवाज़ों में। पोटलू से इस समय संजय हमारा साथ दे रहे हैं। गाना जाता है इनकी ओर से इनके बहन आशा और अजीत के नाम, और पोर्टलूस के इनके पूरे फैमिली के नाम, सभी दोस्तों के नाम जो इस समय हमारा साथ दे रहे हैं आपके पसंद इस प्रोग्राम में।

0: की पसंद।
1: और चले आपके पसंद में से अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। तुमसे मिला था प्यार कुछ अच्छे नसीब से। विद्या जी ने यूनियन पार्क से इस गाने की फरमाइश की है। लेकिन विद्या जी आपको बता दें, ये गाना कॉलेज गर्ल फिल्म का नहीं है, ये गाना खट्टा मीठा इस फिल्म का है। तो चलिए गाना आपके नाम हम करते हैं। आपकी ओर से ये गाना जाता है आपकी चाची कुमारी के नाम। आपकी बहन है सती, साथ में है सुरेखा, बबीता और खासकर यूनियन पार्क के आपके पूरे परिवार के लिए।
2: मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता।
3: कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
2: फिर भी जरीन, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ और सोच रखा होगा।
3: सोचने दो।
2: बुरा मत मानना जरीन, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर ये भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
3: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
2: लेकिन जरीन, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
3: तुम मुझे प्यार करते हो।
2: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद और पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
3: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
2: प्यार तो करता हूँ जरीन, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन
3: प्यार करते हो ना।
2: पर जरीन, तुम
0: तुमसे मिला था प्यार कुछ अच्छे नसीब थे।

यकीनन हम भी बहुत अमीर हैं क्योंकि इतने सुनने वाले इतने प्यार से साथ जो दे रहे हैं, और ये प्यार ही है जो जिंदगी की खूबसूरती को बढ़ाता है। चलिए इस समय ज्योति जी शाटो बनारस से हमारा साथ दे रहे हैं। गाना जाता है आशनी, रेखा, सुरेखा और सभी मधव परिवार के नाम, और यही गाना हम करते हैं सुदेवी जी आपके नाम। गुड आफ्टरनून, आपको भी गुड आफ्टरनून सुदेवी जी, वाकवा से हमारा साथ दे रही हैं। गाना जाता है दीदी लालिता के लिए, दीदी लालिता के लिए, राइट, और सभी कुशल फैमिलीज के लिए। और यही गाना भाई आत्माराम के लिए, दीदी सुनीता, शोभा देवी नाम मालिंगा से है, विकास, अक्षय, स्नेहा, कीर्ति, कृषिका, लक्षिता, सभी राम रतन परिवार, सभी राम गुलाम परिवार, सभी कुवारू परिवारों के नाम। यदि कोई भी गाना चला दीजिए। और चलिए यहाँ पर इस समय हमारे साथ अमीना जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो आपके साथ के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। रिहाना जी भी हमारा साथ दे रही है। तो चलिए इसी के साथ आज का प्रोग्राम हमारा ख़त्म होने को चला, आज 4:15 बजे ख़त्म होता है, आपको तो पता ही है। तो इसी गाने के साथ हम आपसे विदा लेंगे। 4:15 बजे गुलदस्ताए उर्दू इस प्रोग्राम को आप सुन पाएंगे निसार की पेशकश में। तो हमें दीजिए इजाज़त, जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी। रेडियो मॉरिशस पर साथ देते रहिए। धन्यवाद।

0: मोहतरम मोहतशम सामईन, निसार अख्तर की तरफ से आदाब अर्ज़ है। गुलदस्ते उर्दू प्रोग्राम में हम आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। याद रहे ये ख़ास प्रोग्राम उर्दू स्पीकिंग यूनियन के ज़ेर एहतमाम नशर किया जाता है। मैं इसे शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ, मैं इसे शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ, मुझसे पहले इस गली में मेरे अफसाने गए। सामईन, इस शेर के पस मंज़र में एक ऐसी शख्सियत जलवागर हैं जिसने लफ्ज़ों को एहसास और एहसास को फ़न बनाया। आज के गुलदस्ते उर्दू में हम जिस शायर को खैराज अकीदत पेश कर रहे हैं वो उर्दू के दरख्शंदा नाम ख़तीर गज़नवी हैं, जिनकी शायरी दिल की गहराइयों में उतर जाने की सलाहियत रखती है।
1: गो ज़रा सी बात पर बरसों के याराने गए, गो ज़रा सी बात पर बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। गर्मी महफिल फ़कत एक नाराए मस्ताना है, गर्मी महफिल फ़कत एक नाराए मस्ताना है, और वो खुश हैं कि इस महफिल से दीवाने गए। मैं इसे शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ, मैं इसे शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए। वहशतें कुछ इस तरह अपना मुकद्दर बन गईं, वहशतें कुछ इस तरह अपना मुकद्दर बन गईं, हम जहां पहुंचे हमारे साथ वीराने गए। यूं तो वो मेरी रगे जां से भी थे नज़दीकतर, यूं तो वो मेरी रगे जां से भी थे नज़दीकतर, आंसुओं की धुंध में लेकिन न पहचाने गए। अब भी उन यादों की खुशबू ज़हन में महफूज है, अब भी उन यादों की खुशबू ज़हन में महफूज है।

0: बारहा हम जिनसे गुलजारों को महकाने गए, क्या क्यामत है के हातिर कुश्ताए शब थे भी हम, क्या क्यामत है के हातिर कुश्ताए शब थे भी हम, सुब भी आई तो मुजरम हम ही गर्दाने गए। गो जरा सी बात पर बरसों के यार आने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए।
1: उर्दू के मुमताज शायर, अदीब, नकाद, मुहक्किक, पेशावर यूनिवर्सिटी के उस्ताद, प्रोफेसर और डॉक्टर खतीर गजनवी 25 नवंबर सन 1925 में पेशावर में पैदा हुए। असल नाम मिर्ज़ा इब्राहिम बेग था और तखल्लुस खतीर। उन्होंने पूरी ज़िंदगी इल्म की हुरमत और उसकी तरवीज के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने अपनी इल्मी ज़िंदगी का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान पेशावर से किया, जहां उनकी आवाज़ और फ़न की गूंज पूरे मुल्क में सुनाई दी। सामईन, खतीर गजनवी की शायरी अपने अहद का आईना है, जिसमें इंसान बोलता है। जदीद दौर की ज़िंदगी में जो कुछ है, जो कुछ हो सकता है या जो कुछ होना चाहिए, उसकी अनगिनत तस्वीरें खतीर की शायरी में मजमूई तौर पर उसको नई ज़िंदगी का मुरक्का बल्कि निगारखाना बनाती हैं, और यही उनकी शायरी की नुमाया तरीन खसूसियत है। सामईन, आइए इस लुत्फ सुखन को दोबाला करते हैं और खतीर गजनवी की गज़लों को उनकी मुतरन्नुम आवाज़ में सुनने का शर्फ हासिल करते हैं।
2: हर हकीकत को गुमा तक सोचूं,
3: हर हकीकत को,
2: हर हकीकत को गुमा तक सोचूं, मैं बहारों को खजां तक सोचूं।
3: क्या कहने, क्या कहने, हर हकीकत को,
2: हर हकीकत को गुमा तक सोचूं, मैं बहारों को खजां तक सोचूं, और गुफ्तगू तल्ख हकायक से भी हो, गुफ्तगू तल्ख हकायक से भी हो, ख्वाब ही ख्वाब कहां तक
3: सोचूं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह,
2: हर कदम एक मुअम्मा बन जाए जिंदगी तुझको जहां तक सोचूं। और शेर है कि सोच बन जाती है गर्दाबे बला, सोच बन जाती है गर्दाबे बला, एक ही बात कहां तक सोच, और हद परवाज मेरी इतनी है, हद परवाज मेरी इतनी है, ला मकां को भी मकां तक सोच।
3: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
2: हद परवाज मेरी इतनी है, ला मकां को भी मकां तक सोचूं, और दस्तरस किसकी मुदावा कैसा, दस्तरस किसकी मुदावा कैसा, दर्द को सिर्फ फुगां तक सोचूं, दर्द को सिर्फ फुगां तक सोचूं। और शेर अर्ज करता हूं कि नापूं जज्बों को भी पैमानों से,
3: वाह,
2: नापूं जज्बों को भी पैमानों से, अश्क को आबे रवां तक सोचूं, नापूं जज्बों को भी पैमानों से, अश्क को आबे रवां तक सोचूं, और तू नहीं पास तेरी याद तो है, तू नहीं पास तेरी याद तो है, तू ही तू सूझे जहां तक सोच,
3: वाह वाह वाह,
2: तू ही तू सूझे जहां तक सोचूं। और गजल पेश करता हूं कि जागुजी सदियों से मेरे दिल में है ऐसा लगा, जागुजी सदियों से मेरे दिल में है ऐसा लगा, अजनबी चेहरा था लेकिन जाना पहचाना लगा। अजनबी चेहरा था लेकिन जाने जाना पहचाना लगा और कुल कुर्ब में ढलती गईं सारी समंदर दूरियां, कुर्ब में ढलती गईं सारी समंदर दूरियां, था बहुत पायाब जो पानी मुझे गहरा लगा, था बहुत पायाब जो पानी मुझे गहरा लगा, और
4: शुक्रिया
2: और किश्ते वीरां की तरह जलता रहा मेरा वजूद, किश्ते वीरां की तरह जलता रहा मेरा वजूद, मुझको बहरे बेकरां भी रेत का दरिया लगा,
3: क्या कहने,
2: किश्ते वीरां की तरह जलता रहा मेरा वजूद, मुझको बहरे बेकरां भी रेत का दरिया लगा। और शेर पेश करता हूं कि जो नजर मैंने टटोली खाली खाली सी लगी, जो नजर मैंने टटोली खाली खाली सी लगी, मैं हुजूमे दोस्ता में खुद को भी तन्हा लगा, जो नजर मैंने टटोली खाली खाली सी लगी, मैं हुजूमे दोस्ता में खुद को भी तन्हा लगा, और गम दिलो जां का सिमट कर मेरा चेहरा बन गया, गम दिलो जां का सिमट कर मेरा चेहरा बन गया, शहर में फिर जो भी चेहरा था मुझे अपना लगा, गम दिलो जां का सिमट कर मेरा चेहरा बन गया, शहर में फिर जो भी चेहरा था मुझे अपना लगा, और जाने ये वीरानियां इस दिल में या दुनिया में थी, जाने ये वीरानियां इस दिल में या दुनिया में थी, घर तो मेरा दश्त था ही शहर भी सहरा लगा, घर तो मेरा दश्त था ही शहर भी सहरा लगा।
1: मुअज़्ज़ज़ सामईन, गुलदस्ते उर्दू प्रोग्राम में हम एक बार फिर आप लोगों का इस्तकबाल करते हैं उर्दू के मुमताज शायर खतीर गजनवी के यौम वफात पर। आज हम उन्हें खैराज तहसीन पेश कर रहे हैं। खतीर गजनवी ने अदब की खिदमत के लिए सहाफत को भी अपना वसीला बनाया। उनके इंतजामी सलाहियतों के एतराफ में सन 1984 में उन्हें अकेडमी अदबियात पाकिस्तान का डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया, जहां उन्होंने अदब की तरवीज के लिए गिराकदर खिदमात अंजाम दी। सामईन, उर्दू का ये अजीम शायर 7 जुलाई सन 2008 को पेशावर में इस जहान फानी से रुखसत हुआ। खतीर गजनवी ने अपने पीछे जो तसानीफ और शागिर्द छोड़े हैं वो हमेशा उनकी याद दिलाते रहेंगे। इंसान हूँ घर गया हूँ ज़मीन के खुदाओं में, इंसान हूँ घर गया हूँ ज़मीन के खुदाओं में, अब बस्तियाँ बसाऊँगा जाकर खलाओं में। सामईन, खतीर गजनवी के इस शेर के साथ हम आपसे रुखसत होते हैं। अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए, अगले जुम्मे को किसी और मौजू को लेकर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।

0: 890 kilohertz. This is Radio Mauritius.
1: घड़ी मिला लीजिए सामीन, इस वक्त हम रेडियो मॉरिशस से आपसे मुखातिब हैं। शाम के 4 बज रहे हैं। बज़्म नूर में हम आपका दिल की अतः गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा पे है भरोसा, इसी पे नाज करता हूँ। इलाही तेरे ही नाम से इस बज़्म का आगाज़ करता हूँ।

सदक़ल्लाहु अज़ीम। सामिने कराम, अभी आप तिलावत कलाम पाक से अपने दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा रहे थे। रब्बे ज़ुल जलाल इनायतों के सुनने का सवाब हम सबको अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस वक्त हम रेडियो मॉरिशस सबसे मुकदमे 4:12 हो रहे हैं। आइए आज जुमा के मुबारक मौके पर जामा मस्जिद पोटली में हज़रत क़िबला अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद साक़ादरी रज़वी दामत बरकतुल्लाह ने जो ईमान अफरोज़ बयान फरमाया, उसकी रिकॉर्डिंग हम आपको पेश कर रहे हैं, समाप्त कीजिए।

इनकी मर्जी क्या है? इनकी मर्जी अक्सर वो जिसमें इनकी दुनिया भी तबाह हो जाती है और आखिरत तो वो पहले से बर्बाद कर चुके। जब इस एंगल से हम सहाबा अहले बैत की लाइफ की स्टडी करते हैं तो हमें ये मिलता है सहाय सत्ता में इसके अलावा अहादीस की मुआतबर किताबों में बहुत सारी अहादीस और रिवायात मिलती है। कि वो कितना अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करते, कितना अच्छा रवैया था, बर्ताव था, गुड बिहेवियर था उनका अपनी औलाद के साथ, अपने माँ बाप के साथ। फिर माँ बाप की खिदमत का भी उनमें जवाब न था। टाइम के कम होने की वजह से मैं फकत दो अहादीस आपको सुना रहा हूं। पहली हदीस सुनन अबी दाऊद से, बाबू अर रजुलो याकुलो मिन माल वलदी। इस बाब में ये मेंशन किया गया कि बाप अपने बेटे का कमाया हुआ माल, उसका कमाया हुआ रिज्क खाए। और ये बताया गया कि जो बेटे का माल है वो बाप का माल है, बेटे का कमाया हुआ ये बाप का कमाया हुआ, बेटे के माल पे बाप का पूरा पूरा हक। इसमें ये हदीस बयान की कि एक सहाबी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास माल है और मेरे बाप को उसकी हाजत है, उसकी नीड है, तो क्या मैं अपने बाप पे खर्च कर सकता हूं? तो हुजूर सलाम ने फरमाया, अंत व मालुक लि अबीक। पूछने वाले, तू भी तेरे बाप का है और तेरा माल भी तेरे बाप का। इसको वो नादान बच्चे अच्छी तरह जहन नशीन कर ले और सुन ले, जो बाहर में तो हातिम ताई के बेटे बनते और हातिम ताई बनते, उनकी सखावत के तस्करे, लेकिन उनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता, ज़ईफ बूढ़े माँ बाप, जिससे वो अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरियात को पूरी कर सके। सबसे पहला हक इंसान पर उसके माल में उसके बाप का है, उसकी माँ का। ये एहसान बिल वालिदैन के मरातिब से सबसे अजीम मर्तबा है, सबसे अजीम दर्जा है। इसी तरह दूसरी रिवायत

वो भी सुनन अबी दाऊद की है। बाब है मन अहक बिल वलद। कभी ऐसा होता है कि माँ बाप अलग हो जाते हैं, तो उस सूरत में बच्चे पे ज्यादा हक किसका, बच्चा किसको मिलना चाहिए, इसकी अहादीस में और फिक्र की किताबों में पूरी डिटेल मौजूद है। उसके मसाइल हैं, काम है, मुहद्दिसीन ने भी इस पर बाब बांधे। इस बाब में ये हदीस साहिब सुनन अबी दाऊद ने नकल की कि एक औरत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई। अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा है, ये मुझे फायदा पहुंचाता है और मेरे लिए कुएं से पानी भर भर के लाता है, ये इसका बाप है, ये लड़का मुझसे छीनना चाहता है, मुझसे वापस लेना चाहता है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरानदाजी कर, जिसका नाम निकल आए ये उसका हो जाए। मतलब ये लेकिन जवाब में उसके बाप ने कहा कि ये मेरा बेटा है, इस पे कौन दावेदार हो सकता है, जब अल्लाह के हबीब ने यह सुना तो हुजूर सलाम तो माहिर नफ्सियात ह्यूमन साइकोलॉजी के अजीम माहिरों में से, और इस पर उलमाए नफ्सियात ने अलग किताबें लिखी हैं। हुजूर सलाम बतौर माहिर नफ्सियात जब उसने ये कहा कि ये मेरा लड़का है, इस पे कौन दावेदार हो सकता, तो अल्लाह के हबीब ने उस लड़के से फरमाया, उस नौजवान से फरमाया कि हाजा अबू का वहाज ही उम्मुक, कि ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारी माँ है, तुम इन दोनों में से जिसका भी हाथ पकड़ो पकड़ लो और उसके साथ चले जाओ। उस लड़के ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और मां के साथ चला गया। इससे मालूम हुआ कि उस वक्त औलाद को मां का कितना ख्याल होता था, कितनी फिक्र होती। जाहिर है कि खिदमत और फिर कुएं से पानी भर भर के लाना ये कोई आसान था। अब तो सारी फैसिलिटीज मौजूद है, अब तो पानी क्या भर के ला के दे, करीब में मेडिसिन उठा के नहीं देते माँ बाप, बाहर जाके दूर दराज इलाकों से कुओं से पानी भर के लाने का जमाना नहीं रहा। अब तो दो मिनट पर पानी होता है। कभी माँ बाप जईफ बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, उठ नहीं सकते,

औलाद को यह तौफीक नहीं होती कि वो उठ के गिलास में पानी भर के मां बाप को पिला दे। एहसान फरामोशी, एहसान को भूल जाना, ये तो दिन ब दिन इस माशरे में बढ़ता चला जा रहा है। अदब के जनाजे निकल गए, एक जनाजा नहीं कई जनाजे निकल गए। एक जमाना था कि लोग मां बाप के सामने उफ नहीं करते, अब ऐसा लगता है कि मां बाप मां बाप नहीं है, वो बच्चे, और जो बच्चे हैं वो मां बाप। लेकिन उसका नुकसान बच्चों को हो रहा है। मां बाप ज़ईफ़ हैं, बूढ़े हैं, वो चंद दिन की तकलीफ है वो उठा लें, और वो तकलीफ उनके लिए अच्छा है, इसलिए कि जितनी तकलीफ उनको दी जाएगी और वो उस पर सब्र करेंगे तो उनका अजर ज्यादा होगा, सवाब ज्यादा होगा। लेकिन औलाद ये न भूलें कि ये दिन उन पे भी आने वाला है, ये बुढ़ापा उन पे भी आने वाला है, उनका भी शबाब और जवानी हमेशा नहीं रहेगी। इसलिए जवानी के नशे में इतना मस्त मस्त कि आपको मां बाप का ख्याल ही ना रहे। मां बाप तो मां बाप, हमारे पास कभी ऐसे केसेस भी आए कि वो इंसान नहीं समझते मां बाप। लेकिन इसको साहिब औलाद ही जानता है। जब खुद उनकी औलाद होगी वो खुद मुशक्कत उठाएंगे, तकालीफ बर्दाश्त करेंगे, रात रात रातों को जाग कर उन्हें पालेंगे पोसेंगे, फिर उन्हें मारेंगे, लेकिन फिर देर हो चुकी चुकी। इसलिए वो वक्त आने से पहले ख्वाब गफलत से बेदार हो, आज ही माँ बाप से माफी मांगी। अगर खुदा न ख्वास्ता किसी ने अपने माँ बाप को ओल्ड होम में डाल दिया तो नादान, आज ही जाके माफी मांग के उनको वापस ले आ। इसलिए कि माँ बाप की खिदमत दुनिया में आपको सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन माँ बाप की खिदमत का सवाब। अल्लाह पाक हमें हमसे वो काम ले जिससे वो उसके हबीब राजी हो। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, वमा अलैना इल्लल बलाग।

0: अपनी परेशानियों को लेकर और सलाह मशवरों के लिए, तो बिलयकीन हज़रत क़िबला ने अगर इस पेचीदा मौजू पर बात की तो बिलयकीन बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने देखी हैं, मुशाहिदा किया होगा, जहाँ पर आपने बताया कि वालिदैन को बच्चे अपने वालिदैन को खुम में छोड़ रहे हैं, उनकी ख़ातिरदारी नहीं कर रहे हैं। और अक्सर व बेशतर हम सुनते हैं, बल्कि कुरान पाक में हदीस मुबारका में वालिदैन की इज़्ज़त, वालिदैन का अदब व एहतराम अल्लाह तबारक व ताला की इबादत के फौरन बाद उसका उनके साथ हुस्ने सलूक का हुक्म दिया गया है। और अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में, तर्जुमा सूरा इसरा आयत 23, और आपके रब ने फैसला कर दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। कई मरतबा, कई बार इस बात को दोहराया गया है। बरकैफ अल्लाह तबारक व ताला मुझे और हम सबको अपने वालिदैन का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नया साल है, नए साल की दुआ समाप्त कीजिए।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।

आमीन समामीन। सामीन, जैसा कि मालूम है कि मक्कतुल मुकर्रमा सोसाइटी और एमबीसी टेलीविज़न एमबीसी एक साथ मिलकर पहली मरतबा के लिए जज़ीरे मॉरिशस में कुरान रीडिंग कंपटीशन का एहतमाम कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑडिशंस के बाद जो नाम सिलेक्ट हुए हैं, क्वालिफाइड हुए हैं, मतलब कि प्रिलिमिनरीज़ के लिए, उनके नाम इस तरह हैं, मैं वो नाम लेना चाहूँगा। उनके नाम कुछ इस तरह हैं: मंदागी हंजला इब्नु मोहम्मद, दाहू मोहम्मद इस्माइल, शमताली नूर मोहम्मद इल्हाम, गुलाम हुसैन मोहम्मद अली फरहान, जनबकस मोहम्मद यूनुस, बरहू मोहम्मद अजमल फ़याज, सुबाची मोहम्मद कलीम अशरफ, पीरबख्श मोहम्मद गुलाम हसन सुलेमान, कुदादीन मोहम्मद नुबैद फरमान, जुमन मोहम्मद हमीद रजा खान, कदेसा मोहम्मद ओवैस अली, किरामत रयान मोहम्मद इब्न सैयद, रामजिन फैज़ान मोहम्मद शाबान, रामजान मोहम्मद इस्माइल इब्न अनवर, ओलित मोहम्मद जकरिया, महमूद अली मोहम्मद जुहेब रहमतुल्ला, अब्दुल फरहान मोहम्मद, रस्माली मोहम्मद रईस, सुकुताली हाजी इस्माइल, राम सहाय मोहम्मद ओवैस अली, आयकाक जी मोहम्मद शेख अभियान, दौलत मोहम्मद इरशान अली, गुबादन मोहम्मद इब्राहिम ऐमान, चोचू मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, बुलाकी मोहम्मद रहीफ जमाल, पिगाई मोहम्मद रजा, गुबादन अयान अली अजहर, जुमन मोहम्मद हुसैन अब्दाल, सुलेमान जाजा सुफियान, सालुगु मोहम्मद अब्रार सलमान अशरफी, मोहम्मद मीरान, ईदू मोहम्मद फैज़ान, उकोई मोहम्मद अनस, पीरबख्श मोहम्मद हाशिम, दुनोई मोहम्मद हसन राशिद और लाल मोहम्मद सैयद मोहम्मद हामिद यूसुफ। ये रहे वो नाम जो अगले राउंड यानी कि प्राइमरीज के लिए क्वालिफाइड हुए हैं। और इन तमाम के साथ इंशाल्लाह आइंदा इतवार 5 जुलाई को सुबह 9 बजे एमबीसी के स्टूडियो में एक ब्रीफिंग का अहतमाम किया गया है। लिहाजा इन तमाम से गुजारिश है और फ़ोन भी किया जा चुका है, इनसे गुजारिश है कि वो 9 बजे इतवार 5 जुलाई को एमबीसी पहुंच जाए। और बेशक तमाम उम्मीदवार मुबारकबाद के हकदार हैं और इसका फ़ायदा उठाकर हम उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया मगर क्वालिफाइड न हो पाए। बहरकैफ़ उम्मीद करते हैं कि आप

नाउम्मीद नहीं होंगे और हिम्मत ना हारें, क्योंकि ये कंपटीशन है। बहरकैफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस वक्त चार

0: सामीन, अभी आप जुमे के मुबारक मौके पर मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़े गए खुतबे की सदाबंदी समाप्त कर रहे थे। पिछले हफ्ते यानी पिछले जुमे को योम आशुरा का दिन था और एक ख़ास दुआ हम आपके लिए लेकर आए हैं, और समाप्त कीजिए क्योंकि पिछले हफ्ते ये दुआ हम आपको पेश नहीं कर पाए थे। समाप्त कीजिए।
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب

0: जिनकी दोस्तियां ख़त्म हो गई हैं, जो रिश्तेदार अलग हो गए हैं, अल्लाह ये साल जोड़ने वाला साल बना दे, ये साल मोहब्बतें फैलाने वाले हम बन जाएँ। अल्लाह जो टूट गए रिश्ते उसको जोड़ने वाले बन जाएँ, जो मुसलमानों से कतअ ताल्लुक़ हो गई है अल्लाह उसको जोड़ने वाले बन जाएँ। अल्लाह अगर कहीं ख़ानदानी दुश्मनी, कबीले की दुश्मनी, लिसानी दुश्मनी चल रही है अल्लाह मुसलमानों को शीरो शकर कर दे, दुश्मनियाँ ख़त्म करके शीरो शकर होकर जीने वाला साल बना दे। आमीन आमीन बिजाह नबी अमीन व उफव्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन।
1: समीन आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये आवाज़ मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी दामत बरकत मालिया की है, और हम आपको बताते चलें कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते यानी 10 जुलाई को मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी दामत बरकत मालिया मॉरिशस में होंगे चंद दिनों के लिए, चंद अयाम के लिए, और उनका एक ख़ास प्रोग्राम काची मिलितिया के कस्टेलिना हॉल में होगा, और ख़वातीन के लिए भी जगहों का इंतज़ाम किया गया है। तो याद रखें कि ग्रैंड इज्तिमा दावत इस्लामी की जानिब से, जिसमें गेस्ट स्पीकर एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ दावत इस्लामी मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी दामत बरकतुल्लाह होंगे।

आप तमाम सामीन को ये शाम मुबारक। आप साथ दे रहे हैं रेडियो मॉरिशस की लहर पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हसीन प्रोग्राम। जी हाँ अज़ीज़ सामीन, गीत और गज़ल का ये हसीन प्रोग्राम जहां से भी आप साथ दे रहे हैं आपका खुशामदीद है। तो चलिए ये पहला तराना आपके नाम करते हैं।

जिंदगी एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इंसान इस दुनिया में आता है, अपने हिस्से की खुशियां और गम समेटता है, कुछ ख्वाब

पूरे करता है और कुछ अधूरे छोड़कर रुखसत हो जाता है। हर किसी को मुकद्दर में कहाँ मंजिल नसीब, जिंदगी खुद एक सफ़र है, रास्ता ही रास्ता है। ये रेडियो मॉरिशस है, गीत और गज़लों की दुनिया में हम आपको ले चलते हैं, जहाँ हर एक जीवन है एक कहानी। समाप्त फरमाइए।

बाज़ औक़ात मुस्कुराहें सिर्फ खुशी की अलामतें नहीं होती, बल्कि दिल के बेशुमार गमों को छुपाने का हुनर भी होती है। चेहरे पर सजी मुस्कुराहट के पीछे न जाने कितनी उदासियाँ और कितने अनकहे किस्से पोशीदा होते हैं, है ना? चेहरे पे तबस्सुम है तो आँखों में नमी क्यों है? ऐ दोस्त, ज़रा बतला ये जादूगरी क्या है?

बेशक आंखें दिल की तर्जुमान होती हैं, कभी झुकी हुई नजरें मोहब्बत का पैगाम देती हैं तो कभी खामोशी से दिल का हाल सुना जाती है। ये रेडियो मॉरिशस है, परवीज़ा का साथ है। महफिल गीतों और गज़लों में साज़ और आवाज़ के इससे दिलकश महफिल को मज़ीद सजाते हैं। मज़ीद सामीन, ज़िंदगी के सफ़र में इंसान न जाने कितने राहों से गुजरता है। हम उम्र भर किसी एक सदा, किसी एक चेहरे या किसी एक लम्हे के मुंतज़िर रहते हैं, मगर वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है।

वज़ीर सामीन, ज़िंदगी की राहें चाहे कितनी ही तवील और पेचीदा क्यों ना हो, असल हुस्न उन लम्हों में पोशीदा हैं जो हम मोहब्बत और खलूस के साथ गुजारते हैं। ज़िंदगी नाम है चंद खुशियाँ चंद गमों का, जो मिल गया उसे संभाल लीजिए। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। हर शख्स के दामन में कुछ खुशियां हैं कुछ अधूरे ख्वाब हैं, शायद इसीलिए ये लाजवाल गज़ल आज भी दिलों को छू लेती है। सुनिए गुनगुनाइए, खुश रहें आबाद रहें और ज़िंदगी के हर रंग से लुत्फ अंदोज़ होते रहे। परवीज़ और अंजू को इजाज़त, खुदा हाफिज़।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घर मिला चीज। चलिए शाम के ठीक 6 बजे हैं। शुक्रवार 3 जुलाई 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। 1300 से अधिक मोबाइल फोन आज सुबह बुबासैन जेल के प्रशिक्षण केंद्र में नष्ट किए गए। प्रिजन्स कमिश्नर ने कहा कि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अब और भी सख्त तथा व्यवस्थित निरीक्षण लागू किए जा रहे हैं। अक्टूबर से प्लास्टिक की सभी बोतलों पर ₹2 का टैक्स बिना किसी उपवाद के लागू होगा। इसका उद्देश्य प्लास्टिक के उपभोग के उपयोग को कम करना और रिसाइकलिंग के लिए धन जुटाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्राइम विजन एक आधुनिक सॉफ्टवेयर है जो वास्तविक समय में हमलों का पता लगाकर तुरंत अलर्ट भेज सकता है। मॉरिशस के एक आईटी पेशेवर द्वारा विकसित इस परियोजना ने हाल ही में MRIC के नेशनल इनोवेशन चैलेंज में सामान्य श्रेणी का पुरस्कार जीता है। MRIC अब ऐसे नवाचारों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए समर्थन देने की योजना बना रही है। विदेश में जून के अंतिम सप्ताह में यूरोप में आई भीषण गर्मी के दौरान फ्रांस ने 2000 से अधिक अतिरिक्त मौतों में वृद्धि दर्ज की है। मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में और अधिक चरम तापमान की चेतावनी भी दी है। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। 22 अप्रैल 2020 में एयर मॉरिशस को स्वैच्छिक प्रशासन के तहत रखा गया। उस समय प्रशासनिक परिषद ने बताया कि कोविड-19 महामारी और सीमाओं के बंद होने के कारण एयरलाइन अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने की स्थिति में नहीं रह गई थी। इसके बाद प्रशासकों की नियुक्ति की गई, फिर एक व्यापक पुनर्गठन योजना की शुरुआत हुई। कर्मचारियों की संख्या घटाई गई। नकदी जुटाने के लिए 5 विमानों को बेचने का फैसला लिया गया। करीब 17 महीने बाद वर्ष 2021 में एयर मॉरिशस स्वैच्छिक प्रशासन से बाहर आ गई। एक साल बाद एयरलाइन ने अपने फ्लीट को मजबूत करने के लिए 2 एयरबस विमानों को लीज पर लेने की घोषणा की और अगले वर्ष एक नया विमान भी खरीदा। इन्हीं 3 सौदों ने वर्ष 2025 में कंपनी की कमान संभालने वाले नए प्रबंधन का ध्यान अपनी ओर खींचा। मार्च 2025 में उन्होंने स्वतंत्र जांच के लिए क्रोल फर्म को नियुक्त करने का फैसला लिया। जांच रिपोर्ट एयर मॉरिशस को सौंपे जाने के बाद उसकी शुरुआती निष्कर्षों का खुलासा पिछले मंगलवार प्रधानमंत्री ने संसद में किया। ये घोषणा उस बयान के एक दिन बाद आई जिसमें पायों के बिल्डिंग से कहा गया था कि एयरलाइन अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। इन कदमों में संबंधित तथ्यों को सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाना शामिल हो सकता है। आवश्यकता पड़ने पर ये जानकारी फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन और पुलिस को भी सौंपी जा सकती है। इसके अलावा कंपनी के पास उपलब्ध सिविल कानून उपायों का सहारा लिया जा सकता है और कानून के प्रावधानों के अनुरूप उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। 1300 से अधिक ये संख्या उन मोबाइल फोन्स की है जिन्हें आज सुबह बुबासैन जेल के प्रशिक्षण केंद्र में नष्ट किए गए सबूतों में शामिल किया गया है। पिछले बार ऐसी विनाशकारी कार्रवाई 2019 में हुई थी। ये प्रतिबंधित वस्तुएं तलाशी के दौरान जब्त

0: की गई थी या उन्हें दीवारों के ऊपर से फेंककर जेल में भेजने की कोशिश के दौरान पकड़ा गया था। पहले से ही अधिक सख्त और व्यवस्थित निरीक्षण लागू किए जा रहे हैं। प्रिजंस कमिश्नर ने कहा कि उन्हें अपनी टीम के सहयोग से इस तरह की अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाने का पूरा भरोसा है। अक्टूबर महीने से प्लास्टिक की बोतलों पर लगने वाला 2 रुपए का टैक्स सभी उत्पादों पर बिना किसी भेदभाव के लागू कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य इनके उपयोग को कम करना और रिसाइकलिंग के लिए धन जुटाना है। लेकिन ये कदम सर्वसम्मत नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि कई उत्पादों के लिए अभी भी प्लास्टिक का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके वास्तविक समय में हमलों का पता लगाना ये क्राइम विजन का एक अत्याधुनिक प्रोजेक्ट है। मॉरिशस के एक आईटी पेशेवर द्वारा विकसित ये सॉफ्टवेयर जो तुरंत अलर्ट देने में सक्षम है ने हाल ही में MRIC के नेशनल इनोवेशन चैलेंज में सामान्य श्रेणी का पुरस्कार जीता है। मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल पुरस्कृत परियोजनाओं का समर्थन करना जारी रखने की योजना बना रही है ताकि उन्हें बड़े पैमाने पर अपनाया जा सके। कृष्ण सिचिया की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण। हिंसा की घटनाओं का रियल टाइम में पता लगाने वाला एक सॉफ्टवेयर, यही विचार आईटी क्षेत्र के विशेषज्ञ निविन के मन में आया। क्राइम विजन नाम का ये सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से संदिग्ध हिंसक गतिविधियों की पहचान करता है और तुरंत अलर्ट भेजता है।
1: Crime Vision, c'est un projet qui émerge suite à, comme je disais, un rapport statistique Mauritius.
0: स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की एक हालिया रिपोर्ट पढ़ते समय क्राइम विजन का आइडिया मुझे आया, जहां अपराधों की संख्या मॉरिशस में कम हुआ पर अपराधों की तीव्रता और गंभीरता बढ़ती जा रही है। जो कैमरा चारों ओर है पर ये फेस रिकॉग्निशन यानी चेहरे की पहचान नहीं करता और व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान करते हुए ये हिंसक गतिविधियों की पहचान करता है। नेशनल इनोवेशन चैलेंज के हालिया संस्करण में सामान्य श्रेणी के विजेता रहे। इस परियोजना का आम लोगों के लिए एक निशुल्क संस्करण फिलहाल अंतिम चरण में है। इसमें भेजे जाने वाले अलर्ट को उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार सेट कर सकेंगे। ग्राहक उदाहरण के रूप में चुन सकता है कि उसे लाइट नहीं चाहिए बल्कि उसे मैसेज व्हाट्सएप पर भेजना है या विभिन्न विभागों में वह ईमेल भी भेजना पसंद कर सकता है। इस परियोजना को अभी और बेहतर बनाने की आवश्यकता है, जिस पर निविन लगातार काम कर रही हैं। उनकी तरह कई अन्य प्रतिभागियों को भी उनके नवाचारों के लिए सम्मानित किया गया। मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के स्तर पर सहयोग केवल पुरस्कार देने तक ही सीमित नहीं रहता। हम ये करते आए हैं जहां हम संबंधित अधिकारियों को किसी अत्यंत ही नवाचारी परियोजना के बारे में सूचित करते हैं जिसको अपनाया जा सकता है और काबिल भी है। हमारे पास स्कीम भी उपलब्ध है जहां विजेताओं को अपनी परियोजनाओं को और विकसित करने में मदद मिल सकती है। इस परियोजना को व्यवहार्य, सुरक्षित, विपणन योग्य और सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं ताकि हम उन्हें अनुसंधान समन्वयकों के संपर्क में डाल सके जो उनकी परियोजनाओं को परिष्कृत करने के लिए धन जुटाने में उनका मार्गदर्शन करें। चौथे संस्करण में सभी श्रेणियों को मिलाकर कुल 287 प्रतिभागियों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। हर परियोजना अपने आप में नई सोच और संभावनाओं से भरपूर नजर आई। खबरों का आगे बढ़ाते हैं, बात करें फुटबॉल के बारे में। स्पेन का 2026 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन जारी है। लाहोजा ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर बहुत ही प्रभावशाली ढंग से राउंड 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। ये एक दमदार प्रदर्शन है जो टूर्नामेंट में उनके प्रबल दावेदार होने की पुष्टि करता है। आश्ले सिताना की रिपोर्ट पर अरविंद बिसेसर का विवरण।
2: वर्ल्ड कप में लाहोजा का सुहाना सफर जारी है और इस बार ऑस्ट्रिया को हराकर आगे बढ़े। मैच में सॉलिड रहे और अच्छा फुटबॉल का प्रदर्शन स्पेन की टीम जल्द ही मैच पर पकड़ मजबूत कर लेती है। मिकेल ओयोजाबाल 36वें मिनट पर पहला गोल स्कोर करता है मार्क कुरेला के पास पर। सेकेंड हाफ में पेड्रो पेहो दूसरा गोल बनाता है और ओयोजाबाल फिर से एक गोल स्कोर करता है, इस बार फिर कुकुरेला के पास पर। दो गोल स्कोर किया ओयोजाबाल ने और इस प्रकार

0: डिफेंस जो है स्पेन का, उसे अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है, एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। इस क्लीन शीट के पीछे उनाई साइमन का हाथ है, जो 519 मिनट तक अजीत हैं, और ये रिकॉर्ड वाल्टर ज़ेंगा का था वर्ल्ड कप में 3-0 की जीत। अब अगले राउंड में स्पेन का मुकाबला पोर्टुगल से होगा।
1: और 2026 विश्व कप में शुक्रवार रात यानी कि आज रात को राउंड 16 के अंतिम फैसले हो जाएंगे। क्वार्टर फाइनल के लिए बची हुई 3 जगहें आज तय की जाएंगी। अपेक्षित पसंदीदा टीमों और हैरान कर देने वाले प्रदर्शन वाले करने वाली टीमों के बीच दबाव अपने चरम पर है। मारिन रेसिजी की रिपोर्ट पर एक बार फिर अरविंद बिसेसर का विवरण।
0: बेस्ट ऑफ 32 के 3 अंतिम मैच आज और कल सुबह खेले जाएंगे। आज रात 10 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इजिप्ट से, दी सोकरूज जो अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पे आए थे अपना सफर जारी रखना चाहेंगे, और उनके सामने है मोहम्मद सलाह की टीम इजिप्ट। इजिप्ट की टीम ग्रुप जी में पहले स्थान पे आई थी बेल्जियम से आगे। सो इस प्रकार ये मैच कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल होगा। ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट दोनों अच्छी अच्छी टीमें हैं। सुबह 2 बजे अर्जेंटीना और केप वर्दे के बीच मैच। लालबी सिलेस्ते अपने ग्रुप में पहले स्थान पे आई थी 3 जीतों के साथ। लियोनेल मेसी 6 गोल स्कोर कर चुका है। देखा जाए तो वर्ल्ड चैंपियन फेवरेट हैं, लेकिन ब्लू शॉक्स कुछ करना चाहते हैं इस वर्ल्ड कप में। एक ऐतिहासिक वर्ल्ड कप है उनके लिए, क्योंकि पहली बार ये टीम यहाँ तक पहुँची है। ग्रुप स्टेज में इस टीम ने स्पेन और उरुग्वे को रोका था, इस बार अर्जेंटीना है उसके सामने। ये मैच आप लोग एमबीसी स्पोर्ट्स 11 पर देख सकेंगे सुबह 2 बजे। और सुबह 5:30 बजे कोलंबिया का मुकाबला गाना से होगा। ग्रुप के में दी काफेटोकोस पहले पोजीशन पे आए थे। ब्लैक स्टार्स अपना टिकट बुक कर पाए थे अपने ग्रुप में 3रे स्थान पर आके। इस टीम से बच के रहना होगा।

0: अब हम एक ऐसे शिल्पकार से मिल रही हैं जो टेक का ठेकेदार बन गई हैं और आज एक ऐसी स्टार्टअप का नेतृत्व कर रही हैं जिसे निवेशकों के बीच पहले से ही सफलता मिल रही है। क्राफ्टी एक संस्थापक ब्रूनो लुगाल ने अपनी स्टार्टअप के लिए पहले ही 7 मिलियन रुपए का निवेश जुटा लिया है क्योंकि उन्हें समय पर सही मार्गदर्शन मिला। शहजाद जुमन की रिपोर्ट पर यह विवरण। ब्रूनो लुगाल और उनकी पत्नी एवाज किचन नाम से सूप तैयार करती हैं। रेसिपी हो या उत्पादन, दोनों इस काम में पूरी तरह दक्ष हैं। लेकिन बढ़ते ऑर्डरों के साथ स्टॉक, ग्राहकों और संचार का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन गया है। ब्रूनो का तकनीकी उद्यमिता का अनुभव ही उन्हें एक ऐसा ऑल इन वन सॉफ्टवेयर बनाने की प्रेरणा बना जिसका नाम है
1: क्राफ्टी।
0: ऐसे कई सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो आमतौर पर टेक्नोलॉजी पेशेवरों द्वारा टेक उपयोगकर्ताओं के लिए बनाया गया है, पर ऐसे भी लोग हैं जो हाथ से काम करते हैं और उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए एक ऐसा माध्यम ढूंढना पड़ा जो व्हाट्सएप की तरह वॉइस नोट या मैसेज भेज सकते हैं। असतन जो है वो ठेकेदार के लिए सभी प्रशासनिक और कमर्शियल कार्य करते हैं जबकि ठेकेदार पूर्ण रूप से उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। शुरुआत में व्यक्तिगत जरूरत से जन्मी ये स्टार्टअप आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। केवल 6 महीनों में ब्रूनो लुगाल अपने प्रोजेक्ट के लिए लगभग 70% वित्त पोषण जुटाने में सफल रहे। पहले चरण के लिए मुझे 10 बिलियन रुपए की आवश्यकता थी, फिलहाल केवल 7 बिलियन रुपए तक पहुंच पाए हैं जिससे सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर पाऊंगा। इसके बाद दूसरे चरण के अंतर्गत 3-7 बिलियन रुपए तक का बंदोबस्त करना होगा जिससे धीरे धीरे सॉफ्टवेयर का विकास कर पाए। विचार ब्रूनो का था लेकिन इसे एक सफल

0: व्यवसाय में बदलने के लिए उन्हें लैपलाश फैक्ट्री का सहयोग मिला। इस इंक्यूबेटर ने परियोजना के हर चरण में उनका मार्गदर्शन किया। इसी के माध्यम से उनकी मुलाकात एक मेंटर से भी हुई, जिन्होंने शुरुआत से उनका साथ दिया और कारोबार को खड़ा करने में मदद की। आज सुबह भी ब्रूनो की अपने उसी मेंटर लैपलाश फैक्ट्री के संस्थापक मिशेल कोदानी के साथ ऑनलाइन बैठक हुई।
1: C'est-à-dire qu'à la fois, on a des nouveaux investisseurs qui s'intéressent au projet et qui deviennent des membres donc, du syndicat, mais aussi de, qui vont investir dans le programme d'autres projets.
0: इसी तरह किसी भी स्टार्टअप की सफलता में इंक्यूबेटरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 8-9 महीनों तक चलने वाले इंक्यूबेशन अवधि के लिए सहायता प्रदान करते हैं, जहां ठेकेदार को परियोजना की नींव रखने में मदद करते हैं। बिजनेस डिजाइन, मार्केटिंग, परियोजना का विकास कैसे करें, कैसे संसाधन बनाना चाहिए, ये सब जानकारी देते हैं। अंत में फंड कैसे जुटाना चाहिए ये भी बताते हैं। लैपलाश फैक्ट्री अपने प्रत्येक समूह की लगातार निगरानी करती है और जिन स्टार्टअप्स की नींव मजबूत होती है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विशेष एक्सेलरेशन कार्यक्रम भी उपलब्ध कराती है। इस वर्ष इंक्यूबेशन कार्यक्रम में शामिल 14 संस्थापकों में से 4 पहले ही इस अगले चरण तक पहुंच चुके हैं।
2: घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ाई ने एक नया कदम आगे बढ़ाया है। अब्यूज बिल में पीड़ितों की बेहतर सुरक्षा करने और हिंसा पहचानने के लिए कई उपाय पेश किए गए हैं, जिनका पता मुश्किल होता है। इन उपायों में मनोवैज्ञानिक और आर्थिक हिंसा, घरेलू हिंसा के खिलाफ काम करने वाले गैर सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन एम्पावर और रेज ब्रेव गर्ल्स शामिल हैं। इस विधेयक का स्वागत उन्होंने किया। हिंसा के उन पहलुओं पर भी गौर किया जा रहा है जो पूरी तरह से इसको हम अच्छी तरह से देख नहीं पाते हैं। इस पर क्रिस्टेल लिबास की रिपोर्ट पर ये विवरण।
0: घरेलू हिंसा केवल शारीरिक हमलों तक सीमित नहीं है। प्रस्तावित डोमेस्टिक अब्यूज बिल में ऐसी हिंसा के उन रूपों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है जो अक्सर दिखाई नहीं देते लेकिन पीड़ितों पर गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव डालती है। इनमें आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न भी शामिल हैं। एम्पावर गैर सरकारी संगठन की अध्यक्ष और वकील मोक्षदा पैतुब का कहना है कि भले ही इस प्रकार की हिंसा के स्पष्ट शारीरिक निशान न हो, फिर भी उचित साक्ष्यों के आधार पर इन्हें अदालत में सिद्ध किया जा सकता है। तलाक या सेपरेशन की स्थिति में देखा गया है कि हिंसा करने वाले सबसे पहले आर्थिक नियंत्रण करते हैं, जहां वे खाने पीने के लिए पैसा देना बंद कर लेते हैं और महिला के पास अपने बच्चे की शिक्षा, स्कूल इत्यादि जारी रखने के लिए आर्थिक माध्यम नहीं है। पर अब इस तरह की हिंसा के खिलाफ भी अदालत में ऑर्डर प्राप्त कर सुरक्षा प्राप्त कर सकती हैं। मनोवैज्ञानिक हिंसा के कई पहलुओं को अब परिभाषित किया गया है। सबसे बड़ा पहलू नियंत्रण और नियंत्रणकारी व्यवहार, जहां इस प्रकार से मानसिक तौर पर पीड़ित से हेरफेर यानी मैनिपुलेशन किया गया हो कि जो उससे कहा जाता है वह करती है। महिलाओं और पुरुषों दोनों को ये समझना चाहिए कि ये आम बात नहीं है।
3: Et bien, les femmes, ça comprend. Et bien, les hommes aussi, ça comprend. Que ça, c'est pas normal.
0: जब घरेलू हिंसा होती है तो उसके सबसे अधिक प्रभावित होने वालों में बच्चे भी शामिल होते हैं। बच्चा घरेलू हिंसा का शिकार तब बनता है जब ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां वह परिवार और घर का हिस्सा होता है, जहां सब कुछ वह देखता है, सुनता है और जिसका उस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इसमें जरूरी बात ये है कि यहाँ बच्चे की सुरक्षा की बात हो रही है, जो एक अतिरिक्त सहायता है जो चिल्ड्रंस एक्ट को प्राप्त हो रहा है। ये साथ साथ चलता है। हम इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट के लिए भी आवाज उठा रहे हैं जो प्रोटेक्शन ऑर्डर से जुड़ा होगा। इस विधेयक में डिजिटल माध्यम से होने वाले नए प्रकार के दुर्व्यवहार को भी अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके तहत साइबर उत्पीड़न यानी हरासमेंट तथा किसी साथी को अपमानित करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक या निजी सामग्री भेजना या प्रसारित करना अब दंडनीय अपराध माना जाएगा।
2: फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा की जाने वाली बैंकिंग सीक्रेसी के उपवादों का विस्तार किया जाएगा। सरकार ने बैंकिंग एक्ट में संशोधन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कानून में सामंजस्य स्थापित करना है। यासीन तेनमामो की रिपोर्ट पर ये विवरण।
0: अप्रैल से यदि FCC को संदेह होता है कि कोई संपत्ति अवैध गतिविधियों से अर्जित की गई है तो वह सीधे किसी बैंक से ग्राहक, उसके खातों और लेन देन से जुड़ी जानकारी मांग सकती है।
2: संबंधित बैंक को 48 घंटे के भीतर मांगी गई सभी जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

0: कहा कि बैंकिंग एक्ट अब भी वित्तीय संस्थानों पर गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी डालता है। ऐसे में इन प्रावधानों के बीच सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक हो गया है। ये सुधार कोई नई बात नहीं है, ये पहले से ही एसेट रिकवरी एक्ट में मौजूद था। इसके तहत एसेट रिकवरी इन्वेस्टिगेशन डिवीजन जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के तले कार्यरत था, किसी भी जांच के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जांच के चलते बैंक स्टेटमेंट पाने के लिए अपील नहीं करना पड़ता था। पर जब से एसेट रिकवरी इन्वेस्टिगेशन डिवीजन FCC के तले आ गया, इसका FCC एक्ट में कोई प्रावधान नहीं था। इन अधिकारों का इस्तेमाल केवल संपत्ति की वसूली से जुड़ी जांच के दौरान और तभी किया जा सकता है जब कानून में निर्धारित सभी शर्तें पूरी होती हों। ये अपील करने के लिए एक केस का दायर होना जरूरी है और जिसकी जांच चल रही हो। ऐसे मामले में ही हम एक वित्तीय संस्थान से मांग कर सकते हैं। कई स्तरों पर स्वीकृति प्राप्त करनी होती है, रिकॉर्ड होना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि क्या इस वित्तीय संस्थान से ये जानकारी मांगना जरूरी है या नहीं। ये कार्रवाई कई विभागों से गुजरती है जहाँ हमें सुझाव प्राप्त होता है कि किसी विशेष जाँच के लिए इन जानकारियों की जरूरत पड़ रही है। ये बदलाव 2027 समय प्रस्तावित ईसाम LG की म्यूचुअल इवैल्यूएशन से पहले वित्तीय अपराधों के खिलाफ व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया अहम कदम है। मंत्रिपरिषद ने हाल ही में विश्वविद्यालयों में HIV रोकथाम कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसमें जागरूकता बढ़ाना, मुफ्त और गोपनीय स्वैच्छिक जांच और जल्द ही प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस प्रेप तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। ये पहल मुख्य रूप से युवाओं पर केंद्रित है क्योंकि पिछले 2 वर्षों में मॉरिशस में सामने आए नए संक्रमणों में से 1/3 से अधिक मामले 25 से 34 आयु वर्ग के हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर छात्रों को जांच के लिए प्रेरित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। समय के साथ ज्ञान का स्वरूप नहीं बदलता, लेकिन उसे समझने और नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के तरीके अवश्य बदलते हैं। इसी सोच के साथ गोरखपुर का प्रतिष्ठित गीता प्रेस पहली बार भगवद गीता का एक विशेष त्रिभाषी संस्करण लेकर आ रहा है, जो संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी को एक ही ग्रंथ में समाहित कर आध्यात्मिक ज्ञान को अधिक व्यापक और सुलभ बनाने का प्रयास है। विधि मासिब्रन का विवरण।
1: शास्त्र नहीं बदलते, केवल हमारे पढ़ने का तरीका बदलता है। प्रकाशन के एक सदी से अधिक के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण में गोरखपुर के गीता प्रेस ने पहली बार भगवद गीता के एक त्रिभाषी संस्करण की घोषणा की है, जिसमें संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी को एक ही खंड में एक साथ लाया गया है। प्रत्येक श्लोक में मूल संस्कृत पाठ, अंग्रेजी लिप्यंतरण यानी ट्रांसलिटरेशन और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में व्याख्याएं शामिल होंगी। प्रकाशक के अनुसार ये संस्करण विशेष रूप से युवा पाठकों और देवनागरी लिपि से परिचित न होने वाले लोगों के लिए डिजाइन किया गया है।
2: से नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को।
3: दिस बुक इज बीइंग ब्रॉट आउट स्पेशली विद द यंगर जनरेशन इन माइंड। द एंटायर बुक विल बी प्रिंटेड ऑन आर्ट पेपर एंड इट विल आल्सो फीचर इलस्ट्रेशन रेलेवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्सेस। दिस इज आवर इनिशिएटिव एंड प्लान टू पब्लिश इट हैज नाउ बीन ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड। वी एक्सपेक्ट टू रिलीज इट वेरी सून एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट पीपल विल अप्रिशिएट इट।
1: उच्च गुणवत्ता वाले आउट पेपर पर मुद्रित और श्लोकों के संदर्भ से मेल खाते चित्रों के साथ ये पुस्तक आकर्षक प्रस्तुति के साथ सुलभता को जोड़ने का प्रयास करती है। गीता प्रेस जल्द ही इस विशेष संस्करण को जारी करने की उम्मीद करता है, जिसकी कीमत अभी तय की जानी बाकी है।
0: फ्रांस ने कहा है कि जून में यूरोप में आई भीषण गर्मी के अंतिम सप्ताह के दौरान उसने 2000 से अधिक मौतों में वृद्धि दर्ज की है, जबकि मौसम वैज्ञानिकों ने अगले कुछ दिनों में महाद्वीप में और अधिक चरम तापमान की चेतावनी दी है। इसके साथ पेश हैं कुछ अन्य विदेशी खबरें इस रिपोर्ट में विधि वासीवरण के साथ।
1: यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलिदिमिर जेलेंस्की ने गुरुवार को कीव पर रूस के हमलों, जिनमें कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए, का बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने हमले में आंशिक रूप से नष्ट हुई एक अपार्टमेंट इमारत का दौरा करते हुए ये बात कही। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई का जनाजा और सार्वजनिक शोक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो उनके गुजरने के कई महीने बाद हो रही है। आयतुल्ला अली खमनेई की हत्या 28 फरवरी 2026 को तेहरान में एक हवाई हमले के दौरान हुई थी। वेनेजुएला में आए दोहरे भूकंप के बाद ढही एक इमारत के मलबे में 8 दिनों तक फंसे रहने के बाद एक व्यक्ति को जीवित बचा लिया गया है। मध्य दमिश्क के एक भीड़ भाड़ वाले कैफे में हुए बम विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है और 22 अन्य घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी समूह ने नहीं ली है। संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को कहा कि सूडान में हुए एक ड्रोन हमले में दक्षिण कोर्डोफान में कमजोर समुदायों के लिए भेजी गई 50 मेट्रिक टन मानवीय सहायता नष्ट हो गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला के घातक प्रकोप के लिए जिम्मेदार वायरस के संभावित उपचारों का परीक्षण शुरू हो गया है। WHO प्रमुख ने गुरुवार को बताया कि कोंगो में पहले मरीज को इस परीक्षण में शामिल कर लिया गया है। WHO के अनुसार कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में अब तक 1400 से अधिक मामलों और 438 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। पिछले महीने रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद दक्षिणी फ्रांस में जंगल की आग से निपटने के लिए लगभग 3000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और पानी गिराने वाले विमानों को तैनात किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर मध्यम से तीव्र बारिश की संभावना जताई गई है। मुंबई में मानसून की भारी बारिश जारी है। मध्य प्रदेश मानसून सीजन के अपने पहले रेड अलर्ट के दायरे में है। ये अलर्ट 19 जिलों के लिए जारी किया गया है और मानसून की शुरुआत के बाद से ये अब तक की सबसे गंभीर चेतावनी है, जबकि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में मानसून की भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से नेशनल हाईवे 5 अवरुद्ध हो गया है, जिससे कई वाहन फंस गए हैं।
0: इसके साथ अब हम बढ़ते हैं मौसम के हाल की ओर। आम हालत, हमारे इलाके पर हल्की से सामान्य हवा का बहाव है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, हवादार इलाकों में रात के दौरान बादल छाए रहेंगे और रहकर वर्षा होगी। अन्य इलाकों में आसमान साफ रहेगा। कल आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय सुबह के समय ऊंचाइयों पर थोड़ी वर्षा हो सकती है। हवा पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और दक्षिण की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। बाद में समुद्र में सुधार आएगा। खुले समुद्र में विशेषकर रात के दौरान न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा यानी सेंट्रल प्लेटों पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 13 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त शाम 5:45 पर और सूर्योदय कल सुबह 6:46 पर।

0: मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे तकनीकी सहयोगी को लुडोविक जो कंसोल पर हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद, साथ रहिए। बढ़ते हैं अब हम शुभ समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

शोक समाचार सुनिए। अल्बिया रोड कालबास में, अल्बिया रोड कालबास में 42 साल की 42 years old की श्रीमती पुष्पा देवी दुखी, श्रीमती पुष्पा कुमारी दुखी पैदाश्रम दुर्गाचरण और जिन्हें लीना के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके पति श्री दुखी योगेश मूल शंकर सिंह के घर कालबास से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआ मौसा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो अत्यानी है। कालीमाई रोड पुचिराफ्रे में 56 साल की 56 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मुनेश्वरी करण जिन्हें करुणा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके घर पिछगाफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाऊची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। विलेज होल लेन प्लेन दे रोश में 57 साल की 57 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती राजवंती रामसन पैदाश्रम गोबीन और जिन्हें राजवंती के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 12 बजे उनके पति ईश्वर रामसन के घर प्लेंदेरोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचुएक शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। रेजिडेंस बोसेजू रोजेल में रेजिडेंस

दो से बुसिजू रोजिल में 35 साल के 35 ईयर्स ओल्ड की श्री विशेष महादेव कालिया जिन्हें मिकी के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके पिता सुनील कालिया के घर रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलीब्रियों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। सिमिचियर रोड प्लेनमानियो में 36 साल के 36 ईयर्स ओल्ड के श्री वितिश बुदन जिन्हें इशले के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी बाद में उनकी माँ संध्या रापूजी के घर प्लेनमानियो से उठाई जाएगी। क्रीमेशन आफ्टरवर्ड्स। कश्मीर रोड लेस्पेरेंस ट्रिबुशे में 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सीता महादेव बोयरोप पैदाश्रम अलकोरिया और जिन्हें विद्या के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल शाम 3 बजे उनके घर लेस्पेरेंस ट्रिबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रीमेशन टुमोरो एट 3 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ विज्ञप्तियां सुनिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाकवा के निवासियों को सूचित करता है कि ग्लेन पार्क की इन गलियों में मिगन लेन, रामचंद लेन में कल शनिवार 4 जुलाई को दिन के 11 बजे से दिन के 2 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर सीबी रोजिल के निवासियों को सूचित करता है कि एवेन्यू बाउंड्री, रेजिडेंस बोसेजू और एक्वारेल इलाकों के एक भाग में और आसपास के इलाकों में कल शनिवार 4 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से दिन के 2 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से ही बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर प्लेंदे पापाई के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि मस्क, पाचिसरी और जयपाल रोड में और आसपास के इलाकों में कल शनिवार 4 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से दिन के 3:30 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। पिचवेजे और सैंपिया के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि बॉशेरी रोड, लेपूस, रिवियर बैटिस, स्कूल लेन और एग्लिस सैं पियर में और आसपास के इलाकों में कल शनिवार 4 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से दिन के 3:30 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से ही बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर वाकवा के ही निवासियों को सीबी सूचित करता है कि एनएचडीसी ग्लेन पार्क नंबर 3 के एक भाग में कल शनिवार 4 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से दिन के 12 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और प्लान वेयर के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि रुई मदादुल इस्लाम, रुई एडगर लोरेंट और लापे तथा लिनेवे गलियों के एक भाग में और आसपास के इलाकों में, फिर वालेपितो के रुई बुलवार विक्टोरिया और मामलों वेयर डेपिने इलाकों में इन गलियों के एक भाग में तथा आसपास के इलाकों में रविवार 5 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से दिन के 1 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और इधर ग्लेन पार्क के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि मोसिलमो एडू नंबर 1 और नंबर 2 गलियों और आसपास के इलाकों में रविवार 5 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से दिन के 2 बजे तक मरम्मत कार्य होंगे, इसी वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से ही सूचना दिए ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे ये भी मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। तो ये थी विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: शनिवार 4 जुलाई को शाम 3 से शाम 5 बजे तक रिपाई आर्य समाज मंदिर में आर्य सभा मॉरिशस के तत्वावधान में रिपाई आर्य समाज मोका आर्य जिला परिषद के सहयोग से अपने नए मंदिर के उद्घाटन समारोह के संदर्भ में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।

0: This is Radio Voices.
1: 您好
2: ，Assalamu alaikum.
3: Kimchi Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shodharandiriki hrudayapurvaka namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर

भज ले प्रभु का नाम। नमस्कार श्रोताओं, श्रोताओं मौसम कुछ ऐसा है जिसमें हम अपने घर में दुपक कर बैठना पसंद करते हैं। एक ओर बिस्तर बुलाता है तो दूसरी ओर अच्छा भोजन आवाज देता है, लेकिन बीच में कुछ और भी छूट रहा है। आत्मा को भी तो भोजन चाहिए ना, कुछ समय अच्छा बिताना। हम सोचते हैं परिवार के साथ बैठे हैं, क्वालिटी टाइम है। हम टीवी देख रहे हैं तो संसार की खबरों से जुड़ रहे हैं, लेकिन इस जीवन की खबर कौन लेगा? उसके लिए कुछ समय उस परम शक्ति से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो श्रोताओं, भज ले प्रभु का नाम कार्यक्रम इसीलिए है कि हम कुछ समय सब कुछ छोड़कर उस प्रभु के साथ जुड़ सके। क्योंकि जैसे शरीर को भोजन चाहिए, मन को अच्छी बातें चाहिए, आंखें और दिमाग अच्छा साहित्य ढूंढते हैं, ठीक उसी तरह जिनको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ऊर्ध्वमुखी अर्थात ऊपर उठना है, उनको प्रभु के साथ जुड़ना ही चाहिए। आइए इस गीत को सुनते हैं।

साधारण सी बात है, जब भी कोई बालक जन्म लेता है तो उसके रोने की आवाज सुनकर सब खुशी मनाते हैं। भक्त कबीर ने कितनी गहराई से सोचा होगा इस बात को, जो इतना बड़ा संदेश मानव जाति को दे दिया।

शरीर ने जन्म लिया। जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी। रंगरेज कौन? गुरु के पास शिक्षा का रंग चढ़ाने के लिए इस चादर को भेजा गया।

गुरु से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद ये जीवन आरंभ होता है और ऐसे समय पर एक चेतावनी, एक शिक्षा भक्त कबीर ने दी है।

श्रोताओं, जो समय हम उस प्रभु के साथ जुड़ते हैं, उस समय में हम संसार का, जिसे हम कहते हैं पालाप, प्रलाप, एक दूसरे की निंदा स्तुति, उससे बच पाते हैं। और उससे बचना ही जीवन की साधना है, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, तब तक हम स्वयं भी उन बुराइयों से ही उलझे रहते हैं। तो श्रोताओं, यह जो समय है, ये केवल अपने प्रभु के साथ ही बिताना चाहिए। आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

हम फिर छोटी छोटी बातों से दूर होने लग जाते हैं और हम उस बड़ी शक्ति के साथ जुड़कर आनंद की अनुभूति करते हैं। इसीलिए संत कहते हैं, प्रभु का नाम जपो, प्रभु का नाम भजो, क्योंकि जब नाम भजते हैं तो बार बार हम उसके गुणों को अपने भीतर उतारने की कोशिश करते हैं। तो श्रोताओं, आइए इस भजन को सुनते हैं।

श्रोताओं, नाम में बड़ी ताकत है। कहते हैं स्वयं भगवान के स्वरूप से भी बड़ा उनका नाम है, क्योंकि स्वरूप तो जब आप देखेंगे तब आपको दिखाई देगा ना, या आप उतनी साधना करें, लेकिन नाम की साधना तो आप जीवन के कार्यों को करते हुए भी कर सकते हैं। आप कहीं पर भी बैठे हैं, सफ़र कर रहे हैं, अपने कमरे में बैठे हैं, सोने के लिए गए हैं, तो आप नाम जप कर सकते हैं। आइए इस भजन को सुनते हैं।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये रेडियो मॉरिशस है। परवेज आपसे मुखातिब है। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी रहमत शफाए महशर मालिक दो जहां जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्य के आप तमाम सामीन खैर व आफियत से हैं। जहां से भी आप हमारे साथ निभा रहे हैं, आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। तो आइए मज़ीद सामीन, उर्दू नशरियात बनाम महफिल शब का आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत हमद कलाम के साथ, जो हमारे दिलों को रूहानियत और सुकून से भर दे।

यकीनन वो ज़ात ही है जिसके हुक्म पर कायनात का निज़ाम कायम है और जिसकी बंदगी इंसान की असल पहचान है। शामिल मोहतरम, जब बंदगी का ज़िक्र आता है तो हमें मैदान करबला याद आता है, जहाँ तपते हुए सहरा में नेज़ों और तीरों की बारिश में भी नमाज को तर्क न किया गया। ये वो दर्स है जो हमें सिखाता है कि हालात जैसे भी हो, मोमिन का रिश्ता अपने अल्लाह से कभी कमज़ोर नहीं पड़ता।

ये रेडियो मॉरिशस है, उर्दू नशरियात महफिल शब रात के 9 बजे तक एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मज़ीद सामीन, इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाह ताला और उनके जानिसार साथियों ने करबला में नमाज अदा करके रहती दुनिया तक ये पैगाम दिया कि सर दे दिया हुसैन रदियल्लाह ताला ने, लेकिन ये कह गए सजदे के सामने कोई ताकत नहीं बरी। मज़ीद सामीन, सजदा सिर्फ इबादत नहीं।

बल्कि हयात इंसान की मेराज हैं, और नमाज वो रिश्ता है जो बंदे को उसके खालिक से जोड़ता है। चाहे हालात कितने ही सख क्यों ना हो, अल्लाह ताला हमें नमाज का पाबंद बनाए, हमें करबला के पैगाम की हकीकी समझ अता फरमाए, और हमारे दिलों को इश्क हुसैन रदी अल्लाह ताला और अतात इलाही की रोशनी से मुनव्वर रखे। आमीन। वो सचदा ही क्या जिसमें दिल की रोशनी ना हो, वो ज़िंदगी ही क्या जो नमाज के बग़ैर हो। हमें भी अपनी दुआओं में शामिल करें। तकनीकी मदद अंजू की रही है, मशकूर व ममनून है हम। परवीज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: On the hour, every hour, Radio Marches.
1: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।
2: नमस्ते हमने के सब श्रोता लोग के 9:11 होल बामने के भोजपुरी तड़का तो हर खातिर प्रस्तुत करे थे जा और हम सुरेखा तो हर खातिर वो सब गाना अनले हैं जो तो लोग फरमाइश कर बजाए यानी कि जो गाना के फरमाइश कर बजा वही गाना निकाल के तो हर तक पहुँचाओ जाए भोजपुरी तड़का और ये भोजपुरी तड़का।

काम में, चला तनी गमड़ भी करी जा और तनी जोरी जोरी गाना भी सुनी जा। अभी जन गाना हम तो लगे सुनवाओ अब जा ई हा विनोद शिवदत्त जी के गावल गाना। और ये गाना हमने से मंगले हवन ललिता जी त्रियोले से। ललिता जी गाना आयुष जी के जन्मदिन के अवसर पर मंगले हवन। और ये उनका पूरा परिवार बगल से, पापा अजय, मामा आशना बगल से और बहन आलिया और आलिना बगल से। तो चला दादी ललिता बगल से आयुष के बहुत आशीर्वाद। और ललिता जी गाना मंगले हवन सुदेवी जी, देवीना जी, ज्ञानी जी खातिर, छोटी जी, प्रभावती जी और आत्माराम जी खातिर, सुखलाल मौसी खातिर, उषा लुकाना और माला राम जावन खातिर।

दगाबाज सुनरवा के बारे में सुन ले लीजा, उनकर गाथा तो सुन ले लीजा। अब चला जा बढ़ी जा हमने के भोजपुरी तड़का के आगे कुंजबाई पर। अभी तो हमने तो लगे याद दिला दे राजा के हमने के नंबर है 5251700005। ये नंबर है हमने के मिसाज भेजे के, चाहे SMS रही चाहे रही व्हाट्सअप मैसेज ज़रूर भेजा जा। और ये हमने के टेलीफोने करे खोजवा जा तो 4028085 हमने के नंबर है। और अपन पसंद के गाना यही नंबर 1 पर सक बजा मांगे, चाहे मिसाज पढ़े चाहे कॉल करके। तो चला अभी सुनब जा हमने संतोष महादेव जी के गावल गाना, और ये गाना हमने उमा जी के नाम बजवावत हैं जा।

आगे बढ़ी जा और प्रस्तुत करी जा भोजपुरी तड़का के अगला गाना। ये गाना ज्ञानमयी पतलाल जी के गावल है और ये गाना हमने प्रस्तुत करे थे आत्मा राम जी के पसीन पर। बस यही प्रार्थना करी जा कि आत्मा राम जी सुखी रहियन, सेहतमंद रहियन और ये अपन परिवार के बीच में बहुत अशांति पहन। तो आत्मा राम जी बगल से ये गाना हमने उनकर बहन छोटी, बहन ललिता, बहन प्रभावती और बहन सुदेवी जी के नाम करे थे जा और संगे संगे बेले के पूरा इस्नू परिवार के नाम।

0: भोजपुरी तड़का।
1: चला ही तड़का में हमने और तड़का लगाई लाजा बजा बोल संगी सोना नयन जी के गावल गाना संगी गाना हमने विश्वानी दुमन जी खातिर बजवावत है जा वाकवा से विश्वानी दुमन जी बगल से गाना उनकर दुगो बहिन शारदा और इंदिरा खातिर उनकर दुगो सखी हवन जा नीला और प्रतिभा संगे संगे गीता जाधर जी खातिर और शोभा जी खातिर

दुनिया बा चारों बगल गोल और ये गोल गोल दुनिया में चल हमनी के श्रोता लोग से फिर भेंट होल मुलाकात होल और ये हवन हम के श्रोता अनिता जी फ्लिकॉन फ्लाक से अनिता जी मंगले हवन गाना सुनीता नंद कुजी के गावल देवी मैया के गाना और ये गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर सब संगति आलोक खातिर हमने के रेडियो MBC के पूरा टीम खातिर बहुत बहुत शुक्रिया और चला ये गाना सुना जा और देवी मैया से प्रार्थना करी जा सब कोई के हिम्मत दिहन सब कोई के ताकत दिहन अपन जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे।

और अब चला हमने के श्रोता सुनीता जी के नाम करी जाएगो गाना गौगुप के सुनीता जी के नाम। वैसे सुनीता जी गौगुप से गाना कुंगुमा के अपन बहन विमाला जी के नाम करत हवन। ई गाना है विनोद सिवदत्त द्वारा गावल।

0: का।
1: चले आगे बढ़ी जा, भोजपुर के गीतवन बड़ा मजा लगा था सुने के। चल ही गमटवा में हमने प्रस्तुत करी जा, पैंक पैंको झुलवा लो तो, पैंक पैंको झुलवा लो तो। चल सुनी जा हमने भोजपुरी बाजा बाजे बॉयज के कलाकार लोग की आवाज़ में। चला संगे संगे रहिया जा, तनी ठुमक ठुमक भी जाइया जा। ये गाना हमने बजवाओ था जा सूरज शर्मा सजादा जी के फरमाइश पर, त्रियो लेके सब परिवार लोग खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।

आर चले जुम्बा करी जा, अभी तो रात के तनी देरी हो गल बा, फिर भी जुम्बा करे के कोनो समय सीमा तो नहीं है। चला हमनी तोहर खातिर जुम्बा गाना बिस्वानी दीपुआ जी के गावल प्रस्तुत करब जा। और ये गाना हमने सुदेवी जी बगल से उन भैया के उनकर दीदी ललिता जी के नाम, कुशल परिवार के नाम, आत्माराम भैया, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, मालेगा के, राम रतन परिवार, राम गुलाम परिवार, कुआरू परिवार खातिर बचपाईला जा। चला आगे बढ़ी जा और यही गाना हमने सुनीता जी के नाम करब जाते हैं। खुश के सुनीता जी, ये गाना मंगले हो अपन भाई रविंद्र खातिर।

और चला सुनी जा हमने सत्यजीत रघु जी के गावल गाना फूलमती रानी। और फूलमती रानी गाना हमने बजवाईला जा विवेक जी के पसीन पर। विवेक जी गाना मंगल होना पत्नी सुविता के नाम। चला सुनी जा ये गाना गैले हवन सत्यजीत रघु जी।

अब चले हमनी महेन जी के पसीन के गाना सुने जा। फटफटवा व्यास परसेनु जी गए होवन और फटफटवा गाना सुन के चल हमनी महेन जी बगल से, पालमा के महेन जी बगल से उनका दीदी मान के नाम करब जा।

के 10 मिनट हो गलबा हो रही हमनी के कार्यक्रम में और जलसा बढ़ते जाता फटफटवा गाना के बाद चलो लुत्तो पर में जायला जा। अभी तो फटफटवा सुन लीजा, अब लुत्तो के बारे में सुन जा। ये जुबेदा के लुत्तो है, चलो राम रंभा राम तो हर जी गावल गाना सुन लीजा। वर्षा जी गाना मंगले हाँ वोसिन मौसम से अपन माता पिता और दादी माँ खातिर।

चल हमनी के कार्यक्रम में तोहर साथ मिलता है खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। चल हमनी अभी कुछ एगो रोमांटिक गाना सुनवाई ला जा, रोमांटिक या फिर रोमांस पर गाना सुनाई ला जा। तो चल ये गाना हमनी रेशमा बिकन के आवाज़ में सुनब जा, और ये गीत गीता जी बगल से बचवाओ थे जा। गीता जी प्लेंदे खुश से गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर।

रहा भगवान से। चला आगे बढ़ी जाओ और पूर्णिमा फकीरा जी के को चौक छक गाना सुनी जाए। गाना हमने बजाए ला जाए नोवेल फॉन्स के गायत्री जी खातिर, उनकर बेटा अजय खातिर, और माईबू के उनकर मामी कल्याणी मोहन जी खातिर, मोतालोंग के बाबी शकुंतला जी खातिर, और नोवेल फॉन्स के सखी गीता बाई जी खातिर।

अभी चला माँ बाप के मोल जानी जा, माँ बाप के मोल पर बात करी जा। गीता गजाधर जी के लिए होनी गाना और ये गाना हमने से रूपा जी मंगले वन जी भाई से रूपा जी गाना सुनवावे खोजा था विनीता के, पवन के, राम के और दिलीप के।

अभी चला सुनी जा हमने यो गाना जन हमने के हमने के तनी सन प्यार मोहब्बत के बात बतावेला और ये गाना हमने बजावत है जा संजय सिंह गुलाम जी के गावल ये गाना हमने बजावत है जा वीना जी खातिर वीना जी रहे लन कौफुको ये गाना अपन पति राजन के नाम मंगले हवन।

चमेली चमेली गाना सुना थे जामी सुनीता ननकू जी के आवाज में। गाना मंगले हो हमी से अमृता जी पीतों से अमृता जी गाना सोनिया और परी खातिर मंगले होवन विशान और मीनाक्षी खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का में हमने वेद जी के पसंद के बल्कि वेद जी के मांगल गाना प्रस्तुत करे थे जा माया धनु जी खातिर। माया धनु जी कौन दे मास पावे रहेलन, उनकर नाती वेद ई गाना विनोद सिद्ध जी के गावल उनकर नाम करे थे। अंत चला सुनी जा बाप दादा के बोली, भोजपुरी बोली, विनोद सिद्ध के गावल माया धनु जी खातिर उनकर नाती वेद बगल से।

अब चले आशीष रामफल जी के गावल गाना हमने मीला जी के नाम करे थे, जहाँ मीला जी रहे लन गाँव गुब, और गाँव गुब से मीला जी गाना मंगले वन तेहूस के उनकर बहिन संध्या के नाम।

0: भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के समय पूरा हुआ था, अभी 3 मिनट बचल और 3 मिनट में हमने तलक के सुनवा हो राजकमल चिंतामणि जी के गावल गाना मारछों का, और मारछों का गाना के संगे संगे हमने के मुलाकात है जहाँ पर समाप्त हो जाए। 11 बजे सुनिए जा पुराना गीत के कार्यक्रम सुनहरे पल गिनीशा प्रस्तुत करिए आवत हला, फिर मिलब जा तब तक खातिर शुभ रात्रि, नमस्ते।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: देखा जाए तो जिंदगी में कभी कभी सिर्फ एक गीत ही काफी होती है हमें सालों पहले ले जाने के लिए। एक आवाज, एक धुन और आंखों के सामने बचपन की गलियां, स्कूल के दोस्त, पहली साइकिल, माँ के हाथ का खाना और घर का वो पुराना रेडियो, सब कुछ जिंदा हो जाता है। और आज हम वही यादें फिर से ताज़ा करने आ गई हैं। तो दोस्तों, ज़रा दिल को थाम लीजिए, दिल को हल्का सा मुस्कुराने दीजिए और पुराने बॉलीवुड के इन हसीन नगमों के साथ चलिए एक खूबसूरत सी सफर पर, रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम।

तो मेरे प्यारे प्यारे म्यूजिक लवर्स, हर गीत किसी ना किसी दिल की जुबां होता है। कुछ गाने खुशी बयां करते हैं और कुछ मोहब्बत, और कुछ वो बातें जो हम कभी लफ्जों में कह ही नहीं पाते। आज का हर नगमा शायद आपके दिल की कहानी कह दे। तो जहां भी है आप, मुस्कान के साथ हमें भी अपना साथी बना लीजिए और चलिए बॉलीवुड के सुनहरे दौर का लुफ्त उठाने में चलिए जी। ये अगला नगमा हमारी तरफ से आपके नाम।

वैसे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, एक वक्त था जब रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं होता था, घर का एक हिस्सा होता था। वो सुबह की शुरुआत, शाम की चाय और रात की सुकून भरी बातें सब रेडियो के साथ जुड़ी होती थी। आज

भी वही रिश्ता हम सबको जोड़ता है और जब उसमें पुराने बॉलीवुड के गीत शामिल हो जाए तो बात ही कुछ और होती है। तो आइए मिलकर इस प्यारे रिश्ते को फिर से महसूस करते हैं रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: कहते हैं ना, हर इंसान की जिंदगी एक किताब होती है और उस किताब का हर चैप्टर किसी ना किसी गीत के साथ जुड़ा होता है। शायद आज का अगला गाना आपकी कहानी का भी एक हिस्सा हो, हो सकता है किसी अपने की याद दिला दे या फिर किसी अधूरे सपने की। तो दिल खोल कर सुनिए, क्योंकि पुराने बॉलीवुड के गीत सिर्फ संगीत नहीं है, जिंदगी का एहसास होता है जी।

मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं होती है, कभी कभी एक गीत ही दिल की बात कह देती है। कितना ही प्रेम कहानियां हैं जो बॉलीवुड के गीतों के साथ और भी खूबसूरत बन गई है। आज अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं या किसी को याद कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम उन्हीं एहसासों के नाम। चलिए प्यार के इन अनमोल नगमों का आप मजा ले लीजिए रेडियो मॉरिशस पर इन योर सुनहरे पल।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनिशा टू से गुडबाय टू यू। इजाजत दीजिए, जाएंगे वापस लौट आने के लिए, वादा रहा आप सभी लोगों से एक और सुनहरे पल के बहुत ही खूबसूरत से सफर में। आप बस अपना ख्याल रखते जाना, प्यार बांटते जाना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: yeah.
1: Radio Mauritius.
2: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस.
1: रेडियो मॉरिशस.
2: रेडियो मॉरिशस. जगाती है कयामत कोई.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: प्रेम पण गजब चीज छे, तने भूलवू ए मारा हाथ मां नथी, अने तू मने मळे ए कदाच मारा नसीब मां नथी। ए जे कई पण होय, हवे तो हृदय नहीं पण तू ज धबके छे मारा शरीर मां।

गहराइयों को चीरता हुआ ये दर्द, ये कसक, ये चुभन।

0: मैं तो गुलाम।
1: एक दौर में होते हैं दो मोती,
0: एक साथ धड़के हैं।

0: This is Radio Marxist.
1: 您好
2: Assalamualaikum.
3: Kim to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shudrandiriki Hrudaya Purvaka Namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum Vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: बचपन में नंबर 9 पे हम लोग ट्रेन पकड़ा करते थे. कंपार्टमेंट में एक शख्स आकर बैठते थे और विस्लिंग किया करते थे. तो मेरे बड़े भाई साहब कहते हैं, यार ये कमाल सीटी बजाती है, ये कौन है? फिर पता चला कि मदन भैया हैं. मदन भैया की मेरी बहुत पुरानी एसोसिएशन थी. इतना

प्यार के जब मैं गाने गाता था स्कूल में या कॉलेज में, तो वहाँ आकर जब ये जज होते थे, सुनते थे, मुझे गाइड किया करते थे, कहते थे कि अपनी इंडिविजुअलिटी रखनी चाहिए।

0: जब से तुम्हें देखा सनम दिल बेकरार।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस।